मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शुक्रवार है, शक्षमत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026। 5:57 होने वाले हैं, हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा

0: स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वर में ये थी देवव्रत जोशी की देशभक्तिपूर्ण रचना। आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। लीजिए अब सुने देवकी पंडित की आवाज में संत मीराबाई का ये भक्ति पद।

देवकी पंडित के स्वर में ये था संत मीराबाई का भक्ति पद। आइए अब सुनते हैं रविंद्र साठे और आलाप देसाई के स्वर में संत सूरदास का ये भक्ति पद।

0: रविंद्र साठे और आलाप देसाई के स्वर में ये था संत सूरदास का भक्तिपद। अब इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री रविंद्र गिन्नौरे का है।
1: प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती और पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। प्राचीन काल से ही पर्यावरण मानवीय जीवन शैली से जुड़ा रहा है। मानव जीवन का कोई भी पक्ष पर्यावरण से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। मानव के समस्त क्रियाकलाप, संस्कार, व्रत, अनुष्ठान, त्योहार, उत्सव आदि सभी में पर्यावरण सर्वोपरि था। ऐसा ही था मानव का दृष्टिकोण, जिसमें सभी चर अचर पूजनीय थे। परितः आवरणम पर्यावरण, जिसका आशय है चारों तरफ का घेरा। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, इसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनिवार्य रूप से उपभोग करते हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। जगत का अस्तित्व पर्यावरण पर अवलंबित है। पर्यावरण केवल जीवों को आधार ही प्रदान नहीं करता, बल्कि उनके जीवन की समस्त क्रियाओं के संचालन में एक माध्यम भी बनता है। संतुलित पर्यावरण ही मानव को स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। हमारी हरी भरी प्रकृति ही मानव का पर्यावरण है। हरि से तात्पर्य सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामला पृथ्वी से है, और भरी का आशय पशु पक्षी जीव जंतुओं की समृद्धि से है। समूची प्रकृति की तरह मानव भी उसका एक अविभाज्य अंग है। मानव जीवन प्रकृति से अलग नहीं है। जीवन का स्पंदन प्राणवायु से होता है। जल हमारी प्यास बुझाता, हर जरूरत को पूरा करता है। धरती हमें भोजन देती, पोषित करती है। अग्नि ऊर्जा प्रदान करती है। वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से सृष्टि का हर एक पदार्थ बना है। हम और हमारा समूचा पर्यावरण इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। सभ्यता के विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता गया। पर्यावरण के तत्व प्रदूषित होते चले गए। मानव के लालच ने हरे भरे

0: जंगल काट डाले, जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषित कर दिया, धरती से आकाश और अंतरिक्ष तक केवल प्रकृति पर विजय पाने के सपने पालकर मानव ने उन्हें विषाक्त कर दिया। प्रकृति से छेड़छाड़ के नतीजों में आज हम जितना पर्यावरण खोते जा रहे हैं, हमारा जीवन उतना ही कष्टमय होता जा रहा है। स्वस्थ पर्यावरण ने मानव सभ्यता को ऊंचाइयां दी तो बिगड़ते हुए वातावरण से अनेक सभ्यताओं का पतन भी हुआ। बिगड़ते पर्यावरण से समस्याएं विकराल हो चली हैं और सहज जीवन को संकट में डाल रही हैं। पर्यावरण अवनयन, बढ़ती मानव आबादी और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में वृद्धि से धरती के पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। जल, जंगल, जमीन, जैव विविधता के क्षरण से भयावह जलवायु परिवर्तन का संकट गहराता जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। वायरस जन महामारी पनप रही है। प्रदूषित होते पर्यावरण से पृथ्वी पर खतरनाक बदलाव हो रहा है, ऐसा बदलाव जो सभ्यता के पतन का कारण बन रहा है। पर्यावरण को सहेजने वाले पृथ्वी को माता कहकर संबोधित करते हैं तो ये अंधविश्वास नहीं है। पृथ्वी प्रकृति के प्रति आदर भाव उसे संरक्षित संवर्धित करता है। प्रकृति को संवारने की प्रक्रिया सतत चलती रहना चाहिए, कभी पौधरोपण के रूप में, कभी पर्यावरण संरक्षण के रूप में, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण से परे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना विकास, ना विज्ञान और ना हम।
1: ये था चिंतन, आलेख श्री रविंद्र गिंदौरे का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 191 191

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा विषय है ऊंची जगह पर धान की जगह वैकल्पिक फसलें। जानकारी देते हुए डॉक्टर परमेश्वर साहू।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में उच्चहन भूमि के धान हेतु वैकल्पिक फसलें एवं उनकी कार्यमाला। जैसे कि किसान भाइयों आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में लगभग सभी क्षेत्रों में धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर धान की खेती तो किया जाता है लेकिन उत्पादन क्षमता बहुत कम आती है। इन क्षेत्रों को या इस प्रकार की भूमि को उच्चहन भूमि या अपलैंड भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि में धान की खेती करने से किसान भाइयों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसके वैकल्पिक तौर पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा एक कार्यमाला तैयार की गई है, जिसमें किसान भाई इस प्रकार की भूमि जिनको चहन भूमि या अपलैंड कहते हैं, इस प्रकार की भूमि में निम्नलिखित फसलों को जो कि मैं बताने वाला हूँ अभी, इन फसलों को लगा करके धान की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है मक्का। मक्का को आजकल किसान जो है हाइब्रिड मक्का जो आ रही है मार्केट में, जैसे कि अगेती संकर मक्का 1, विवेक मक्का DK 7074, DHM 121 आदि इसके किस्म हैं। इन किस्मों को लगा करके किसान भाई प्रति हेक्टेयर 1,00,000 रुपए से अधिक की फायदा प्राप्त कर सकते हैं। मक्का की बुआई जो है 15 जून से 15 जुलाई के मध्य की जानी चाहिए और इसकी बीज की मात्रा जो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगती है। इसमें पौधों के बीच की अंतरण जो होता है 60 से 75 सेंटीमीटर होती है और पौधों के बीच लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की अंतरण होती है। इसमें उर्वरक की मात्रा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से दूसरी अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो रागी, कोदो, कुटकी ये भी बहुत ही अच्छा वैकल्पिक फसलें हैं जो

0: दुचहन धान की जगह पर लगाया जा सकता है। इन सभी को रागी, कोदो, कुटकी, जिनकी जो किस्में हैं ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं। छत्तीसगढ़ रागी 2, छत्तीसगढ़ रागी 3, छत्तीसगढ़ कोदो 2, छत्तीसगढ़ कुटकी 1, सोन कुटकी आदि हैं। इनको लगा कर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। इन कोदो कुटकी रागी को 15 जून से 15 जुलाई के मध्य किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। इनमें बीज की मात्रा अगर कुटकी की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम, कोदो में 8 से 10 किलोग्राम और रागी में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगती हैं। और इसमें ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में किसानों को उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम उर्वरक में लगभग 40 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फॉस्फोरस और 20 किलो पोटास डालकर भी किसान इसे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैकल्पिक दलहनी फसलें की बात करें तो उचहन धान के लिए वैकल्पिक दलहनी फसलों में अरहर है, मूंग है, उड़द है, कुल्थी है। इन किस्मों को किसान अपने खेतों में लगा सकते हैं और अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की बात करें तो मूंग को द्वितीय सप्ताह जो जुलाई है उसकी द्वितीय सप्ताह में लगाया जाना चाहिए। इसमें 18 से 20 किलोग्राम बीज लगती है। इसी प्रकार से उड़द भी जुलाई के द्वितीय पखवाड़ा में लगाया जाता है और 18 से 20 किलोग्राम बीज की लागत इसमें आती है। और इसमें जो है मूंग और उड़द को लगा करके किसान भाई जो है लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अरहर की बात करें तो अरहर में लगभग 1 लाख रुपये तक फ़ायदा प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुख्य चीज़ यही है कि इसमें जो अवधि है वो 170 से 180 दिन की होती है। ये थोड़ी सी किसानों के लिए ज़्यादा हो सकती है। अगर अरहर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप मूंग, उड़द और कुल्थी में जा सकते हैं। वैकल्पिक तिलहनी फसलों की बात करें तो उचहन भूमि के धान हेतु वैकल्पिक तिलहनी फसलों में सोयाबीन है जो कि भर्री भूमि में लगाई जाती है, मूँगफली है, तिल है, सूरजमुखी है और रामतिल है। तिल, सूरजमुखी और रामतिल बहुत ही अच्छी फसल है। इनको किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। सूरजमुखी के द्वारा प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए, राम तिल के द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 50 हज़ार रुपये और तिल के द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 60 हज़ार रुपये शुद्ध मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मूंगफली को लगाने से प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये और सोयाबीन को लगाने से प्रति हेक्टेयर लगभग 70 हज़ार रुपये मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इनकी कार्यमाला की तो सोयाबीन को 15 जून से 15 जुलाई के बीच लगानी चाहिए, मूंगफली को 15 जून से 25 जुलाई के बीच लगानी चाहिए, तिल को 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य लगानी चाहिए और सूरजमुखी को 15 जून से 15 जुलाई के मध्य लगानी चाहिए। इसी प्रकार से इसमें जो बीज की मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। धन्यवाद किसान भाई।
1: ऊंची भूमि पर धान की जगह वैकल्पिक फसलें, कृषि चर्चा में जानकारी दी डॉक्टर परमेश्वर साहू ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:25 पर सुनेगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम। यादें, पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रात 10:30 पर। सुबह 7:05 पर सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, इसमें आज आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संकट की गंभीरता और पर्यावरण संरक्षण पर रायपुर उप वन मंडल अधिकारी श्री आनंद कुदरे से विशेष बातचीत। राजधानी रायपुर में प्रयोग के तौर पर संचालित माइक्रो सिटी बस सेवा पर वरिष्ठ पर्यावरण शोधकर्ता CEEW में फेलो डॉ. हिमानी जैन से बातचीत और भारत का भविष्य अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित मानव श्रृंखला कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के अध्यक्ष श्री विश्वास मिश्राम से विशेष संवाद। प्रस्तुत करेंगी श्रेया श्रीवास्तव। सुबह 8:30 पर इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनेगा पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सुनीता गोड़बोले से विशेष बातचीत। प्रस्तुत करेंगे रमा शंकर। नवा बिहान सुबह 9:00 आज आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर नीति आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के सुब्रमण्यम से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे नेमीचंद साहू। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगी शुभदा गिजरे। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे मेहंदी हसन को।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनेगा बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव। इसी कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर सुनेगा सत्यरंजन गंगेली का तबले पर बजाया ताल तीन ताल। और रात 10 बजे सुनेगा बसंत राव देश पांडे का गाया राग मधुकोंस में ख्याल। सुबह 11:05 पर अनुराग धारा में सुनेगा गुजराती गीत। कलाकार होंगे परेश भट्ट। सदाबहार नगमे सुबह 11:30 पर। शाम 5:10 पर युवाणी व साथिया सुनेंगे आजकल, इसमें विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा, मार्गदर्शन और अपनी पसंद। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, इसमें किसान भाई आज सुनेंगे आज की बात, खेती में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के उपयोग और महत्व, इस विषय पर चर्चा। हेलो चौपाल विषय होगा स्वच्छ दूध उत्पादन और उसका परिवहन। जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर उपरीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। संचालन चंपेश्वर गोस्वामी का और प्रस्तुति शशि प्रकाश पांडे की। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12 बजे, हमर हाथी अमर गुड़ शाम 5 बजे, हमारी बेड़ियां शाम 6:30 पर। चितपट संगीत सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति। सः सूरतनगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादन प्रकल्पस्य औद्यमिक क्षेत्रस्य च कृते 8,18,000 crore rupees बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। श्रीमोदी सूरतनगरे 200 शय्या युक्तं ESIC इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति, यत् विशिष्ट क्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाः प्रदास्यति। प्रधानमंत्री गुजरात सर्वकारस्य अनेकेषां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणां उद्घाटनमपि करिष्यति, येषु आधुनिक विद्युत वितरण उन्नयनम्, उन्नत अपशिष्ट व्ययनम्, पेट्रोलियम चेत्यादीनि अन्तर्भवन्ति। सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी दमननगरं गत्वा प्रायः 77,900 crore rupees विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। एतासु परियोजनासु स्वास्थ्यसेवा, नागरिक विमानयानम्, पर्यटनम्, अवसंरचना, संपर्कः, जनकल्याणम् इत्यादीनि विविध क्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमंत्री नमो विमानस्थानकस्य, नमो चिकित्सालयस्य च नूतन भवन सहितं प्रायः 44,300 crore rupees परियोजनानां उद्घाटनं संपर्कं च अपि करिष्यति। नूतन विमानस्थानक टर्मिनल इत्यनेन क्षेत्रीय वायुसंपर्कः महत्वपूर्ण रूपेण वर्धिष्यति, अपि च अस्य प्रदेशस्य आर्थिक वृद्धि च सुकरा भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् द्वैमासिक्याः मौद्रिक नीत्याः घोषणां करिष्यति। RBI इत्यस्य प्रमुखः संजय मल्होत्रा अद्य प्रातः मौद्रिक नीति समित्या कृतानां निर्णयानां उद्घोषणं करिष्यति। SBI रिसर्च रिपोर्ट इत्यस्य अनुसारं वर्धमान मुद्रास्फीतिः, क्रूड मूल्यानि, अवमूल्यन रूप्यकाणि, संभाव्य दुर्बलं वर्षाकालम् इत्यादीनां समस्यानां निवारणार्थं रेपो इत्यस्य मितौ वृद्धि समुचितोपायः न भविष्यति, तद्विहाय RBI अल्पकालिक लाभांश मिति साधनानि द्रव्यता उपायांच उपयुज्य विपण्याः विकृति परिहर्तुं वित्तीय स्थिरतां च समर्थयितुं शक्नोति। SBI इत्यनेन संसूचितं यत् भारतं सापेक्षकरूपेण प्रबलं समष्टि आर्थिकमूल्यं निरन्तरम् अनुभवति, तथा च वर्तमान मुद्रास्फीति प्रतिसन्धि बहुधा बाह्यकारणानां विशेषतः पश्चिम एशियायाः भूराजनैतिकसमस्यया अशोधित मूल्यानां वर्धनेन च प्रेरिता अस्ति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में

0: 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूजान AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुति श्रेया श्रीवास्तव की है।

नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। हर सुबह रात के पालने से निकलकर प्रकृति की गोद में सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है। नए उत्साह और नई स्फूर्ति के साथ हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचानकर उनके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का हर सवेरा एक नई शुरुआत है, कुछ नया, कुछ खास और कुछ बेहतर करने की। बीते हुए कल के बोझ को पीछे छोड़ आज की नई राह पर चलने की। हर नया दिन हमारे लिए उन नए रास्तों को खोलता है जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर दूरियों को घटाएं और जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव और पूरे दिल से स्वागत करती हूं आप सभी प्यारे श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में। ये कहते हुए कि नमस्कार रायपुर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: मनुष्य के महान विचार ही क्रिया रूप में परिणित होकर भविष्य में उसके द्वारा किए गए महान कार्य बनते हैं। श्रोताओं, प्रेरणादायक ये सुविचार है भारत की स्वतंत्रता में बहुमूल्य योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री विनायक नरहरि भावे का, जो आगे चलकर विनोबा भावे के नाम से जाने गए। अपने इस सुविचार के जरिए वो हमें जीवन में अच्छे और सकारात्मक विचारों के महत्व को समझा रहे हैं। उनका कहना है कि महान कार्य की शुरुआत महान विचारों से होती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। सकारात्मक विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं और आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। हमारे अच्छे विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन को बेहतर बनाते हैं। सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ते ही हमारे कार्यों में दिखने लगता है। इसलिए हमारी सोच का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का सार है। इसके बिना किसी को भी सफलता नहीं मिलती, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे अच्छे विचार

और सकारात्मक सोच ही वो हथियार हैं जिससे कि हम नकारात्मकता का डटकर सामना कर सकते हैं। कठिनाइयां कभी भी रास्ता नहीं रोकती, वो हमें मजबूत बनना सिखाती हैं। हर दिन एक नया मौका है अपनी गलती सुधारने का और खुद को बेहतर बनाने का। अगर अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छे विचारों के साथ किसी काम को किया जाए तो सफलता निश्चित है। वो सफलता जो केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज और देश हित में भी सहायक होती है। इसीलिए सच्चे कर्म करते हुए अच्छे विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जितने अच्छे विचार होंगे, जीत उतनी ही शानदार होगी।

0: श्रोताओं, जब हम किसी खास तारीख पर इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उस दिन की पूरी दास्ता बयां हो जाती है। ऐसे ही आज का ये दिन भी वैश्विक स्तर पर कई मायनों में खास है। तो आइए हम भी जाके इतिहास के पन्नों में और देखें कि साल के छठवें महीने का ये पांचवा दिन अपने साथ क्या खास लेकर आया है। साथियों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हमें पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। ये केवल एक दिन नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है कि हम पृथ्वी को स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। ये दिन दुनिया भर के लोगों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सोचने और उसके समाधान के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और वैश्विक स्तर पर इसके प्रति राजनैतिक और सामाजिक जागृति लाने संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से भी अधिक देशों की भागीदारी होती है और हर साल इसे एक विशेष थीम या विषय के साथ मनाया जाता है। इस साल यानी 2026 का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। ऐसे में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संकट की गंभीरता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय पर हमने बात की रायपुर उप वन मंडलाधिकारी श्री आनंद कुदरे से। तो आइए आपको सुनवाएं इस विषय पर श्री कुदरे से विशेष संवाद।
1: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्ते मैडम।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं।
2: वर्तमान में सरकार मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बना रही है। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार मिलकर वानिकीकरण जो एफॉरेस्टेशन होता है को बढ़ावा देने के लिए एपिड माह के नाम जैसे बड़े वृक्षारोपण अभियान चला रही है। इसके अलावा हाल ही में लागू प्रबंधन नियम 2026 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के माध्यम से अपना सिंगल यूज पॉलिथीन जो प्लास्टिक के कड़ा प्रतिबंध कचड़े का सही निपटारण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ गाँव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत जल संरक्षण एवं बायोगैस मैनेजमेंट के लिए सर्वे तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी है को काफी बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि अपना कार्बन एमिनेशन कम होगा और साथ ही ईवी वाहन जिससे प्रदूषण कम हो और इलेक्ट्रिक वाहनों में सब्सिडी एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार हो रहा है। इस प्रकार सरकार द्वारा लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं।
1: सर, इन सभी प्रकल्पों को सफल करने जन सामान्य किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।
2: कोई भी सरकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जनभागीदारी ना हो। आम जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं और इसी कारण से जैसे हमको जीवन शैली बदलाव, लोगों में अपनी दैनिक आदतों में सुधार करें, पानी की बर्बादी ना करें, बिजली बचाना, प्लास्टिक का वेस्ट का कचरा प्रबंधन, सूखा गीला कचरा अलग अलग रखें, हर एक संकल्प जैसे अपना पौधे लगाएं अपनी वर्षगांठ पे या फिर जन्मदिवस पे, पर उसको लगाने के साथ साथ उनका देखभाल भी करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें जैसे निजी वाहन की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से जनमानस जनभागीदारी के द्वारा बहुत सारी चीजें हम शासन स्तर की जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी ले सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, क्योंकि योजना सरकार के द्वारा अकेला संचालित नहीं है, पब्लिक की है, पब्लिक के लिए और पब्लिक के द्वारा है। यदि वो सपोर्ट करेंगे तभी हमारा काम बहुत अच्छे से हो सकता है।
1: सर, पर्यावरण संकट की गंभीरता और विश्व पर्यावरण दिवस के उद्देश्य पर आप क्या कहेंगे।
2: की डेट में जो भी अपन पर्यावरण संकट से गुजर रहे हैं, बेमौसम बारिश, गर्मी में कितनी बारिश हुई है और लगातार बढ़ते तापमान, हीट वेव का सीधा संकेत है कि हम लोग आज की डेट में पर्यावरण संकट के दौर में एंटर कर चुके हैं। इस तरह साल में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का जो चेंज है क्लाइमेट एक्शन जो थीम इस बार की वो भी है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो थीम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर जो नेचर तौर पर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर भविष्य के लिए भी ये एक संकेत है कि क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। इस दिवस में हम केवल उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं बल्कि दुनिया भर के इंसानों को याद दिलाना कि प्रकृति बचाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। साथ ही साथ ये भी है आगे आने वाली पीढ़ियों को शायद हम इतना शुद्ध हवा ना दे पाए जैसे आज की डेट में दिल्ली में देखें वो धीरे धीरे अमूमन सारे शहरों की ओर बढ़ेगा। साथ ही साथ पानी की अभी गर्मी में आप देखिए पानी कितना नीचे चला गया।

0: रायपुर अकेले शहर में कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे कि बोर्ड सूख गए हैं। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, यदि हमने अभी भी नहीं संभले तो अभी 10-12 साल में शायद हमारे लिए पानी और हीट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमको सहन करना संभव ना हो। और केवल ये उत्सव नहीं है, एक अर्थ बोला जाए तो हमारे लिए आत्ममंथन है जिसमें कि हम ये चीज को करें कि कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको देखे जा सके।
1: सर, इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में किस तरह से मनाया जाना है?
0: विद्यालय प्यारण भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे वन मंत्री जी की अध्यक्षता में एक परिचर्चा आयोजित की गई है, जो एक टेक्निकल सेक्शन रहेगा। इस टेक्निकल सेक्शन में प्रबुद्ध जन जितने भी हमारे पर्यावरणविद हैं और साथ ही साथ पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं उन्हें बुलाया गया है, और इसमें स्कूली बच्चे कई कॉलेज के विद्यार्थियों को इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिससे कि उनको यह पता चले कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जैसे इस साल बायोडाइवर्सिटी एक वेटलैंड बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अपने लिए, तो जैसे हमारा इस साल पे अपना खोपरा जलाशय रामसर साइट ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है और घोषित हुआ है रामसर साइट के लिए, और साथ ही साथ हमारा इस बार का जो पौधे वितरण का है 11 लाख पौधे हम रायपुर शहर को वितरित करेंगे जिसमें नीम

0: हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में किस तरह से मनाया जाना है?
1: पहले तैयार रहने भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे वन मंत्री जी की अध्यक्षता में एक परिचर्चा आयोजित की गई है। जो एक टेक्निकल सेक्शन रहेगा, इस टेक्निकल सेशन में प्रबुद्धजन जितने भी हमारे पर्यावरणविद है और साथ ही साथ पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्हें बुलाया गया है और इसमें स्कूली बच्चे कई कॉलेज के विद्यार्थियों को इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे कि उनको यह पता चले कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जैसे इस साल बायोडाइवर्सिटी एक वेटलैंड बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अपने लिए, तो जैसे हमारा इस साल पे अपना खोपरा जलाशय रामसर साइट ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है और घोषित हुआ है रामसर साइट के लिए। और साथ ही साथ हमारा इस बार का जो पौधे वितरण का है, 11 लाख पौधे हम रायपुर शहर को वितरित करेंगे, जिसमें नीम, महुआ, पीपल, अभी विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं। किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत भी हम लोग कुछ पौधे वितरण करेंगे, लगभग 2.5 लाख पौधे का है, जिसमें सागौन आने वो इकोनॉमिकल स्पीसीज रहती है। और इसके अलावा कुछ जन जागरूकता रैली, दौड़, प्रतियोगिताएं स्कूली और पर्यावरण थीम पर, साफ सफाई अभियान और पर्यावरण के लिए जो आगे आके काम कर रहे हैं उनको हम चाहते हैं कि कुछ सम्मान दें।
0: सर, अंत में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप हमारे सभी श्रोताओं से इस विषय पर और क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
1: अंत में मैं आपके माध्यम से सभी आदरणीय श्रोताओं को बस यही कहना चाहूंगा कि धरती हमारा एकमात्र घर है, इसे बचाना किसी एक व्यक्ति या सरकार नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने और या अपने परिवार के किसी भी एक विशेष दिन जैसे जन्मदिन या बरसात पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे को बनाने तक पालें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, पानी की हर बूंद बचाएं एवं प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर आपकी एक छोटी सी शुरुआत इस धरती को हरा भरा बना सकती है।
0: सर, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी उपयोगी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आज 5 जून है और हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल की है, जहां हमर सवारी हमर संगवारी के रूप में रायपुर शहरवासियों को माइक्रो सिटी बस सेवा का अनुभव कर इसका लाभ लेने का मौका दे रही है, जिसके संचालन में CEEW की विशेष भूमिका होगी। CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में शोध करने वाली ये दुनिया की अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक है। ये संस्था रायपुर शहर में केंद्र और राज्य सरकार, परिवहन विभाग और रायपुर नगर निगम के सहयोग से एक प्रायोगिक परियोजना के तहत माइक्रो सिटी बसों का संचालन करने जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा इन बसों को चलाने की अनुमति 5 जून विश्व पर्यावरण

0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दी जाएगी और 8 जून से इनकी औपचारिक शुरुआत होगी। ऐसे में राजधानी रायपुर में सतत आवागमन की जरूरत और शहर में प्रयोग के तौर पर संचालित होने जा रही माइक्रो सिटी बस सेवा से जुड़ी सभी सटीक और अधिकृत जानकारी आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की वरिष्ठ पर्यावरण शोधकर्ता और CEEW में फेलो डॉक्टर हिमानी जैन से। तो आइए आपको सुनवाएं इस विषय पर डॉक्टर जैन से खास बातचीत।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: धन्यवाद
1: मैम। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को हमर सवारी हमर संगवारी के रूप में शहरवासियों को मिल रही नई मिनी सिटी बस सेवाओं के बारे में बताएं।
2: हमार सवारी हमार संगवारी यह एक छत्तीसगढ़ सरकार परिवहन विभाग और रायपुर नगर निगम के सहयोग से प्रयोग के तौर पर संचालित करने जा रहा है। CEEW काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर जो कि एक गैर सरकारी शोध संस्थान है वो यह 45 दिन का पायलट करने वाला है। इस पायलट में हम कुछ छोटी बसें जिन्हें हम माइक्रो बस कहते हैं इनको 45 दिन के लिए चलाएंगे। ये सभी माइक्रो बसेस 17 से 20 सीटर के बीच में हैं और ये 8 व्हीकल दिन भर में लगभग 12 से 14 घंटे चलेंगे और ये सुबह 7 बजे से चलना चालू होंगे और लगभग रात के 9 बजे तक पीक आवर्स में चलेंगे।
1: मैम ऐसे में इस पायलट प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या है और CEEW की इसमें क्या भूमिका है?
2: काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर दिल्ली स्थित एक क्लाइमेट थिंक टैंक है। इसका कार्य देश की सरकारी संस्थाओं को नीति से रिलेटेड रिसर्च प्रोवाइड करना होता है। हमारी संस्थान बहुत समय से सार्वजनिक बस सेवा को कैसे अच्छा और बढ़िया किया जाए इस पे काम कर रही है। हम लोगों ने देखा कि M2 कैटेगरी यानी कि 10 से 20 सीटर वाले व्हीकल्स में काफी कमी है। ये व्हीकल्स बस की तरह इंडिया में यूज नहीं होते हैं लेकिन भारत के अलावा बाकी कई देशों में इसका ये बहुत सारे यूज होते हैं लेकिन कुछ वजह से इंडिया में इनका यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह या बस सेवा में नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे इन व्हीकल को छोटी सिटीज में डाला जा सकता है, कैसे ये वहाँ पर बस की तरह काम कर सकती है और कैसे बड़े शहरों में जहाँ पर छोटी सड़कें हैं या डिमांड थोड़ी कम है वहाँ पर इन छोटी बसों को कैसे बस सर्विस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पायलट के माध्यम से हम 4 चीजें देखना चाहते हैं। पहला कि क्या इस तरह का कोई छोटा बस लोगों के लिए सहूलियत भरा है, क्या वो सेफ है, क्या लोग उसको पसंद करते हैं, क्या लोगों के लिए वो अफोर्डेबल है, क्या लोग उतना पैसा देकर के उस बस को यूज करना चाहते हैं और यदि हम इस तरह की बस चलाते हैं तो इन सब बसेस के लिए शहरों को कितना खर्चा पड़ेगा और लोगों को कितनी सहूलियत होगी। हमें लगता है हमारी स्टडीज के द्वारा कि लगभग 100 से 150 छोटी माइक्रो बसेस की जरूरत रहेगी और इनसे हमें लगता है कि लगभग सालाना हम लोग 3000 टन तक क्लाइमेट गैसेस यानी ग्रीन हाउस गैसेस को हम बचा पाएंगे और इससे शहर में प्रदूषण कम होगा, इससे कंजेशन कम होगा और यहाँ तक कि इससे हवा भी साफ होगी।
1: मैम अब हम आपसे इस पायलट बस सेवा के लिए निर्धारित मार्ग समय और किराए के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे।
2: ये एक प्रायोगिक बस सेवा है यानी ये हम केवल 45 दिनों के लिए इसको चला रहे हैं और हम इसी से इसकी उपयोगिता इत्यादि के बारे में पता लगाएंगे। इसमें 2 रूट पर बसें चलाई जाएंगी। पहला रूट जो कि कनेक्ट करेगा रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को ISBB से, तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट या बड़े ट्रांसपोर्ट हब्स हैं और इसके अलावा इन दोनों रूट को कनेक्ट करते हुए बस गाड़ी चौक और कालीबाड़ी चौक के थ्रू से निकलेगी। एक दूसरा रूट है जो कि काटीबंद चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक है और इसमें भी बस एम्स NIT साइंस कॉलेज जैसम चौक इन सबको क्रॉस करती हुई निकलेगी। ये बिल्कुल शहर के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती हुई जाएगी। इसकी सर्विसेज सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक होंगी। ये दोनों ही रूट लगभग समझे 9 से 11 किलोमीटर के बीच में है और इनका किराया जैसा कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में तय किया गया है जो कि बाकी बसेस का किराया होता है इनका किराया भी वैसे ही होगा। इसमें 0 से 4 किलोमीटर तक के बीच में लगभग 13 रुपए का किराया होगा, 4 से 8 किलोमीटर के बीच में लगभग 19 रुपए का किराया होगा और 8 से 12 किलोमीटर

0: करके बीच में लगभग 25 रुपए का किराया होगा। ये दोनों रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट शैक्षिक, वाणिज्यिक, स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक केंद्रों को कनेक्ट करते हुए जाते हैं, तो ये बहुत ही किफायती सर्विस देंगे इन 45 दिनों के लिए शहर वासियों को।
1: मैम, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं को इस विषय पर क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगी या उनसे क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
0: देखिए, हम आपसे, श्रोताओं से सिर्फ दो बातें कहना चाहेंगे कि अगर हमें अपने शहरों का परिवहन सुधारना है तो उसके लिए हम भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जब भी हमें कुछ छोटे दूरी पर जाना हो, जैसे कि 1-1.5 किलोमीटर तक, तो जहाँ तक हो सके आप पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ धूल धुआं कम होगा शहरों की सड़कों पर, इससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी। जहाँ भी आपको थोड़ी लंबी दूरी के लिए जाना हो, आप सार्वजनिक परिवहन का ही इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके ऑटो रिक्शा और बस ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करें, और निजी वाहन कम से कम इस्तेमाल करें। अपने टू व्हीलर, अपने कार कम से कम इस्तेमाल करें। इससे न केवल एयर पोल्यूशन कम होगा, इससे सड़कें भी कम कंजेस्टेड रहेंगी और इससे हमें ईंधन बचाने में भी बहुत फायदा होगा।
1: मैम, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, भारत सरकार वर्तमान में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं और अभियान चला रही हैं। फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य, ऐसा ही एक अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य है जो है उससे बेहतर चाहिए। इस अभियान के अंतर्गत विकसित भारत के सपने को साकार करने बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण एक अहम मुद्दा है। और इसी के चलते आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा एवं अन्य शैक्षणिक सामाजिक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से विशेष मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में भारत का भविष्य अभियान और मानव श्रृंखला कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के अध्यक्ष श्री विश्वास मेश्राम से। तो आइए आपको सुनवाते हैं श्री मेश्राम से इस विषय पर विशेष चर्चा।
1: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार जी।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत का भविष्य ये अभियान क्या है।
2: मैं भारत के भविष्य अभियान के बारे में बताना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का लक्ष्य जो है विकसित भारत बनाने का एक रोड मैप तैयार किया गया है। 2047 में हमारी आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो विजन इंडिया 2047 या विकसित भारत का संकल्प एक कार्यक्रम है, और ये 100 सालों में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। ये हर नागरिक का सपना है, एक जन आकांक्षा है, और इसी दिशा में ये जो विकसित भारत संकल्प कहिए या भारत का भविष्य कहिए, हम काम कर रहे हैं, और जैसा है उससे बेहतर भारत बनाने के लिए हम सब लोग, भारत के जो भी नागरिक हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये है भारत का भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ इंडिया प्रोग्राम।
1: सर, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हम एक विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं, और इसके तहत 2047 तक भारत को 30 लाख करोड़ डॉलर की यानी 30 ट्रिलियन डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाना एक बड़ा उद्देश्य है, और इसके अंतर्गत हम भारत की अर्थव्यवस्था को इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। शिक्षा और स्किल में हम दुनिया भर में अपने मैन पावर को, हमारा जो मानव संसाधन है उसको विकसित करना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर 6G और AI सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मेड इन इंडिया की चिप भारत में बनाना चाहते हैं, और इवन छत्तीसगढ़ में भी हम जो है इसके लिए फैक्ट्री डालने का सपना देखते हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, नेशनल वाटरवे रायपुर से दिल्ली तक, बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी, ये सब इसका एक पार्ट है। इसके अलावा ग्रामीण विकास की जो योजना है जिसके तहत हम गांव की इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, सबके लिए स्वास्थ्य, और वो भी किफायती स्वास्थ्य, ताकि हर नागरिक को बेहतर जीवन मिल सके, हमारी आयु लंबी हो सके और हम स्वस्थ जीवन जिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा जो काम चल रहा है, भारत अपना एक स्पेस स्टेशन बना ले अंतरिक्ष में, चंद्रयान मिशन हमारे पूरे हो, गगनयान हो, और छत्तीसगढ़ के बच्चे भी अंतरिक्ष जाएं, ऐसा हम इसको लेके टारगेट हमारा है। हरित भारत के तहत जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे इस दिशा में काम करना चाहते हैं। तो इस तरह ये 8 जो है हमारे मुख्य लक्ष्य हैं, इसमें हम पर्यावरण को लेकर भी बहुत ही संवेदनशील है।
1: सर, ऐसे में इस अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
2: हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को रायपुर शहर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सुबह सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तेली बांधा मैरिन ड्राइव में इकट्ठा होंगे रायपुर शहर में, और रायपुर शहर के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, साइंस एक्टिविस्ट है, और आम लोग भी, सब हम इकट्ठा होकर वहाँ पर ये संदेश देंगे कि हम पानी बचाएं, हम जंगल बचाएं, हम हवा बचाएं, और इसके साथ साथ ढेर सारे पेड़ पौधे लगाकर हम जो है अपने पर्यावरण को बेहतर बनाएं। आम लोगों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं।

0: कि हम आज से ही शुरुआत करें तो एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, जैसा है उससे बेहतर भारत।
1: सर, जो कोई भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए क्या करना होगा? क्या किसी तरह की विशेष प्रक्रिया इसमें शामिल है?
0: हाँ, हम लोगों से अपील की है हमने कि वो अपने बच्चों के साथ में आएं, पड़ोसियों को भी लेकर आएं, परिवार सहित आएं और वहाँ आकर हाथों में हाथ डालकर बेहतर पर्यावरण के लिए एक संदेश दें। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ खड़े होंगे। कुछ पोस्टर्स वगैरह हैं, स्लोगन्स लिखे हुए कि हम छत्तीसगढ़ को हरा भरा बनाएंगे, हम भारत को हरा भरा बनाएंगे। इस तरह जो है हम इस पे बातचीत भी करेंगे और बच्चों से लेकर बड़ों तक हम गीत भी गाएंगे वहाँ अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, और उनके माध्यम से जो है हम लोगों तक संदेश पहुँचाएंगे।
1: सर, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से इस विषय पर और क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
0: बस यही कि ये जो पर्यावरण हमारा खराब होते जा रहा है, उसके कारक भी मनुष्य ही हैं, तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम मनुष्यों की ही है। इसलिए हम सब जो है, एक तरफ तो हम रोकने का काम करें, अपने पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए, हमारे नदी नालों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, और इसके साथ साथ जो है बड़े पैमाने पर हम अपने जल, जंगल, जमीन और ह्यूमन रिसोर्स को भी, हमारे जो मानव संसाधन है उनको भी बचाने के लिए पर्यावरण दिवस पे संदेश देने जा रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये संभव है और हम सबको मिलना होगा, सबको सामने आना होगा। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि छोटा सा एक कदम भी बहुत बड़ा कदम होगा आगे चल के।
1: सर, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी उपयोगी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, आइए अब आपको रायपुर रेलवे स्टेशन में हो रहे पुनर्विकास कार्य के चलते यात्री सुविधाओं और व्यवस्थाओं में किए गए बदलाव के विषय में आवश्यक जानकारी दें। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में चल रहे मेजर रीडेवलपमेंट यानी पुनर्विकास कार्यों के बीच यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर में विभिन्न यात्री सुविधाओं और व्यवस्थाओं में फेरबदल की गई है, जिससे कि प्रवेश निकासी सहित टिकट वेंडिंग मशीन और फोर व्हीलर पार्किंग का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। अब चार पहिया वाहनों की पार्किंग स्टेशन में एक्सप्रेसवे के पास शुरू कर दी गई है। रेलवे प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार स्टेशन पर निर्माण कार्यों के कारण अब चार पहिया वाहन चालकों को इसी नए स्थान पर अपने वाहन पार्क करने होंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाए रखने और निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पार्किंग व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है। रेलवे पर प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले नई पार्किंग व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर लें और निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही अपने पार्किंग को करें, इससे कि स्टेशन परिसर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आप भी आने वाले दिनों में किसी कारणवश रायपुर रेलवे स्टेशन जाने का विचार कर रहे हैं तो कृपया इन सभी जानकारियों पर विशेष ध्यान जरूर दें, ताकि व्यवस्था भी बनी रहे और आप भी बिना किसी रुकावट अपने कार्य को पूरा कर सकें।

श्रोताओं, आज के लिए नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का ये सुहाना सफर यहीं पूरा होता है। बहुत जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार रायपुर, इस सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुत किया श्रेया श्रीवास्तव ने। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत

0: की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा

0: रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए

0: कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी

0: 100 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yoga Asana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 बजे हैं। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सुनीता गुड़बुले से बातचीत। प्रस्तुत करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो शहरों में कई ऐसी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट अस्पताल होते हैं जहां आसानी से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए सुविधा प्राप्त हो सकती है। लेकिन यही जब हम गाँवों में जाते हैं तो वहाँ चिकित्सा संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। ग्रामीण कुछ इलाके होते हैं जहाँ प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी, सीएससी जैसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहाँ आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके भारत में ऐसे हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है और उन दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की मदद मिल पाना भी उतना ही कठिन होता है। तो श्रोताओं, अगर हम बात करें अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो हमारा छत्तीसगढ़ काफ़ी वन आच्छादित प्रदेश है और यहाँ कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ चिकित्सा सुविधाओं की पहुँचने की आज भी दरकार है। और ऐसे ही कुछ स्थानों में ऐसे लोग कार्य करते हैं जो चिकित्सा सुविधाओं को ऐसे लोगों तक पहुँचाना सुगम बनाते हैं। और कहा जाता है कि किसी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना काफ़ी पुण्य का कार्य होता है। तो श्रोताओं, डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले, जिन्हें गोडबोले दंपत्ति के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और अबूझमार के आदिवासी इलाकों में ये 40 वर्षों तक निस्वार्थ चिकित्सा सेवा दे रहे हैं और इन्हें वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी इलाका है वो काफी दुर्गम है। इन्होंने मिलकर अब तक 1,00,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया है। श्रोताओं, इसी सेवा के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता गोडबोले से। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: जी। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं वैसे पहले पुणे में ही रहती थी, मतलब मेरा जन्म और शिक्षा पूरा सभी मेरा पुणे में हुआ। और जब मैं शिक्षा ले रही थी तभी मेरे महाविद्यालयीन जीवन ने, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो अखिल भारतीय संगठन है, छात्र संगठन, उससे जुड़ी थी। और उनके जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता और अधिकारीगण, प्रोफेसर भी उसमें रहते थे, कुछ पूर्णकालिक जो कार्यकर्ता रहते थे, उनके द्वारा जो हमको जानकारी दिया जाता था या उनके साथ जो संवाद होता था हमारा, उसके कारण हमारे मन पर ये प्रभाव पड़ा कि भाई हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऐसे समूहों के लिए करना चाहिए, ऐसे समुदायों के लिए करना चाहिए जिनको उसका, मतलब जो भी सामाजिक इसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी मौका होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, वो जिनको कम है और अभी भी वो थोड़े से पीछे है बाकी समाज से, ऐसे समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। मेरी मतलब पढ़ाई पूरी होने के बाद, मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क हूँ, तो मास्टरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, तो क्यों ना मैं आदि

0: आदिवासी समाज में, जनजाति समुदाय में काम करूँ, इसलिए मैं इस काम में आई।
1: जी, तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ माओवादी प्रभावित इलाकों में, तो वो विकास की राह से काफी पीछे हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए कितनी मुश्किल था उन इलाकों में?
0: बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम जब 1990 में हम यहाँ बारसूर जो है दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा गाँव, उस समय इसकी जनसंख्या केवल 3000 थी। आज वो नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उस समय केवल 3000 जनसंख्या थी। इतने छोटे से गांव में जो हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उनके जो अधिकारी, उन्होंने हमको भेजा यहाँ पर और बताया कि भाई आप यहाँ पर अस्पताल चलाने का काम डॉक्टर गोरबोले जी करेंगे और सुनीता जो है वो महिलाओं के लिए काम करेंगी। तो इस प्रकार से हमारा काम शुरू हुआ। और तो उस समय तो यहाँ तो कुछ सुविधा ही नहीं थी, मतलब पानी और बिजली का इतना बात नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत ही अनास्था थी। और कोई भी एक केवल 5वीं तक का एक स्कूल था, और जो बाद में फिर एक 8वीं तक, कुछ सालों बाद 8वीं तक भी हो गया। और अस्पताल तो डॉक्टर जरूर था, लेकिन वो जो थे लोगों की यहाँ पर, मतलब कहना ऐसा था कि अरे नहीं, आश्रम के डॉक्टर भैया आ गए, बहुत अच्छा हो गया, हमको अभी दवाई अच्छा से मिलेगी। तो इसलिए आश्रम के जो वहाँ, मतलब अस्पताल था जो हमारा जो था, उसका महत्व नहीं, मतलब उसकी आवश्यकता ज्यादा महसूस होते गई।
1: जी, तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं हमारे अबूझमाड़ प्रदेश की और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग की, तो वहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की दरकार हमेशा से रही है, और वहाँ बारिश के दिनों में हम देखें तो कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है, मलेरिया, डेंगू, जो खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। तो इस समय जब इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तो आप लोग उन इलाकों में कैसे पहुँच पाते हैं?
0: नहीं, देखिए, हमने दो प्रकार का काम किया। शुरू में तो हमने अस्पताल चलाया जहाँ पर मरीज हमारे पास आते थे, और ज्यादातर जैसे जैसे मतलब लोगों में ये जानकारी हो गई कि आश्रम का अस्पताल फिर से शुरू हो गया है, तब वैसे वैसे बहुत 30-35 किलोमीटर दूरी से भी मरीज हमारे यहाँ आते थे। अबूझमाड़ का के द्वार पर बारसूर है, वहां से इंद्रावती पार करने के बाद तुरंत अबूझमाड़ शुरू हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अबूझमाड़ के इलाके से बहुत सारे मरीज जो रोगी जो है हमारे पास आते थे, और इसमें ज्यादातर मरीज ये कुपोषण के, और खास करके मतलब आपने जैसा कहा वो मलेरिया के, और मतलब एक कमर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसे मतलब बार बार हम एक ही बीमारी को बार बार होना, जैसे मलेरिया जो बीमारी है वो बार बार होना, उस समय हमें ये मतलब टीबी के मरीज भी बहुत मिलते थे, और इसके कारण हमने वो ऐसे मरीजों को जगदलपुर ले जाना जो मरीज को हम समय पर यहाँ पर ठीक नहीं कर सकते। जैसे बच्चों को मलेरिया आता है तो उसको गुनिया के पास पहले वो लोग ले जाते हैं, मांड्रिक के पास ले जाते हैं, तो ऐसे मरीज को स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ कोई अस्पताल जैसी मतलब बेड की वगैरह सुविधा नहीं थी। तो बाद में जब 4-5 साल के बाद एम्बुलेंस मिल गई, तब हम उनको ट्रांसफर करना शुरू किया कि तुरंत दौड़ाना उनको जगदलपुर। हमारी एम्बुलेंस और ड्राइवर हमेशा तैयार रहता था, पैसे की कभी पूछताछ हम नहीं करते थे, जैसे ही मरीज आया दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि वो ही बेचारे 20-30 किलोमीटर चल के आते थे, और ऐसे में वो मरीज को मतलब जल्दी से जल्दी बिना ज्यादा समय गवाए पहुंचाना, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होता था, और वो हम पूरा कर पाते थे। और जब बच्चा अच्छा होता हो जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। तो मुख्य रूप से मतलब बारिश में तो ये कटाफ ही होता था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से कितना भी बोलो वहाँ के मरीज यहाँ आना और हम वहाँ जाना आसान नहीं था। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारा भी एक अस्पताल का रूटीन बन गया और ये हो गया, और फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब ये चालू हो गया अपना अस्पताल, सरकारी अस्पताल धीरे धीरे चालू हो गए, तब हमने अंदरूनी मरीजों के तक ले जाने के लिए मेडिकल कैंप शुरू किए, मतलब कम से कम 20 किलोमीटर अंदर से गांव में मेडिकल कैंप लगाना, क्योंकि ऐसे लोगों को बारसूर आने की सुविधा ही नहीं थी, क्योंकि तब तक भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग ज्यादातर काम करना चालू किए और उन तक पहुंचाना, मतलब जो मरीज अंदर अंदर पारा के नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे मरीजों को पहुंचने के लिए हमने मेडिकल कैंप जगह जगह शुरू किए।
1: जी सुनीता जी, अभी आपने बताया कि जब ऐसी स्थिति आती है, आपात कोई स्थिति, तो घर वाले बैगा बुनिया के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं,

0: क्योंकि ग्रामीण अंचल है और वहाँ पे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जब नहीं मिल पाती हैं तो वो अक्सर करके इस तरह के झाड़ फूक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये कितना नुकसानदायक होता है स्वास्थ्य के लिए और किस तरह लोग इसके चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं?
1: बहुत सारा होता था उस समय तो और ज्यादा, क्योंकि मैं जब भी हमारा चर्चा हुआ वैसे कि सुविधा कुछ थी नहीं आने जाने का, तो उनके सामने और कोई चारा भी नहीं था। और शुरू से ही वो मान्यता भी थी कि भाई मांत्रिक के पास जाएंगे तो। दूसरी एक बात छोटी सी, जो छोटी है लेकिन बहुत ध्यान देना चाहिए, कि जब भी कभी उनको बारसूर तो ठीक है, लेकिन बारसूर या जगदलपुर या रायपुर भी जाना है या दंतेवाड़ा भी जाना है ना सरकारी अस्पताल में, तो उनके लिए वो एक अलग माहौल है, उनके लिए वो भाषा अलग, वो सामने वाले दिखने वाले सब लोग अलग, जो शहरी है जिनको हम पायका बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो ऐसे लोगों के साथ उनको बात करने में डर लगता है। तो उनको ऐसा लगता था कि भाई वहां जाने की जगह अपन मांत्रिक के पास ही जाएंगे। तो हमको ये भी काम करना पड़ा शुरू में कि ये जो भाई आप बच्चे का जान गंवा रहे हो, और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जान गंवानी पड़ी सांप काटने में, इसमें भी वो पहले मांत्रिक के पास ही जाते हैं। और मलेरिया जैसी बीमारी यहाँ खतरनाक फाल्सीपेरम मलेरिया है, मतलब किलिंग पेटल मलेरिया है, तो ऐसे मलेरिया में तो उनको तुरंत दवाई की आवश्यकता है, मांत्रिक के पास जाके वो करना ठीक नहीं है। ये धीरे धीरे हमने उनके मन में बिठा दिया कि बच्चे की जान अगर समय पर आपको बचाना है तो आपको समय पर दवाई, आप उसका मलेरिया है नहीं है टेस्टिंग करिए, उसके बाद आप दवाई लेके उसके बाद आप अगर जाना है तो मांत्रिक के पास जा सकते हैं। तो ये उनके मन में हमने विश्वास दिलाया कि भाई आपको दवाई बहुत आवश्यक है तो आपको उसके लिए आना चाहिए। टीबी के लिए भी मांत्रिक के पास जाके पूरा खोखला हो जाएगा पेशेंट अंदर, उसके बाद वो हमारे पास आता था, मतलब बहुत ही कठिन था उस समय।
0: जी जी जी, वाकई में इस परिदृश्य में काम कर पाना काफी कठिन होता है। जी, आपने उन सब परिस्थितियों में काम किया है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे और बातें करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई एक गीत हम सुने।
1: हाँ, मेरे पसंद का चयनित तो ये है कि जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबां, फिल्म माया का गीत है।
0: जी, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पद्मश्री सुनीता गोडबोले जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनीता गोडबोले से, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये अभुजमाड़ और बस्तर के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कार्य करती हैं। सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम आपसे जानना चाहेंगे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होने के बारे में कि जब आपको पता चला कि आपको नामित किया गया है और आपको प्रदान किया जाएगा, आपको कैसा लगा?
1: पद्मश्री पुरस्कार को तो हमें 25 जनवरी को पता चला, 25 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय से फोन आया था। बहुत अच्छा लगा और हम इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और हमारा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, इन सबके आभारी हूँ। और दक्षिण बस्तर जो क्षेत्र है, ये पूरा खाली, उसका नाम लेते ही सुकमा, दंतेवाड़ा जो भी नाम लेते ही नक्सलवाद इतना ही लोगों के मन में उभर कर आता था। अब हम सोचते हैं कि ये सब होने के कारण लोगों में बस्तर में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वनोपज, जैविक खेती, इसके बारे में जो भी प्रश्न है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। कृषि को लेकर भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज वहाँ के लोग भी, मतलब कृषि आधारित जो इनकी जीविका है उसको अगर अच्छे से करना है तो जैविक खेती जो है वो और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब हमारे मन में, मतलब उसी समय ये सभी बातें भी आई कि भाई ये केवल हमारा बड़ा, मतलब हमको महत्व मिले ये बात इसमें नहीं होना चाहिए, तो बस्तर के जो प्रश्न है वो सामने आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ये बात ही पहले, सबसे पहले मन में आई।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनीता जी, डॉक्टर रामचंद गोडबोले और आपको दोनों को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। हाँ। तो जिस क्षेत्र में आपको प्रदान किया गया है, बस्तर जैसे सुदूर अंचल में फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को देना, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी घटना हुई हो कि जिस व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचना जरूरी था लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई?
1: एकदम एकदम, हमारे पहचान के, मतलब कार्यकर्ता ही है हमारे
0: जी।
1: और तो उनकी बेटी को वो ला रहे थे हमारे पास, उसकी बेटी को झटका आ रहा था और वो अबूझमाड़, मतलब नदी के उस पार, इंद्रावती के उस पार, और दो, मतलब इंद्रावती उस उधर भी इंद्रावती दो तीन बार पार करके जाना पड़ता है
0: जी, जी।
1: ऐसा वो, ऐसे वो मंगनार करके गांव है वहाँ का वो व्यक्ति, पगनू दादा उसको हम बुलाते हैं। समय वो उनकी बेटी केवल 5 साल की थी
0: जी, जी।
1: तो वो उसको लेके वो आ रहे थे और आते आते, मतलब उसको पहले तो जैसा अभी बात हुआ अपना, वैसे मंत्री के पास ही गए थे वो
0: जी।
1: उसके बाद फिर कुछ ठीक नहीं हुआ करके फिर इधर लाएंगे भाई, बारसूर आश्रम में ले जाएंगे अस्पताल में करके ला रहे थे। लाते लाते ही बीच में बारिश के दिन तूफान बह रही थी इंद्रावती, और उसके में दो नाव डालना और उसको लाना ये बहुत जोखिम भरा काम था
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने अपने बच्ची के चलते वो सब किया और इस बार आ गए, बारसूर की तरफ आ गए, लेकिन वहां से भी तो 5 किलोमीटर इधर आना था, लेकिन ये सब करते करते वो बच्ची का जान गए जैसा हो गया ऐसा, मतलब वो एक्चुअली वो गई ही थी लेकिन उनको लगा कि इसकी जान है शायद तो, लेकिन वो पूरे ही खत्म हो गई थी। फिर वो उसको पार करके फिर वो घर चले गए, वहां से फिर मांत्रिक के पास गए, फिर मांत्रिक ने उनको बताया कि नहीं, इसका इलाज नहीं हो सकता। ये घटना जब उसने हमको, जब अगले शुक्रवार बाजार लगता है यहाँ, वो बाजार के दिन आया वो और रोते रोते पूरा बात बता रहा था, तब हमको इतना दुख हुआ और इतना ये लगा कि उसके बाद का जो पानी खत्म होने के बाद

0: जो धूप है वो धूप के दिनों में हम गांव में ये बताना जाना शुरू किया कि अरे भैया आप लोग इस प्रकार से ऐसा घर में मत रखो, आप कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उसको लाओ। और सबसे पहली बात है कि वो बच्चे को गीले कपड़े से पोंछते जाओ ताकि उसका बुखार बढ़कर मस्तिष्क तक ना जा पहुंचे। और मलेरिया से बचाव मतलब केवल और केवल है ये अपना मच्छरदानी, मच्छरदानी ही है तुम्हें वो बचाव है मलेरिया से। गोली खाना तो बुखार आने के बाद होता है,
1: जी,
0: है ना, दवाई जो है वो बाद में होती है, लेकिन सबसे पहला है मच्छरदानी। तो मच्छरदानी रखोगे, हम लोग कब से मच्छरदानी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जब देना चालू किया तो कुछ लोगों के ध्यान में आया, कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर भी अभी भी अंदरूनी इसमें उसका रख रखाव ठीक से रखना जानते नहीं है, फिर वो दो चार महीना उपयोग करते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक झकझोरने वाली ही घटना थी कि इतनी छोटे बच्ची का उन्होंने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि वो घर में बैठे रहे, लेकिन थोड़ा देर से प्रयास होने के कारण और बारिश के कारण उनको वो और देर हुई और उसके कारण वो अपने बच्ची के जान से हाथ धोना पड़ा।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: उसके लिए वो आज भी पछताते हैं।
1: जी जी जी, इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। और रामचंद गोडबोले जी और आपने मिलकर जो कार्य किया है ये काफ़ी सराहनीय है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: गरजत बरसत सावन आयो रे, सुमन कल्याणपुर जी का है बरसात की रात का गाना।
1: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं सुनीता जी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनीता गोडबोले से, जिन्हें हाल ही में 2026 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से

0: और बारसूर में रहती हैं। वहीं इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कई कार्य किए हैं, दुर्गम इलाकों में इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में आप वहाँ रहकर अभी जो चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा संबंधी कौन कौन से सेवा कार्य आपने और निर्धारित किए हैं?
1: हाँ, हम लोग मेडिकल कैंप्स हमारे अंदर अंदर गांव में, जहाँ पर कुछ पहुँच नहीं है अभी किसी की और उन लोग आ नहीं सकते मरीज लोग इस प्रकार से, तो वहाँ पर हम करते हैं। केवल मेडिकल कैंप नहीं लेना है, उसका फॉलोअप भी लेना है कि कौन से मरीज को कमजोरी के लिए दवा देना है। तो डॉक्टर साहब 3 महीने की दवा लिख के देते हैं, हम 3 महीने की दवा तो एक साथ नहीं दे पाते क्योंकि उनकी उतनी समझ है नहीं है कितना खाएंगे ये सब, तो उनको 15 दिन की पहले दवा देते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं। फिर उसके साथ साथ मतलब फॉलोअप का ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो रेफरल मरीज है, मतलब जो मरीज जिसको सुना ही नहीं दे रहा है, या किसी को कोई महिला है उसको कोई पीसीओडी या गायनेक कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को हम जगदलपुर ले जाते हैं। आवश्यकता पड़े तो कभी जब पास में है तो छोटा बीमारी है तो दंतेवाड़ा भी ले जाते हैं। तो ये रेफरल का सर्विस हो गया ये मेडिकल कैंप के बारे में। और दूसरा है, एक जो मुख्य हमारा अभी पिन पॉइंट प्रोग्राम है वो है मास, मतलब माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिविएशन स्कीम, यानी आपको कुपोषण और रक्ताल्पता खून की कमी, ये दो के बारे में, क्योंकि सभी उनकी जो बीमारी की जो जड़ है वो आज इतने मतलब कम से कम 20-22 साल के बाद हमको ध्यान में आया, यानी हमने अध्ययन करके ये निश्चित किया कि भाई ये खून की कमी ही उनके जड़ में है। तो ये खून की कमी अगर कम करना है तो उसके लिए हमको सुपोषित मतलब पोषक आहार देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 3 साल से 13 साल के बच्चे का जिसका हीमोग्लोबिन कम है, 8 से नीचे है, ऐसे बच्चों को हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनको हम 6 महीना का पोषक आहार देते हैं, ताकि उसके साथ साथ हम मल्टीविटामिन आयरन, उनको मलेरिया ना हो इसलिए मलेरिया की दवाई तो सबसे पहले पेडियाट्रिशियन को दिखाना, उनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो सब क्या उसका उपयोग करना, उसके बाद फिर ये मल्टीविटामिन और ये सब चालू करना, पोषक आहार चालू करना, और उसके साथ साथ फिर उनको उनका वजन लेना और हर महीना उनका खून जांच करना, इसी से हमको पता चला। फिर इसके साथ साथ हमने दाल और तेल भी बढ़ाया ताकि वो दोपहर का भोजन में दाल खाए ताकि प्रोटीन उनको जाए, क्योंकि प्रोटीन की कमी है भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, इसके कारण शरीर में मजबूती नहीं है और वो जो जब वो 40 के हो जाते हैं तो वो अलग अलग बीमारियों की बीमारियां नहीं मतलब दर्द का, शरीर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसी शिकायतें करते हैं, तो उसका कारण मूलतः कैल्शियम और प्रोटीन की कमी। तो ये सभी बातें हम उनको देते हैं और उसका पूरा लाभ होता है। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट है कि जिसका हीमोग्लोबिन 7 था 6 था नॉन रिकॉर्डेबल था, ऐसे हीमोग्लोबिन 12 तक गया है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अच्छा, इससे भी और एक बेसिक कार्यक्रम ऐसा है कि 6वीं से आकर 11वीं तक के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बिठा के उनको अपने शरीर को जानो, यानी शरीर ही आपका महत्वपूर्ण है, शरीर ही सभी इसका साधन है, उसको आप अगर कुछ काम करना भी चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या IAS बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, तो पहले आपका शरीर ही अच्छा चाहिए। तो इसलिए आपके शरीर को जानो और उसको स्वस्थ रखो, अपने घर में जो कुपोषण है, रक्ताल्पता है, खून की कमी है, उसको पहचानो, वो कैसे पहचानना आदि बातें हम बताते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर गुटखा गुड़ाखू और ये नशाखोरी भी बहुत है और इसकी लत बच्चों में ना लगे, बच्चे उस वहां से दूर रहे, ये सब समझाने के लिए हम ये कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों में। ये हमारे 3 मुख्य कार्यक्रम अभी चल रहे हैं।
0: जी जी जी जी सुनीता जी, बहुत अच्छे कार्यक्रम है और इनसे ज़रूर वहाँ की आम जनता लाभ ले रही है और आगे भी लाभ लेती रहेगी, और आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक भी हुए हैं और जो अभी प्रयास आप कर रहे हैं आगे भी सार्थक होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज आपने हमें समय दिया और अपनी बातें हमें बताई और आप हमारे साथ कार्यक्रम में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रायपुर आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे विचार हमारे मन की बात बताने के लिए मतलब समय दिया, धन्यवाद।
0: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए, नमस्कार।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सुनीता गोड़बोले से बातचीत, प्रस्तुत किया रमा शंकर ने। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं नवा बिहान। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर नीति आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री के सुब्रमण्यम से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है नेमीचंद साहू।

0: जम्मो श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। पर्यावरण हा बहुत ही विस्तृत और विशाल शब्द आए। पर्यावरण में ही हमर स्वस्थ जीवन के बीज निहित है। वायु, जल और स्थल हा पर्यावरण के घटक आए। पर्यावरण के संबंध में विस्तार ले जानकारी बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन राज्य नीति आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर के सुब्रमण्यम जिला। सर नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है।
1: नमस्कार
0: सर। सरल शब्द में कहन त पर्यावरण का होते और पर्यावरण संरक्षण कानून के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता काबर पड़ी?
1: ये हमारे आसपास जो भी है, यानी चाहे वायु है, जल है, जमीन है, जो भी हमारे और दूसरे जीव जंतु हैं, सभी को मिला के कह सकते हैं समावेशी शब्द है पर्यावरण। और जहां हम रहते हैं उसे हम अपना पर्यावास कहते हैं। जहां हम रहते हैं, जिस जल को हम पीते हैं, जिस वायु को हम लेते हैं और जिस भोजन को हम खाते हैं, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, ये सारी चीज आपस में पर्यावरण का ही अंग बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
0: सर तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता काबर पड़ी?
1: दरअसल में देखिए, किसी चीज को अगर आप लोगों को बताते हैं कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना जरूरी है, तो लोग समझते हैं, जागरूक हैं, शिक्षित हैं, लोग समझते हैं। लेकिन जब तक किसी अधिनियम के दायरे में इसको नहीं लाते हैं, जब तक उसको संहिताबद्ध नहीं करते, कोडिफाई नहीं करते किसी कानून को, तब तक उसकी जो गंभीरता है उससे लोग अवगत नहीं हो। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में आया
0: जी।
1: लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वो हुआ था 1972। उसमें पूरे विश्व समुदाय ने चिंता व्यक्त की थी कि हमारे पृथ्वी में ये जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जिसमें कोयला है, लकड़ी है, क्रूड ऑयल है, ये सब बहुतायत से उपयोग हो रहा है और ये सब जब जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और चूंकि फॉसिल फ्यूल है तो उसमें सल्फर भी है, तो सल्फर के ऑक्साइड्स भी हैं और उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं। ये सारे के सारे जो गैसेस हैं ये हमारे पृथ्वी के ऊपर जाके एक आवरण बना लेते हैं, वायुमंडल में एक आवरण बना लेते हैं। अच्छा, चूंकि धरती गर्म होती है तो वाष्पन, यानी जो हमारे तालाब है, नदी है, इनमें से पानी भी वाष्पित होकर के ऊपर जाता है
0: जी।
1: वैसे हमारे जो खेत होते हैं उसमें लबालब हम खेत में ही धान की फसल लेते हैं, तो खेतों के जमीन से निकलने वाला मीथेन गैस भी जो है ये भी हमारे वायुमंडल में जाके एक परत जमा लेता है। ये जब परत जम जाती है तो जब सूरज की किरणें धरती पे पड़ती हैं और धरती गर्म होती है और शाम के समय जब धरती ठंडी होती है, जब उसकी ऊष्मा वापस वायुमंडल में विकिरित हो जाती है, अब लेकिन वायुमंडल में विकिरित होने की संभावना कम इसलिए हो जाती है क्योंकि उस पर एक आवरण पड़ा हुआ है, वो ग्रीन हाउस गैसेस का, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वाटर वेपर है, यानी भाप है उसमें, तो ये ऊष्मा को विकिरित होने नहीं देती और ऊष्मा वहीं के वहीं फंस के रह जाती है। इसलिए हमारी धरती गर्म होती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही होती है। तो इसलिए कि अगर धरती गर्म होगी तो हमारा पर्यावरण पे इसका विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे हमारे जो हिमनद हैं जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं, वो तेजी से पिघलने लगती हैं और जब ग्लेशियर्स पिघलती हैं तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, और जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, खूब पानी निकलती है, तो हमारे समुद्र का समुद्र तल बढ़ जाएगा।

0: समुद्र तल बढ़ जाएगा तो बहुत सारे हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूबने की कगार में आ जाएंगे। फिर वहां से लोगों को मेनलैंड में आना पड़ेगा, मुख्य भूमि में आना पड़ेगा, तो उसको हम क्लाइमेट रेफ्यूजी बोलेंगे, यानी वो शरणार्थी हो गए, लेकिन वो शरणार्थी किसी विदेशी आक्रमण के कारण नहीं हुए, पर्यावरणीय कारणों से भूमि में आना पड़ा। तो ये बहुत सारे परिणाम निकल के आते हैं यदि आपने पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया और उसको किसी कानून के दायरे में नहीं लाया। तो सबसे पहला कानून जो हमारा बना था वो बना था 1974 में, जिसको हम वाटर एक्ट कहते हैं, जल में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण निवारण का कानून था 1974 में, और उस समय एक संस्था बनाई गई उसकी धारा 4 के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी प्रदूषण निवारण मंडल। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि राज्य में प्रदूषण को के निवारण के वो सारे उपाय करेंगे, और सारे उद्योगों को या सारे ऐसे संक्रियाओं को जिससे प्रदूषण का भार बढ़ता है उसको एक नियमों के दायरे में लाके रखें, यानी उसकी एक लिमिट फिक्स कर देंगे कि इससे ज्यादा आपका प्रदूषण का भार नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रक्रिया होगी, यदि कोयला जलेगा तो उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं लेकिन साथ में धुआं भी निकलता है, तो धुएं की मात्रा कितनी निकलनी चाहिए, वो धुएं को रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, ये तमाम बातों के लिए एक संस्था हमने बनाई, तो उसको हम कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन 1981 में कहा गया कि जल में अकेला प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं है, वायुमंडल में भी प्रदूषण होता है, तो वायु के लिए कानून बनाया गया, वो भी वायु के प्रदूषण निवारण के लिए कानून था, वो 1981 में आया, जिसमें कहा गया कि उद्योगों से जो धुआं निकल रहा है वो धुएं में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, यानी जो महीन कण निकलते हैं धूल धुएं के साथ
1: जी,
0: ये इतने बारीक होते हैं कि कई बार वो हमारे, आप देखिए दिसंबर जनवरी के समय में ठंड के दिनों में अगर हम अपने घरों में चलते हैं और टेबल कुर्सी पे हाथ लगाते हैं तो उसमें कालिख हमारे उंगली पे आ जाती है, वो बेसिकली हमारे इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुओं के कारण, या हमारे व्हीकुलर पॉल्यूशन के कारण, जो हम वाहन चलाते हैं उसमें जो हम पेट्रोल या डीजल का उपयोग कर रहे हैं उसके एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है, वो धुएं में भी छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स हैं, एक महीन कार्बन के कण हैं, और ये कण जो है इसकी नापा भी क्या है कि 10 माइक्रोन का है कि 2.5 माइक्रोन का है। 10 माइक्रोन का तो आपने सांस लिया तो फेफड़े में रुक जाएगा, लेकिन जो 2.5 माइक्रोन का है वो फेफड़े के आगे निकल के हमारी रक्तवाहिनियों में आ जाएगा, और वो कहीं जाके शरीर में जम जाता है, आपके लिवर में जम जाएगा, आपके किडनी में जम जाएगा, सब जगह जम जाएगा। तो मानव स्वास्थ्य के लिए, और न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो इसलिए एक कानून लाया गया जिसको हमने वायु प्रदूषण को रोकने का कानून बोला, वो 1981 में आया। इसके बाद 1986 में उन्होंने कहा कि केवल जल और वायु इन्हीं का प्रदूषण नहीं, हर किस्म का जो प्रदूषण है उसे रोका जाना जरूरी, ध्वनि प्रदूषण है तो उसे भी रोका जाना जरूरी है, बहुत सारे बैटरी का हम उपयोग करते हैं, प्लास्टिक्स का हम उपयोग करते हैं, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। तो इन सारी जो प्रदूषणकारी चीजें हैं उस पे नियंत्रण के लिए कानून लाया गया, जिसको हम पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम 1986। तो आपके पास तीन कानून हो गए, 1974 का जल का कानून, 1981 का वायु का कानून, और इन सभी को समाहित करता हुआ एक तीसरा कानून जिसको हमने पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम बोला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोला, वो 1986 का कानून, और जिससे आज हम कम से कम इस हालत में हैं कि हम जान पाते हैं कि कौन सा उद्योग प्रदूषणकारी उद्योग है, कौन से उद्योग कम प्रदूषणकारी उद्योग है, और कौन से ऐसे उद्योग है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन उद्योगों को हम बढ़ावा दें जो कम से कम प्रदूषण करने वाली उद्योग, क्योंकि विकास के लिए उद्योगों का होना भी जरूरी है।
1: अभी सर जो आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बताए हो, ये में व्यापक प्रावधान के रगे हो ही सबो प्रदूषण ला रोके के सर, वो कर संबंध में बताओ।
0: जी हाँ जी हाँ, देखिए प्रदूषण को केवल नियंत्रित किया जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी गतिविधि अगर आप करते हैं तो उसमें सह उत्पाद के रूप में प्रदूषण निकलता ही निकलता है, लेकिन वो प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए कितनी मात्रा में निकले उसे नियंत्रित करने की बात करते हैं। जैसे उद्योगों में चिमनी से धुआं निकल रहा है, हमने कहा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ईएसपी करके एक मशीन लगा दी जाए जो कि उस धूल को आकर्षित कर लेगा और स्वच्छ जो धुआं है उसको निकलने देगा। वैसे बैक फिल्टर लगा दीजिए तो उसमें बहुत सारा धूल उसी में रुक जाएगा। तो ये सारी कोशिशें हो सकती है। जैसे पानी है, उद्योगों से निकलने वाला जो पानी है, निस्तारण का पानी, उसे उपचारित करके फिर जल स्रोतों पे छोड़ा जाए। अभी क्या होता है, ज्यादातर उद्योगों से जो पानी निकल रहा है वो सीधे नदी नालों में जा रहा है और नदियों को प्रदूषित कर रहा है। नदियों को प्रदूषित कर रहा है तो उसमें जो जल जीव है वो नुकसान हो रहा है, और हमारे लिए भी पीने के पानी का स्रोत वही है, वहीं से हम पंप करके लाते हैं, फिर उसका हम जल उपचारण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हमारे घरों में नलों में आता है। लेकिन ये जो उद्योगों से निकल वाला पानी है उसमें बहुत सारे प्रदूषणकारी तत्व होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, भारी तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद निकलते नहीं है, वो वहीं जुड़ते जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्यों

0: रिलेटिव टॉक्सिसिटी यानी उनका जहर जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो कई किस्म की बीमारियां जो है वो उससे आती हैं। जैसे जल में हम कहते हैं तीन किस्म की अशुद्धियां होती हैं, एक कहलाता है फिजिकल इम्प्यूरिटी, मटमैलापन और धूल उल रहती है वो फिजिकल, उसको तो आप छन्नी से साफ कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल इम्प्यूरिटी, इसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी उसके फिल्टर लगा के आप साफ कर सकते हैं। तीसरा सबसे खतरनाक होता है माइक्रोबियल यानी जीवाणु से संबंधित, जीवाणु भी है, विषाणु भी है, कवक भी है, फंगस भी है, प्रोटोजोअन भी है, कई किस्म के, क्योंकि सीवेज का पानी भी नदियों में जा रहा है, ये जो हमारे शहरों से जो गंदा पानी आ रहा है वो भी जल स्रोतों में जा रहा है, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां, जल जनित रोग बहुत सारे होने की संभावना रहती है। तो इन सबको समाहित करते हुए ये जो कानून बना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे बैटरी है, बैटरी का उपयोग के बाद आप बहुत सारे हानिकारक तत्व हैं तो उसको वापस रिसाइकिल करना कैसे है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर चला जाए जमीनों में तो जमीन के नीचे वो अपघटित नहीं होता, उसके ऊपर बैक्टीरिया भी काम नहीं करता और वो बारिश के पानी को नीचे जाने से रोकता भी है, तो ये सी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसान। आजकल माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करते हैं लोग कि हमारे जलों में माइक्रोप्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक धीरे धीरे धीरे धीरे घुलता रहता है और बहुत महीन प्लास्टिक के कण आ जाते हैं, वो अगर हमारे पानी में आ गया तो हमारे शरीर में रुक जाएगा वो, तो माइक्रोप्लास्टिक भी आजकल आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए, सबके ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए, विनियमन करने के लिए ये कानून लाया गया जिसको हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं।
1: सर ये 1986 के जो कानून है सर उसमें कुछ ऐसा तंत्र घलो बनाए के प्रावधान है का जो ये सब चीज ला देखे कि प्रदूषण ला नियंत्रण।
0: बहुत सही सवाल आपने किया। इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि वाटर एक्ट जो जल का कानून था 1974 का, उसमें उन्होंने प्रदूषण निवारण मंडल की बात की, यही प्रदूषण निवारण मंडल 1981 के कानून में भी वही काम करेगा और ये जो 1986 का कानून है इसके लिए भी वही प्रदूषण निवारण मंडल जिम्मेदार है। तो हर स्टेट में उन्होंने एक राज्य प्रदूषण निवारण मंडल, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया और भारत सरकार के लेवल पे एक सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल बनाया। तो ये जो संस्थाएं हैं रेगुलेटरी बॉडी है यानी विनियामक संस्थाएं हैं, जिनका काम है उद्योगों पर नजर रखना, जिनका काम है जल स्रोतों पर नजर रखना, जिनका काम है जमीन मिट्टी इसके ऊपर निगरानी रखना, और यदि कोई इससे उल्लंघन करता है इस कानून का तो उसके खिलाफ दांडिक कार्यवाही प्रस्तावित करना।
1: सर अभी आप बताते रहे हो कि प्लास्टिक के जो प्रदूषण है वो बहुत हानिकारक है जल स्रोत पर, भूमि पर, ऐसे करके तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम घलो बने हैं सर, उसके संबंध में बताओ।
0: प्लास्टिक को अपघटित करना मुश्किल है, जो भी चीज हमारी ऑर्गेनिक होती है, जो भी कार्बनिक होती है, वो बैक्टीरिया उसको अपघटित करके उसके अवयव में तोड़ देता है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, लेकिन प्लास्टिक ऐसा है जो अपघटित नहीं होता। अब जब प्लास्टिक अपघटित नहीं होता तो उसके लिए एक ही तरीका है कि वो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, उसका पुनर्चक्रण हो, लेकिन पुनर्चक्रण में भी दिक्कत है। यदि बहुत महीन प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक की थैलियां अगर वो 50 माइक्रोन से छोटी हैं यानी बहुत महीन है, तो उसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि 200 माइक्रोन इसके ऊपर के माइक्रोन के प्लास्टिक का ही उपयोग करें, ताकि वो प्लास्टिक का उपयोग होने के बाद उसको वापस अगर आपने कूड़ेदान में डाला तो उसको फिर से निकाला जाए और उसको फिर से प्लास्टिक बनाया जाए, यानी उसका पुनर्चक्रण हो, रिसाइकिलिंग हो। तो इसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए कई रिसाइकलर्स को भी सरकार इंसेंटिव देती है, कई लाभ देती है कि आप इस काम को कीजिए, जैसे पुरानी जिससे आपकी बाल्टी है, पुरानी टूटी हुई चीजें हैं, ये सब रिसाइकल हो सकती हैं, इन सबको फिर से प्लास्टिक में तब्दील किया जा सकता है, और रीयूज करने के लिए रिसाइकल करना जरूरी है, पुनर्चक्रण जरूरी है, उस आधार पर संभव।
1: सर बड़ सुघर जानकारी देवत हो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप मन और हमर श्रोता मल्ला सर, ये कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप का संदेश देना चाहू?
0: देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे और अपने आसपास अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो प्रदूषणकारी है उसका उपयोग कम से कम करेंगे तो ये संभव है। और जैसे हम कहते हैं कि साहब कचरा है तो कचरे को हम सूखा कचरा, गीला कचरा, इसको अलग अलग करके रखें, घरों से शुरू करें, बच्चों को ये शिक्षा दें, बच्चों को स्कूल में भी उनके पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को शामिल किया गया है, ताकि बच्चे जो कल के नागरिक हैं यदि वो अभी से समझ जाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता भी ज्यादा रहेगी और उससे प्रदूषण को रोकने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो सभी नागरिकों से यही अपेक्षा और अपील करता हूं कि वो पर्यावरण के प्रति ज्यादा सचेत रहें, क्योंकि अगर स्वस्थ पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे।
1: डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, आप मन्हा हमर श्रोता मल्ला बड़ सुघर जानकारी देहाओ हम।

नवा बिहान। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर नीति आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री के सुब्रमण्यम से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे नेमी चंद साहू। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

एक बार फिर इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह ने, शब्द रचना विनोद पांडे की थी और धुन बनाई थी रघुनाथ सेठ ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये था आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म छैला बाबू के लिए स्वर दिया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए सुनिए एक सूचना। आज शुक्रवार 5 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482-400-3482-400-3483-400-3484-400-3484-400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 07710771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज शुक्रवार 5 जून 2026 को सुबह 11:30 से 12 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज शाम 7:30 किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। ये सूचना समाप्त हुई।

आइए अब सुनते हैं एस जानकी और बप्पी लाहिरी को फिल्म साहेब में, बोल अनजान के संगीत बप्पी लाहिरी का।

0: एस जानकी और बप्पी लाहिरी को अभी आपने सुना फिल्म साहिब में। शब्दरचना अनजान की थी और धुन बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आइए अब सुनते हैं शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को, बोल SH बिहारी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है प्यार किया है प्यार करेंगे।

प्यार किया है प्यार करेंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने, शब्द रचना SH बिहारी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं शुभदा गिजरे। पहले सुनते हैं संत मीराबाई का ये भक्ति पद।

0: शुभदा गिजरे की आवाज में ये था संत मीराबाई का भक्ति पद। सुगम संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज की कलाकार हैं शुभदा गिजरे।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शुभदा गिजरे को। आइए अब सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे शुभदा गिजरे को। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ

0: मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आज सांकरा पाटन में एक दिवसीय खेत बचाओ अभियान कार्यशाला और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्यानिकी मंत्री रामविचार नेताम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत किसानों को मृदा संरक्षण, प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक आधुनिक कृषि तकनीकों तथा फसलों में कीट और रोग प्रबंधन के उपायों से भी किसानों को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में कृषि उपयोगी सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर प्रदेश की 3 शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642,27,77,950 रूपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रैप

पूर्व केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव। विलंबित और द्रुत दोनों ही गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। संगतकार हैं तबले पर कन्हैया लाल भट्ट।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव। संगतकार थे तबले पर कन्हैयालाल भट्ट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए बाबुल बोस के संगीत निर्देशन में रविंद्र रावल का लिखा गीत, आवाजें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में।

0: जीना तेरी गली में। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने, शब्द रचना रविंद्र रावल की थी और धुन बनाई थी बाबुल बोस ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। कल भी।

एक घोड़ा सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: शब्बीर कुमार, अमिताभ बच्चन, एस जानकी, केतन देसाई को अभी आपने सुना फिल्म मर्द में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू को। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

0: आओ प्यार करें, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था कुमार सानू ने, संगीत आदेश श्रीवास्तव का था। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए प्यार का तो फरमाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादें यादें यादें।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है,
8: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
9: सुनिए।

0: अलीशा चिनाय और जुबिन गर्ग को अभी आपने सुना फिल्म क्रिश 3 में। शब्द रचना समीर अंजान की थी और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
3: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र

0: बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अनुराग धारा प्रादेशिक संगीत के इस कार्यक्रम में आज सुनिए गुजराती गीत। कलाकार हैं परेश भट्ट। पहले सुनते हैं राजेंद्र शुक्ला की ये रचना।

अनुराग धारा प्रादेशिक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गुजराती गीत। कलाकार हैं परेश भट्ट और साथी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: अनुराग धारा प्रादेशिक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गुजराती गीत। कलाकार हैं परेश भट्ट और साथी। आइए अब सुनते हैं बेनी भाई पुरोहित की ये रचना।

अनुराग धारा। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गुजराती गीत। कलाकार हैं परेश भट्ट और साथी। आइए अब सुनते हैं जगदीश जोशी की ये रचना।

अनुराग धारा। प्रादेशिक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गुजराती गीत। कलाकार हैं परेश भट्ट और साथी। आइए अब सुनते हैं सेगदाम आबूवाला का ये कलाम।

अनुराग धारा, प्रादेशिक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गुजराती गीत। कलाकार थे परेश भट्ट और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमें।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को, बोल इंदिवर के, संगीत बप्पी लाहिरी का और फिल्म का नाम है गिरफ्तार।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले को भी आपने सुना फिल्म गिरफ्तार में। शब्द रचना इंदिवर की थी और धुन बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
3: यूं ही तुम मुझसे

सच्चा झूठा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना इंदिवर की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

आप आए बाहर आई, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मनहर कंचन और आनंद को भी आपने सुना फिल्म कुर्बानी में। शब्द रचना इंदिवर की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रकृति सबसे बड़ी सहयोगी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक वृक्ष, पुनर्स्थापित किया गया इकोसिस्टम और सतत निर्णय राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाता है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वच्छ और अधिक लचीला भारत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश डेका आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 8 जून को ही DELED के साथ ही CGPSC की मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।

0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा आज सुबह 11 बजे से बैरन बाजार स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय

0: पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती

0: इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
1: सेवा में सदैव तत्पर
5: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।

0: बारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
1: जी महाराज, अब बहुत धन्यवाद।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
4: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
4: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
4: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
4: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
6: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
7: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
6: यार, क्या सबको नकली मिला?
7: अब
6: तुम भी नकली, तुम
7: कैसे
6: हो
7: सकता है? नकली हीरा तो सकता है,
6: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
8: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें। महाराज
8: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
5: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
8: क्या? और कोई शंका?
5: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
8: ठहरिए, मैं समझाता हूं। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
9: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
4: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार

ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मेहदी हसन और तरन्नुम नाज। पहले सुनिए मेहदी हसन की आवाज में मिर्जा गालिब का कलाम।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मेहदी हसन और तरन्नुम नाज़।

तरन्नुम नाज की आवाज़ में अभी आपने सुना मिर्ज़ा गालिब का कलाम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज़ में ये गज़ल।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे मेहदी हसन और तरन्नुम नाज। इनकी आवाज़ में आप सुन रहे थे मिर्ज़ा गालिब की गज़लें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन का 1 बजने को है हिंदी में समाचार। अब

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर

0: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म

0: आकाशवाणी एट 90।
1: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में अभिलाषा फिल्म का गीत। रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत है राहुल।

झील के उस पार। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल थे, आरडी बर्मन का संगीत था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आज और कल। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने और धुन बनाई है

मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ

श्रोताओ, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 9:25 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बसंत राव देशपांडे का गाया राग मधुकौंस में ख्याल सुनिएगा रात 10:00। अभी 1:30 पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया राग। इसे फिर से सुन लीजिए। अभी 1:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया ताल तीन ताल। शाम 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनिएगा शाम 6:30 पर।

युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। सुनिएगा क्रम मार्गदर्शन में 12वीं के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में संभावनाएं। इसी विषय पर डॉक्टर सुमिता दवे से दीपक हटवार की बातचीत और होगा कार्यक्रम अपनी पसंद। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा खेती में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के उपयोग और महत्व। क्रम हेलो चौपाल में सुनिएगा स्वच्छ दूध उत्पादन और उसका परिवहन। इस विषय पर जानकारी विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर, संचालन चंपेश्वर गोस्वामी का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडेय।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी शुभदा गिजरे। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर और चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 9:25 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बसंतराव देशपांडे का गाया राग मधुकोंस में ख्याल सुनिएगा रात 10:00। इसी कार्यक्रम में अभी 1:30 पर आप सुनेंगे सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया ताल तीन ताल। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। सुनिएगा क्रम मार्गदर्शन में 12वीं के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में संभावनाएं, इस विषय पर डॉक्टर सुमिता दवे से दीपक अटवार की भेंटवार्ता और होगा कार्यक्रम अपनी पसंद। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा खेती में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के उपयोग और महत्व। क्रम हेलो चौपाल में सुनिएगा स्वच्छ दूध उत्पादन और उसका परिवहन, इस विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर, संचालन चंपेश्वर गोस्वामी का और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडेय।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए तबला वादन। कलाकार हैं सत्यरंजन गंगेले। इनसे सुनिए ताल तीन ताल में पेशकार कायदा रेला परन और टुकड़े। हारमोनियम पर आपके साथ संगतकार हैं विजय कुमार कूर्म।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया ताल तीन ताल सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगतकार थे विजय कुमार कूर्म। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी की रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बॉम्बे जयश्री की आवाज में। प्रसून जोशी की रचना है, संगीत शंकर एहसान लॉय का है और फिल्म का नाम है फिर मिलेंगे।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दिल चाहता है, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत श्रीनिवास की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम चेन्नई एक्सप्रेस। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत चिन्मय श्रीप्रदा और गोपी सुंदर की आवाज।

0: फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप

0: के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: A detailed assessment.
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों

0: के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है।

0: अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। प्रेम धवन का लिखा यह गीत है, संगीत रवि का, और फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए प्यारे का तो फराए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

मुगले आजम। आइए सुनते हैं इस फिल्म की कव्वाली लता मंगेशकर और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीत नौशाद का है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम दिल ही तो है। आइए सुनते हैं इस फिल्म की कव्वाली आशा भोसले और साथियों के स्वर में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, संगीत रोशन का है।

बरसात की रात इस फिल्म की कव्वाली अभी आप सुन रहे थे, बलवीर, आशा भोसले, बंदे हसन, सुधा मल्होत्रा और साथियों के स्वर में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, संगीत रोशन का था। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अंत में आपको सुनवा रहे हैं इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों की आवाज में शिवान रिजवी की लिखी कव्वाली। संगीत बुलोसी रवि का है और फिल्म का नाम है अल हिलाल।

अल हिलाल फिल्म की इसी कव्वाली के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम 5 बजे सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज

0: केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BAS को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति

0: अपना अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BAS को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is visiting Surat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees, spanning the road, power and industrial sectors. The Prime Minister will first visit Hajira and will review ongoing industrial and infrastructure operations before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees, including major healthcare and aviation infrastructure to the nation, besides laying foundation stones for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. The Minister

नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राम राम, हेलो, हाय, आय हाय। मन भावन आ गया आपके पसंद का कार्यक्रम, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और आज वो दिन है जो बहुत खास है। जी हाँ, आम दिन थोड़ी ना है। हालांकि गर्मियों में तो आम की बातें होती ही रहती, पर ये खास दिन है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और मित्रों, भारतीय वांग्मय में हमेशा से पर्यावरण को, नेचर को, मौसम को, धरती को बहुत महत्व दिया गया है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
6: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माय यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

कार्यक्रम ढेर सारे संदेश। अब मेरे कार्यक्रम में रूमी मलिक के कार्यक्रम में अटेंडेंस लगती है, लगानी तो पड़ेगी। वादा किया है, नहीं क्या बोलते थे, मैंने प्यार किया में दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, खैर मकदम है आपका, स्वागत है बहुत बहुत। हमारे बहुत पुराने हर दिल अजीज लिसनर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही शाइस्ता। सीताराम कागरा जी हमारे साथ हैं, सुरेश नारंग जी, सुनील गायकवाड़ जी, जय हरजिंदर सिंह भाटिया, मास्टर अशोक कुमार, शंकरलाल जायसवाल, भूषण खेरा, मोहम्मद यूनुस खत्री, तुलसी मस्कीन जी। आगे बढ़ते हैं, शंकरलाल जायसवाल जी का नाम ले लिया ना, हाँ अब अगला पेज करो जी। आओ सकीरी, बोधराज खोरवाल जी हमारे साथ हैं, अनिल मोहन जी हैं, इतने रिपीट मिल जाते हैं ना, तो बार बार नाम नहीं रिपीट करना चाहते, आप खुद ही बोर हो जाओगे। नहीं, नारायण हेगे बोल रहे होंगे, नहीं हमारा नाम तो आता रहे। विजय सुरलकर, कुमकुम जी, आफ्ताब अंसारी, एच आर पांड्या जी, पुंजा जी नभंकर। आगे चलते हैं, देखते हैं, और द नेक्स्ट पेज, भारत भूषण जी हमारे साथ में हैं, और धर्मेंद्र छीपा जी भी हमारे साथ हैं, यूनुस खत्री जी तो हैं ही, ताज मोहम्मद, और कोई रह गया, रह तो नहीं गया, नाम सारे ले लेते हैं ना, क्योंकि आकाशवाणी एट 90, जी हाँ 90 वर्ष की हो गई आकाशवाणी, तो हम 3:30 बजे आपको सुनाएंगे बहुत कमाल का एक और इंटरव्यू। फनेश चंदन जी हमारे साथ हैं, बबलेश पवार हैं हमारे साथ में, सतीश अनेजा जी, आई फाइनली फाउंड योर नंबर, द मैसेज, योर ऑफरिंग्स आर सो वंडरफुल दैट दे ब्रिंग अ स्माइल टू आवर फेसेस, कंग्रेचुलेशंस, शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं राधे श्याम देवांगन और चंपा देवांगन, ये इंदिरा नगर भवरपुर से लिखते हैं कि हमें वो गीत सुना दीजिए, कौन सा वाला, डफली वाले, सुने गीत, आओ जी आओ।

फरमाइश पूरी करने वाली आरजे गाना बजा। प्यारी प्यारी रूमी मलिक बुआ जी को हम बच्चों का आदाब। आहा तस्लीम अल्तमर समीना मुदस्सिर फिरदौस जुम्मा नगर खंडवा से लिखते हैं, नमस्ते दिग्दर्शन कौर जी, आपका मैसेज आया था, कहीं पे खो गया पर मुझे याद है आपने लिखा था, कर लो अधिक मास है पुरुषोत्तम, सिर्फ 15 जून तक और है, 10 दिन रह गए, चाह लो पढ़ लो पाठ कर लो, जो दान पुण्य करना है अच्छे बन जाओ भाई, भगवान को बोलो। मैं तो भगवान को ये कहती हूँ, भगवान मुझे ना मेरा बेटर वर्जन बना दे, है ना, मैं सब कुछ सह पाऊँ कुछ ना कह पाऊँ। नहीं नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे आपके संदेश आए हैं और अभी बस कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जो के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। श्रीमती उषा भसीन हमारे साथ हैं जो पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन रह चुकी हैं, है ना। तो इसके साथ साथ और भी अगर कोई संदेश आए, अल्तमश खत्री जी का तो हमने संदेश पढ़ दिया आपको, ठीक है, और बाकी सब लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। कुमकुम जी बहुत अच्छे आप मेल भेजती हैं और हर बार आप एक नई फरमाइश करती हैं, एक ही कार्यक्रम में 5-6 बार, है ना, 5-6 अलग अलग गाने। तो बस आपसे यही कह रहा था कि खुश रहिए।

नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम आप तक लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम जिसमें अनमोल आवाजें आप सुन रहे हैं। ऐसी आवाजें जो खुद एक याद का हिस्सा है, लेकिन जब बात होती है उन हस्तियों से जिनकी ये आवाज है, तब उनकी यादों का पिटारा खुलता है और उसमें से

0: भी अनमोल रत्न हमें मिलते हैं। आज एक ऐसी ही हस्ती हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं स्वागत कर रही हूँ स्टूडियो में उषा भसीन जी का। आप अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन साथ ही आपने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर उच्चाधिकारी के रूप में कार्य किया है और एक व्यापक अनुभव आपका है प्रसारण से जुड़ा हुआ। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी इस विशेष हस्ती का कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग में। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ आज आकाशवाणी आकर और ये माइक देखकर, इसके आगे बैठकर, जिसके साथ मेरा तन मन सब रोमांचित हो जाता है।
0: जी, और आपकी खुशी जो है वो आपके चेहरे से दिख रही है और हमें ये खुशी एक आशीर्वाद की तरह प्रतीत हो रही है कि हमने इस तरह के उच्चाधिकारियों की एक लेगेसी है जिसे और आगे लेकर जाना है और जिसे संभाल कर रखा हुआ है। आज जब आपसे बातचीत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उषा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी में जब आप कार्यरत थी, उससे भी पहले जो सबसे पहली याद रेडियो से जुड़ी हुई है वो कौन सी है आपकी?
1: जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं कोई बहुत स्टूडियस नहीं थी
0: जी,
1: और साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैं चोरी चोरी अपने किताब या बड़ा सा रजिस्टर लेके उसके पीछे रेडियो रख के, ट्रांजिस्टर, और उस पे तब क्रिकेट भी सुनती थी
0: जी।
1: पर एक कार्यक्रम में सुनती थी तामीले इरशाद, अंजार अहमद थे जो उसको प्रस्तुत करते थे
0: जी।
1: उर्दू भाषा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और मेरे नाना, जिनके यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, वो हिंदी नहीं जानते थे, स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उनको सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू आता था और वहाँ उर्दू का काफी चलन है
0: जी।
1: और उसके बाद ये हुआ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में शिमला में पढ़ रही थी MSc में, तो सर्दियों में ये ह्यूमन राइट्स डे की बात है, 10 दिसंबर को वो मनाना चाहते थे
0: जी।
1: पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जा चुके थे, हमारा जो बायोसाइंसेस डिपार्टमेंट था उसके लोग थे शायद कुछ, पर जब हम गए थे तो लोगों ने कहा कोई आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, डिबेट्स कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं करते थे। तो अचानक मेरे हॉस्टल में आया कि आपकी वार्डन ने आपका नाम सजेस्ट किया है, जो हमारी प्रोफेसर भी थी बॉटनी की
0: जी,
1: तो कि आप वहाँ बोलें उस कार्यक्रम में। तो साथ में ही था यूनिवर्सिटी कैंपस, तो मैं चली गई और बोला, और मुझे नहीं पता था कि एक दो दिन के बाद ट्रिब्यून में काफी उस पर चर्चा वगैरह हुई और वो मेन अखबार था, उसके साथ हम पले पढ़े, यानी मैं बात खत्म हो गई। जब दोबारा यूनिवर्सिटी खुली तो एक दिन अचानक कोई आया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पर मैं छोटा करूंगी, तो वो मिलने आया कि आकाशवाणी से, तो मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं जानती। जब मिले तो उन्होंने कहा कि आप हमारे उधर आए आकाशवाणी स्टूडियो और एक परिचर्चा होनी है, हमें राम चाहिए या रावण, तो उसमें आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आप उसमें भाग लें। और वहाँ बहुत अच्छा लगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे बाद में मेरे सीनियर कलीग हुए, तो बात खत्म हो गई। और फिर थोड़े दिनों बाद बहुत ज्यादा कोई वहाँ कंट्रोवर्सी हो गई, तो वाइस चांसलर को इंटरव्यू करना है तो कोई मान नहीं रहा है, तो आप करेंगी? मैंने कहा मैं कर दूंगी, तो मैंने वो इंटरव्यू कर दिया। तो इस तरह से मेरी आकाशवाणी से यात्रा शुरू हो गई। और फिर थोड़े दिनों बाद किसी ने कहा कि आपकी आवाज ऐसी है कि आप ना नाटक की परीक्षा, जो ऑडिशन है, तो मैंने दे दी, तो मेरे पास हो गई। तो पहला नाटक जो मुझे करने को मिला, बूढ़े की मौत, एक कर्नल विष्णु शर्मा थे, उन्होंने लिखा था। और स्टूडियो में आज भी मेरी आंखों में वो विजन है कि स्टूडियो के दो एंड में हम लोग दो लीड थे हम, और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि दूसरी लीड क्या थी, अनुपम खेर। वो तब नए नए NSD से आए थे और शिमला के निवासी थे, तो उसके बाद बहुत सालों बाद वो मुझे दूरदर्शन मिले तो बड़े हैरान हो गए
0: जी।
1: तो ये तो उसका मुझे 15 रुपया मिला था। उसके बाद पढ़ाई खत्म हो गई, मुझे टीचिंग नहीं करनी थी, तो मुझे कुल्लू मनाली वापस भी नहीं जाना था, मुझे शिमला बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कैसे रहूं। तो इस तरह से मैं आकाशवाणी से जुड़ गई और बाद में उनकी पोस्टिंग निकली तो मैंने अप्लाई कर दिया और मैं आकाशवाणी में आ गई
0: जी। बहुत ही रोचक बातचीत हमारी चल रही है और बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मोड़ पर ये बताए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवा रही है?
1: गाइड फिल्म का गाना है ना
0: जी,
1: आज फिर जीने की तमन्ना है
0: जी। बहुत ही अच्छा सा गाना है और हमेशा ही एनर्जी से भर देता है
1: जी।
0: तो लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: जब आप आकाशवाणी आई तब क्रिएटिविटी से जुड़ना मुश्किल रहा या इट वॉज इन योर वेन्स ऑलरेडी, वो आपके लिए बहुत सहज था?
1: देखिए, ईश्वर की कृपा और मेरा लालन पालन ऐसा हुआ है कि मुझे कभी भी सच पूछे कोई मुश्किल कुछ नहीं लगा
0: जी,
1: क्योंकि बचपन से एक ऐसा आत्मविश्वास दिया गया था। मैं छोटे से गांव की सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ जहाँ छठी जमात में ABC पढ़ाई जाती है, पर somehow एक कूट कूट कर भरा गया था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा परिचय बचपन का, और बाकी तो फिर ये है कि छोटी जगह में ना आप सब कुछ ही कर लेते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो एक आत्मविश्वास बचपन में मिला वो आगे बढ़ने में वो ही एक बड़ा हथियार रहा
0: जी।
1: और आकाशवाणी का आप पूछ रही हैं तो यहाँ तो भाषा का ही बात है सारी, उन कलाओं से वो सब, मैं अनभिज्ञ थी, साइंस स्टूडेंट थी तो भाषा की कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी। इट वॉज ऑल लर्निंग, कैसे बोलना है, कैसे कुछ रहा होगा बीच में पर उसको कैसे मांझना है। हम लोग ना छोटे स्टेशनों पे लोग बड़े अनुशासित होते हैं
0: जी,
1: तो बिना ऑडिशन के कोई एयर पे नहीं जाता। तो ड्रामा में तो ऑडिशन मैंने कर लिया था, बाद में वहाँ अंग्रेजी का भी हुआ तो मैंने वो भी किया, तो काफी मेहनत हुई है ना। आकाशवाणी शिमला ने मुझे इतने मौके दिए, मैं आपको बताऊं, सीमांत बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ जो ट्राइबल एरियाज है वहां से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तक
0: जी,
1: और प्रधानमंत्री के साथ सैनिक चौकियों पे खड़े होने से लेकर भारत उत्सव विदेशों में, ये सारे मौके मुझे आकाशवाणी ने दिए
0: जी।
1: तो आकाशवाणी ने मुझे एक नई दुनिया दी, जैसे कि पूरा आकाश मेरे सामने। और हाँ, ये भी हुआ कि जो चुनौतियों के साथ अवसर आए मैंने उनको छोड़ा नहीं।
0: बहुत विस्तृत अनुभव है उषा जी आपका। मैं इस बीच ये जरूर जानना चाहूंगी कि सिलेक्शन लेटर जब हाथ में आया आकाशवाणी का, तो वो अनुभव मैं चाहूंगी कि आप साझा करें और परिवार में क्या प्रतिक्रिया।
1: आप सिलेक्शन लेटर की बात कर रही हैं, मैं तो ये कहूंगी कि जब मैंने अप्लाई किया
0: जी
1: और वो जो एक्नॉलेजमेंट आया UPSC का
0: जी,
1: तो ऐसा लगता था उसको मढ़वा के रख लें
0: जी।
1: हाँ, तो मैं एक ही पंक्ति बोलूंगी और बाद में आप सोचें मैं उस UPSC के सामने रहने लगी, मुझे वहां घर मिला।

0: जी,
1: तो प्रकृति एक बहुत बड़ी चीज है, अगर हम उस पर विश्वास करें
0: जी,
1: उस पर छोड़ दें और फ्लो में रहें, तो जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं आई, हर तरह की चुनौतियां आई।
0: मैं चाहूंगी कि कुछ विशेष कार्यक्रम आप हमारे साथ जरूर इस वक्त उनके नाम साझा करें, उनके बनने की जो कहानी है और कैसे उस वक्त वो मुश्किल दौर रहा होगा, वो सब जरूर आप साझा करें।
1: जैसे वहां पर मुख्यमंत्री जो थे वो चाहते थे कि हम रिपब्लिक डे परेड जो है हिमाचल के शिमला की, उसको लाइव करें जैसे दिल्ली से होती थी। तो हमने उनको बता दिया, काफी बात हुई, पर वो माने नहीं, हम भी नहीं माने कि हमारा राष्ट्रीय प्रसारण है, हम इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो वो इतने अडिक्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना जो फंक्शन है रिपब्लिक डे परेड का वो तब शुरू करूंगा जब आपका दिल्ली का प्रसारण समाप्त हो जाएगा।
0: जी,
1: तो उन्होंने वो आगे कर दिया। जो हुआ जी, रिज मैदान में बर्फ पड़ रही थी, कोई बूथ नहीं था, कुछ नहीं था, और एक हाथ में माइक लेकर बर्फ पड़ रही है और कमेंटेटर कोई नहीं था, तो हमारे डायरेक्टर ने माइक पकड़ा। बाद में जब मेरे हाथ ठंड से कांपने लगे और आंखों से नाक से पानी आ रहा था और वो आंखों देखा, हाल प्रसारित हो रहा था, वो तो एक बात। अब कोई सैटेलाइट नहीं था
0: जी,
1: कोई और लिंक नहीं था कि आप रिज मैदान शिमला से, जिन्होंने देखा होगा उनको पता है, वहां से आप चौड़ा मैदान जहां आकाशवाणी के स्टूडियो है वहां तक कैसे उनको करेंगे। तो हमने ये किया कि वो टेप्स पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और वहां तक गाड़ी भी नहीं आती थी आकाशवाणी की
0: जी।
1: तो प्रोडक्शन असिस्टेंट जब 20-25 मिनट हो जाते थे, टेप तोड़ा जाता था और निकाल के वो प्रोडक्शन असिस्टेंट के हाथ में, और वहां मॉल के एंड में घड़ी है, वहां पे हमारी जीप होती थी, तो वो उसमें बैठेगा और दौड़ा कर आकाशवाणी स्टूडियो जाएगा। अब चुनौती ये कि इससे पहले कि वो लाइव चल रहा है
0: जी,
1: वो खत्म हो जाए टेप, दूसरा टेप वहां पहुंचना चाहिए। तो वो सब हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। और जब हम स्टूडियो पहुंचे और हमने 2-3 बजे जितने भी दोपहर में पहला कप चाय का पिया, तो क्या मतलब अनवरत टेलीफोन कॉल्स डायरेक्टर के कमरे में आने लगे। अब फिर उनको आदत पड़ गई, अगले साल फिर उन्होंने किया, तब थोड़ा एक स्टेज बना दिया, पर कोई ऐसा कोई साउंड प्रूफिंग कुछ नहीं था। तो वो तो मैं एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी थी और मैं कमेंटेटर भी थी, बाकायदा सिलेक्ट हुई थी, जसदेव सिंह जी ने सिलेक्ट किया था नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए, तो वो किया। पर देखिए ये क्या था, वो टीम की प्रतिबद्धता, जो हमारी टीम थी, हर इंसान चाहता था कि वो कार्यक्रम सफल हो।
0: सही बात है। और मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि जिस टेप का बार बार जिक्र हो रहा है आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग्स स्पूल पर होती थी और पूरी टीम, चाहे वो 50 लोगों की है, 30 लोगों की है, उन सबके मेहनत के फलस्वरूप वो टेप तैयार होता था। और वो टेप अगर सही समय पर स्टूडियो पहुंच कर नहीं चला, अगर प्रसारण नहीं हुआ, तो उन सबकी मेहनत खराब हो जाती थी। इसलिए उसकी बहुत वैल्यू थी उस टेप की, और उसे सही समय पर चलाना भी बहुत जरूरी था। और वही उषा जी बता रही हैं कि किस तरह से काम तो सारा हो गया, लेकिन टेप की अपनी एक जर्नी है। बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। ये बताइए कि आप कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
1: देखिए, हमारे तो जो गायक हैं और वो नहीं रहे, वो सब पूजनीय हैं
0: जी,
1: उनकी आवाजें पूजनीय हैं। एक गाना जो आशा जी का ले लेते हैं, वो है जाइए आप कहां जाएंगे
0: जी।
1: वो आज इसलिए कि आकाशवाणी से हम गए हैं
0: जी,
1: उठकर नौकरी थी, वापिस इस माइक पे आए।
0: आप कहाँ जाएंगे, इस गाने के बाद फिर से हम बातचीत जारी रखेंगे। आपको सुनवा रहे हैं प्यारा सा गाना।

0: वैसे तो हम हर विषय पर ही काम करते हैं रेडियो में, और हर तरह की ऑडियंस जो है हमारी टारगेट ऑडियंस है, लेकिन आपने सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, तो और उसकी विशेष तैयारी भी होती थी, हर उम्र के लोगों से जुड़ना, उन्हें समझना। मैं चाहूंगी कि ये भी आप जरूर बताएं ताकि श्रोताओं को अंदाजा लगे कि एक छोटा सा कार्यक्रम जब वो सुनते हैं 15 मिनट या आधे घंटे का, उसके पीछे की कितनी मेहनत होती है।
1: देखिए, धारावाहिकों की शुरुआत हुई जीवन सौरभ से, और ये काम जो है महानिदेशक ने सौंपा था
0: जी।
1: अब मैं सबसे नीचे की पायदान पर खड़ी प्रोग्राम ऑफिसर और महानिदेशक सर्वोच्च, बीच में बहुत से लोग, तो उनको ये लगा कि युववाणी में तो चल रहा है पूरा चैनल, तो ये नया क्या यूथ के लिए करवा रहे हैं। और सामाजिक शास्त्र की तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, प्योर साइंस की स्टूडेंट थी, तो जो कुछ मैं कह सकती हूँ मैंने सीखा वो श्रोताओं से सीखा
0: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं, तो मैं उनके बीच कूद गई।
0: हाँ।
1: और सैकड़ों युवाओं से, किशोरों से, उनके माता पिता से, उनके काउंसलर से मैंने बातें की और दर्जनों टेप भर दिए। तो लंबी कहानी है जीवन सौरभ की, और फिर वो बना। उसमें एक एपिसोड अनवेड मदर्स पे था, कैसे होता है, और उसमें एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि कितना विभत्स है ये सारा
0: जी।
1: और आम है ये। उसके बाद एक एपिसोड उस बच्ची पे था, उस परिवार को कैसे मनाया होगा ताकि उनके जो संजीदगियां हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, वो भी हर्ट ना हो। पर पूरा एपिसोड बने कि उसने सुइसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। उसकी बहुत अखबारों में चर्चा हुई
0: जी।
1: और मंत्री जी ने महानिदेशक को खुद फोन किया कि कोई धारावाहिक तुम्हारे यहाँ चल रहा है, तो बहुत अच्छा उसका। पर मेरे दिल दिमाग पर जो असर हुआ कि उससे पहले मैं थोड़ा बहुत कविता कहानी लिखती थी और वो छप रही थी राष्ट्रीय पत्रिकाओं वगैरह में, बहुत अच्छे आते थे पाठकों की प्रतिक्रियाएं। जब वो धारावाहिक की फीडबैक आने लगी, उन किशोरों ने ना अपनी जिंदगी का सारा जो कह सकती हूँ कष्ट है उन चिट्ठियों में उड़ेल कर रख दिया
0: जी।
1: आज भी वो मेरे पास चिट्ठियां हैं, तो हर जब मैं उनसे विशेषज्ञों की बात उनको बताती थी सुनाकर, तो वो बाद में मुझसे चिट्ठी में पूछते थे, उन सब की बात ठीक है पर दीदी आप क्या सोचती हैं, आप अपनी बात बताइए। तो मैं, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है सामाजिक चेतना की आप बात कर रही हैं
0: जी,
1: कि मैं नहीं वो आकाशवाणी है, मतलब उनकी कितनी गहरी आस्था इस लोक प्रसारण में है
0: जी,
1: है ना, कि वो चाहे विशेषज्ञ बता रहे हैं, एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं, स्कूलों के काउंसलर्स बता रहे हैं, हॉस्पिटलों के साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं, लेकिन वो मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। तो ये जो एक गहरा रिश्ता श्रोताओं के साथ जब आप बनाते हैं, वो उनके दिल दिमाग पर असर करता है और उससे सामाजिक परिवर्तन होता है। सूचना और व्यवहार परिवर्तन के बीच में एक बहुत लंबा और बहुत संवेदनशील रास्ता है रिश्ता बनाने का, वो बना। उसके बाद डीजी ने कहा अब आप सेकंड एपिसोड बनाइए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आगे आप हमारी शादियां होने वाली हैं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रोताओं ने, तो आप हमें वैवाहिक संबंधों पे धारावाहिक बनाइए। तो मैंने जीवन सौरभ 2 बनाया। तो इसका सारा श्रेय मैं अपने सीनियर्स को देना चाहूंगी। पहली बात तो कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया
0: जी,
1: मेरी हर बात मानी, और दूसरा

0: उसी समय एक उपमहानिदेशक थे, वो एक बहुत बड़ा नाम था लेखन में आकाशवाणी का, उनसे वो आलेख लिखवा के लाए जो दहलीज हमने बाद में नाम दिया धारावाहिक को उसका। मैंने वो पढ़ा तो मुझे तो वो तोता मैना की कहानी जैसी लगी। मैं तो जीवन सौरभ बना चुकी थी जो असली
1: मुद्दे
0: हैं और उनकी जुबान से। हाँ, जीवन सौरभ के उस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे बीबीसी वालों ने भी यहाँ से इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा सर ये तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो देखिए उन्होंने एक बार भी इस चीज को अन्यथा नहीं लिया कि भाई तुम मेरी इतनी जूनियर हो और मेरे लाए हुए स्क्रिप्ट को मना करिए। तो सारा श्रेय उनका, क्योंकि क्या था, ध्येय था प्रसारण। तो फिर हमने लेखन करवाया उन दिनों में, त्रिपुरारी शर्मा थी, बहुत बड़ा नाम था उस समय उनका, बहुत नाटक की रंगमंच की रही है, तो उन्होंने लिखा 26 एपिसोड लिखे। पर उसने मुझे ये बताया कि हर विधा हर माध्यम की अपनी एक जरूरत होती है। तो आकाशवाणी का लेखन और रंगमंच का लेखन दो अलग चीजें हैं। तो उस स्क्रिप्ट्स को काफी रिवाइज करना पड़ता था आकाशवाणी के हिसाब से, और फिर जो प्रतिक्रिया श्रोताओं की आई तो मेरे लिए तो उससे ऊंची कोई चीज नहीं होती थी। तो ये आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है,
1: छोटा भारत है वो,
0: बिल्कुल छोटा भारत है
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: और हम जो कहते हैं कि हमारा ध्येय वाक्य जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको असल में आपने बहुत ही आसानी से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से चरितार्थ कर दिया।
0: मुझे लगता है आकाशवाणी की अगर आप मुझसे एक पूंजी पूछें
1: जी,
0: बहुत ऊंचे बहुत बड़े काम है आकाशवाणी के, राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका जो है ना वो अतुलनीय है। मैं ये कहूंगी कि लोक सेवा प्रसारण में और विकास संचार में विश्व के अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल प्रयोगों में आकाशवाणी है
1: जी,
0: और आकाशवाणी ने ये अर्जित किया है, बड़ी मेहनत से अर्जित किया है, और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो श्रोताओं का विश्वास, उनका दिल जीत पाए, उनके दिलों की बातें की, उनके दिलों से जुड़ गए, तो ये बात होती है।
1: मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने रेडियो का बदलता हुआ दौर भी देखा है, क्या उस समय आपको ऐसा लगा कि रेडियो किसी चुनौती का सामना कर रहा है?
0: समय तो बदलता है
1: जी,
0: आपका समय और हमारा समय, आज का डिजिटल युग सिर्फ तकनीकी की वजह से नहीं, पर तकनीक होने की वजह से चीजें बदलती हैं, समाज बदलता है। तो आज मैं सोचती हूँ जीवन सौरभ में वो जो मुझे इंटरैक्टिव करना होता था चिट्ठियों के जरिए, और पता बुकलेट्स छपवाई थी मैंने जीवन सौरभ दो के लिए, अगर सोशल मीडिया उस समय मेरे हाथ में होता तो मुझे ये सब मेहनत भी ना करनी पड़ती और सब तुरंत फुरत होता, तो शायद लोग ज्यादा अच्छे से जुड़ते। हर बदलते समय की अपनी मांग है, वो चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे संस्थागत जीवन हो या संस्था का जीवन हो, आपको बदलना होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
1: और आज के दौर में रेडियो की प्रासंगिकता जो है, मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि ये स्थान आप कहाँ पाती हैं?
0: सवाल ये है कि आप क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसका प्रसारण कैसे करते हैं और श्रोताओं से कैसे जुड़ते हैं
1: जी।
0: आज आपके आगे चुनौतियां हैं, भाषा बदल चुकी है, लेकिन अगर आपको अपनी जो पर्सनालिटी है उसको नहीं बदलना है
1: जी,
0: जिन चीजों के लिए आपका मान सम्मान था, हमने ये भाषा जो बोल रही हूँ मैं, ये मेरी भाषा नहीं है
1: जी,
0: मैं इसके साथ बड़ी नहीं हुई, ये भाषा हिमाचल की भाषा नहीं है, हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, पर हिंदी और तरह की हिंदी
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना। तो जो जिसकी वजह से आपका एक शिखर पर नाम था, लोगों ने उसको सुना, कितने हमारे डिप्लोमेट हैं, कितने बड़े लोग हैं जो युववाणी से बने हैं
1: जी,
0: तो उसको बनाए रखना है लेकिन परिवर्तन के साथ। जब रेडियो आया था तो बोला जी अखबार खत्म हो जाएंगे, जब टेलीविजन आया कि रेडियो खत्म होगा, खत्म कुछ नहीं होता, आज सोशल मीडिया है, खत्म कुछ नहीं होता, इंसान की कम्युनिकेशन की नीड्स हमेशा रहेंगी, लेकिन बदलती तकनीक और इतनी तेजी से तकनीक बदल रही है कि उसमें आप अपने आप को बनाए रखना और अपनी आभा को बनाए रखना एक चुनौती है, और चुनौती ही तो नई चीजें करने के लिए
1: जी
0: आपको प्रेरणा देती है ना
1: जी। बहुत रोचक बातचीत आपसे रही और इतनी सारी बातें हमने सुनी हैं, आपके बहाने आज एक दौर को फिर से हमने जिया है, और क्योंकि हम यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, यही दरो दीवार हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं, जिनसे हमारा परिचय है, आपके बहाने आज हमने एक नए अंदाज में इनको देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को तो कुछ नया मिला ही है आपसे बातचीत करके, लेकिन हम प्रसारण कर्मियों को भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ यादों को नहीं जी।

0: आता है, आने वाले समय के लिए भी खुद को हम तैयार कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि खुद को बदलना है लेकिन अपनी परंपरा को भी बनाए रखना है, उस संजीदगी को भी बनाए रखना है। चलते चलते कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
1: शमशाद बेगम का
0: जी,
1: गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हांक रहे।
0: हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में आज हमारी विशेष हस्ती थी उषा भसीन जी। उषा जी, आप आज स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं। श्री मोदी आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री की दर्ज की गई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता

0: मांग दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। यह छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।

0: दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इस दौरान श्री खनाल विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा की परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का पूल ए में 9 अंक के साथ दूसरा स्थान है। टीम ने ग्रुप चरण में मेजबान जापान के खिलाफ एकमात्र हार के बाद चीनी ताइपे पर 13-1 की शानदार जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: rejected applications for 38 deputation vacancies in various positions, including Joint Director, Deputy Director, Senior Assistant Director, Senior Prosecutor, Principal Private Secretary and Assistant Director. The posts are located in Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Kolkata, with pay levels ranging from level 8 to level 12 as per the 7th CPC. Applications must be submitted through proper channel within 60 days of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website at www.sfio.gov.in. I repeat, the website is sfio.gov.in. The Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, has extended the last date for applications to the post of Member, Environment and Rehabilitation in the Narmada Control Authority, NCA, Indore. The post is to be filled on deputation basis, including short-term contract, and carries level 14 as per the 7th CPC. Interested and eligible candidates may submit their applications within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and application procedures available on the official website, Ministry of Jal Shakti, DOPT, and Narmada Control Authority. Do refer to www.jalshakti-dover.gov.in, or you could also go on to www.dopt.gov.in. The Ministry of Information and Broadcasting has invited applications for filling two posts of regional officer at the Central Board of Film Certification, CBFC, offices in Mumbai and Cuttack, and one post of additional regional officer at Mumbai on deputation basis. The regional officer post carries pay level 12, and while the additional regional officer post carries level 11 as per the 7th CPC. Eligible officers from the Indian Administrative Service or Central Group A services possessing the prescribed qualifications, language proficiency and administrative experience may apply. Applications along with RPARS, Vigilance Clearance, Integrity Certificate, CADA Clearance and other required documents should be submitted within 60 days from the release of this publication in the Employment News. Detailed eligibility conditions, application format is available on the Ministry's website. Do refer to www.mib.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई 2027 से प्रारंभ होने वाले भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायुसेना अकादमी के पाठ्यक्रमों तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में अक्टूबर 2027 में आरंभ होने वाले पाठ्यक्रमों पुरुष और महिला दोनों के लिए भर्ती हेतु 13 सितंबर 2026 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2026 आयोजित की जा रही है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 9 जून 2026। वेबसाइट का पता है upsc.gov.in। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है upsconline.nic.in। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद झारखंड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीशियन ग्रेड 1 ग्रुप 2 पदों की कुल संख्या 30 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 19 जून 2026 शाम 5 बजे तक। पात्रता शर्तों, आरक्षण की स्थिति और नियम और शर्तों आदि के विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.cimfr.res.in।

0: इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी परिशिष्ट संशोधन अथवा अधिसूचना केवल इस वेबसाइट पर ही पोस्ट की जाएगी। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, पिलानी, राजस्थान, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीकी अधिकारी समूह 3, कुल 8 पद उपलब्ध हैं। तकनीशियन ग्रेड 1, समूह 2, कुल 14 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत विज्ञापन योग्यता अनुभव और वेतनमान आदि से संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.ceeri.res.in। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक पुस्तकालय का एक पद रिक्त है, जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर भरा जाना है। संपूर्ण विज्ञापन आवेदन पत्र के प्रारूप और अन्य विवरण के लिए देखिए कृपया दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है 28 जून 2026। नागालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत वित्त अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, उपकुल सचिव, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा अन्य गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है nagalanduniversity.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 13 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है आज उनके पास खास रिपोर्ट्स, और खेल के मैदान की गतिविधियों की भी जानकारी हम आपको प्रोग्राम में देंगे। साथ ही आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी एक नज़र हम डालेंगे। कार्यक्रम के आखिर में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
1: वेल नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। वेल यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। सो लिसनर्स, वी ब्रिंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव राउंड अप ऑफ द टॉप हेडलाइंस वेल मेकिंग न्यूज अक्रॉस द नेशन एंड अराउंड द वर्ल्ड। इवन ऑल्सो टुडे बीइंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, we will also dedicate a special segment, which is our discussion segment, Dateline India, discussing the importance of environmental conservation, sustainable living. Well, also at the end, we will pay our heartfelt tributes to distinguished personalities whose contributions they have left a lasting impact on the society. So without any further delay, well, it is our way of telling us you have to be with us, listeners, for the next 30 minutes. First, we are beginning with the headlines, shall we?
0: जी, सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
1: Center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities.
0: रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर बनाए रखा है। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया।
1: वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बीइंग

0: नदियां, पर्वत, सागर, पेड़, पत्ते, जी हाँ, ये पृथ्वी किसी चमत्कार की मांग नहीं कर रही है हमसे, बस थोड़ी सी देखभाल चाहती है। हमें किसी दूसरे ग्रह की जरूरत नहीं है, बस हमें अपनी इस खूबसूरत पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना बंद करना है।
1: वेल, दैट इज ट्रू। सो द अर्थ इज ऑलरेडी स्पीकिंग टू अस थ्रू रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स, मोर इंटेंस वाइल्ड फायर्स, एक्सट्रीम स्टॉर्म्स एज वेल। एंड आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ अ क्वोट व्हिच महात्मा गांधी शेयर्ड, व्हाट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स। हाउ प्रोफाउंड, राइट?
0: और पर्यावरण की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, हम अपनी इस हरी भरी धरा को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेहतमंद बना सकते हैं और इसके लिए हम कौन से आसान कदम उठा सकते हैं?
1: सो एग्जैक्टली, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 5th June एवरी ईयर। वेल, डेल्विंग इनटू द हिस्ट्री, since 1973 and as part of the United Nations Environment Program, and this builds awareness to save life on earth.
0: Shagun, पर्यावरण की जब बात होती है तो हम केवल पेड़ पौधों, जंगलों या वन्य जीवों तक ही इसको सीमित करके देखते हैं।
1: Exactly.
0: जबकि सच ये है कि पर्यावरण जो है एक बहुत ही व्यापक एक तंत्र है, और इसमें हवा है, पानी, मिट्टी, नदियां, जैव विविधता और जलवायु सब कुछ शामिल है, और इसी पर हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पीढ़ियों का भविष्य भी निर्भर करता है। और इसी साझा जिम्मेदारी और चिंता को देखते हुए हर साल हम 5 June को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने का एक मौका भी है कि विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाकर हमें देखना होगा।
1: सो विशाल, आई टोटली अग्री विद यू। कम्युनिटीज आर एक्चुअली रिस्टोरिंग इकोसिस्टम्स, यंग पीपल आर ड्राइविंग चेंज, एंड वेल, आवर एनवायरनमेंट needs these kind of initiatives, and clean energy is transforming cities and homes, don't you think so?
0: जी, और सबसे पहले मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि प्रकृति से हमें रोजाना शगुन क्या मिलता है?
1: Well, I don't have to think hard about it. We get clean air to breathe, also water to drink, food to eat, as well as the beautiful surroundings that we watch and we enjoy and we be there with our family and friends, right? In the environment.
0: हाँ, आपने beautiful surroundings की बात की, अपने आसपास का जो एक सुंदर वातावरण होता है उसकी बात की, और लेकिन दुख की बात यहाँ पर यही है कि प्रदूषण है, पेड़ों की कटाई हो रही है और बहुत ज्यादा कचरा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है।
1: Well, the situation is dire, and that's why World Environment Day reminds us that every individual has a responsibility to protect nature, don't you think so?
0: जी, ये केवल एक सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जो छोटी छोटी आदतें हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है पर्यावरण संरक्षण।
1: Right, our micro habits.
0: जी,
1: and so now let us share some simple yet very effective steps to conserve the environment. Should we start with it? So first one, we should plant more trees. Trees absorb carbon dioxide and provide oxygen in turn. And even planting one sapling, it can make a difference. It can make a huge difference.
0: जी, और कम इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करें चीज़ों को, रिसाइकिल करें। किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले सोचें कि क्या उसे दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सकता है।

0: 3 hours, right? And third one, we should save water. And it's quite simple, actually. We can turn off the taps when not in use, and while brushing or while cooking as well, if there is wastage of water, we can avoid that. We can avoid wasting this precious resource.
1: जी, और हम बिजली बचा करके भी पर्यावरण को बहुत कुछ हम योगदान कर सकते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए. जब जरूरत ना हो तो लाइट, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देनी चाहिए.
0: Also, the fifth one, we all have read it someplace or the other. We should say no to single-use plastic. We can carry cloth bags instead, reusable bottles whenever it's possible.
1: जी, right? और अपने आसपास की जगह को साफ रखना हमें सीखना होगा. हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें.
0: Exactly. So protecting the environment in all does not require big actions, very small, really micro practices, minimal practices, small efforts by millions of people. It can create a huge impact. Well, delving on this particular fact that India is emerging as a global leader in environmental conservation and sustainable development. Wow.
1: बिल्कुल सही कहा शगुना आपने. पर्यावरण बचाने की वैश्विक अभियान में भारत ने पिछले 12 वर्षों में अपनी खास नीतियों और लगातार किए गए कामों के जरिए जबरदस्त तरक्की की है. और जब आप पर्यावरण सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ख्याल यही आता है, पेड़, नदियाँ, वन्य जीव.
0: True, and all of them actually. And the good news is that India has made significant strides in each of these areas. Forest and tree cover have expanded, while wetlands, mangroves and coastal ecosystems, they have been restored.
1: नदियों की बात करें तो हम सभी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में जरूर सुना होगा.
0: Right.
1: और इस कार्यक्रम ने गंगा को फिर से जीवंत करने और प्रदूषण का स्तर कम करने में अहम भूमिका निभाई है.
0: Also, cleaner rivers, they mean healthier ecosystems and better lives for millions of people, right?
1: जी, और अब एक सवाल हमारे सुनने वालों से भी कि भारत में किस जानवर को अक्सर सफल वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है?
0: So, if our listeners and even you and even me, if we have guessed it right, it is actually tiger.
1: Bag.
0: Along with tigers, populations of lions, elephants, rhinos and several other species, they have also increased in recent years.
1: जी, और अपने आप में एक बहुत
0: Feels so great.
1: एक अच्छी खबर भी है. इससे पता भी ये चलता है कि जब संरक्षण के प्रयासों को प्रतिबद्धता और समुदाय की भागीदारी का समर्थन मिलता है तो सकारात्मक बदलाव आते ही हैं.
0: And India has also strengthened its environmental management systems, solid waste processing rates, they have improved circular economy practices, they are being promoted through extended producer responsibility or EPR frameworks as well, Vishal.
1: आसान शब्दों में कहें तो कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को ही कचरा कम करने, ज्यादा रिसाइकिल करने और संसाधनों का, रिसोर्सेज का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
0: And that's not all. Green skills, environmental awareness and the use of technology for conservation, they're helping all of this together, they're helping create a more sustainable future.
1: क्या आज हम सब कोई एक ऐसा छोटा कदम उठा सकते हैं जिससे कचरा कम हो और संसाधनों की बचत हो?
0: We can do that, right?
1: Mm-hmm.
0: And the steps they should include carrying a reusable water bottle, planting a tree, switching off unused lights, switching off those and taps as well, or avoiding single use plastics altogether.
1: जी, हर छोटा कदम मायने रखता है. और जब देश के नागरिक अपना इस अभियान में, इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अपना योगदान दें तो भारत जो है निश्चित तौर पर वैश्विक मंच पर अपनी गहरी छाप, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक निश्चित तौर पर अपना एक जगह बना रहा है.
0: सो टुडे PM Modi called for renewed commitment to sustainable growth. He extended wishes to the countrymen on World Environment Day. In a social media post, Mr. Modi said that this day reaffirms the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. He noted that numerous efforts of the government over the last decade highlight its work in this direction.
1: जी, उन्होंने बताया कि भारत की कुछ अहम कामयाबियों में हरियाली का दायरा बढ़ाना और कई जानवरों की आबादी में बढ़ोतरी शामिल है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने हर साल लगभग 1.19 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ने में अहम योगदान दिया है.
0: It's like the numbers, they suggest it's great. And Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today stressed the need for greater awareness on environmental protection and expanding green cover

0: across the country.
1: Prime Minister Narendra Modi has encouraged us to plant one tree in the name of our mother, Ek Ped Maa Ke Naam. It is truly a divine blessing for me that I could plant a tree in my mother's name in the Tirumala Balaji Hill.
2: और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया है।
0: इट्स ट्रूली वंडरफुल एंड इन आकाशवाणी प्रेमिसेस आल्सो समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन प्लांटेड अ सैपलिंग अंडर द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन well here in the premises of Akashwani in New Delhi. So talking to Akashwani News, Dr. Murugan appealed to the citizens to take a pledge to protect the environment. He emphasized the need to save water, planting trees and protecting and conserving them.
3: Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called the nation to Maa Ka Naam Ek Ped Lagane Ke Liye. Importance of the environment, we have to save the water and we have to plant that.
0: So listeners, remember, the earth is not just our home, it is a treasure we must preserve for future generations. Vishal,
2: to is paryavaran divas par aaiye hum sab milkar ek zyada hare bhare saaf sutre aur swasth sansar ke nirman ke liye kaam kare. और अब कार्यक्रम में समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानते हैं कि आज उनके पास क्या विशेष रिपोर्ट्स हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम कहां चल रहे हैं?
0: Well, we are now heading to Ladakh. So Ladakh once used to be landlocked during the winter months due to heavy snowfall at passes, and this will now have all-weather connectivity as the Zojila Tunnel is near completion. This tunnel, which is 13.15 kilometers, is strategically significant as it will be all-weather connectivity linked for Ladakh with the rest of the country through Jammu and Kashmir, and it is set to achieve a major milestone on June 9th as Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari will trigger the breakthrough blast. On this day, the team excavating at both ends of the tunnel will meet. Well, our lay correspondent has filed more on it. Listen in.
4: Zojila Tunnel is one of the most ambitious road projects in the country, and it will create history as it will become the longest single tube bi-directional road tunnel at an altitude of 11,500 feet in Asia. It is expected to significantly boost connectivity, mobility and economic activity in the strategically significant region of the country. The tunnel is equipped with CCTV surveillance, radio control and uninterrupted power supply and ventilation system. Not only Ladakh will have all-weather connectivity, but it will eliminate all the challenges that a traveler while traveling from Sonamarg to Taraz on the Leh Srinagar National Highway have to pass through the Zojila Pass, which is considered extremely challenging due to snowfall and inclement weather. Zojila Tunnel is said to be completed by February 2028. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
2: कल्पना कीजिए कि बिहार का एक युवा जिसके पास एक अभिनव सोच है, नया विचार है, कुछ अलग करने का जज्बा है और सपने भी बड़े हैं, लेकिन संसाधनों की कमी जो है उसे आगे बढ़ने से रोकती है। कुछ वर्ष पहले तक ऐसे अनेक सपने अक्सर सोच तक ही सीमित रह जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। क्या तस्वीर बदल रही है? हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति और उससे जुड़ी विभिन्न पहले युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने का अवसर दे रही हैं। उद्देश्य केवल नौकरी पाने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो स्वयं रोजगार सृजित करें और दूसरों के लिए भी अवसर बनाएं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमी रामाशीष कुमार भी ऐसे ही युवाओं में शामिल हैं जिन्होंने सरकारी सहायता के बल पर अपने विचार को एक सफल उद्यम का रूप दिया।
6: बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत हमें जो है 10 लाख रुपए का फंडिंग ग्रांट हुआ है और मैं दिल्ली छोड़ के बिहार में आज स्टार्टअप कर रहा हूँ और मेरा भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है। मैंने भी बहुत सारे जगह पे कॉर्पोरेट में काम किया है और बिहार स्टार्टअप जो है आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो थोड़ा उतना ज्यादा ये नहीं था ट्रेंड। आज के टाइम में बिहार से बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप बन रहे हैं।
5: सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि काम करने के लिए बेहतर माहौल भी तैयार किया जा रहा है। पटना के मौर्यलोक परिसर में विकसित 154 सीटों वाले कोवर्किंग स्पेस में वर्तमान में 65 से अधिक स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। रियायती शुल्क पर या

0: उपलब्ध सुविधा नए उद्यमियों को कार्यालय, प्रशिक्षण और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रही है। तकनीक आधारित स्टार्टअप चला रहे उद्यमी रोशन का कहना है कि ऐसी सुविधाएं उद्यमियों के लिए व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही है।
1: बिहार में जो इनिशियल स्टार्टअप्स हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी जो आपको इनिशियली 10 लाख की फंडिंग देती है और सीड स्टेज में अगर आप जाते हैं तो 15 लाख की फंडिंग और मिलती है। इसके साथ आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा थ्रू वर्किंग स्पेस।
0: एक और सरकार स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर युवा भी नए अवसरों को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। यही कारण है कि बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में यही पहले बिहार को एक सशक्त स्टार्टअप केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परिक्रमा के लिए पटना से सत्यम कुमार के साथ निधिश्री की रिपोर्ट।
2: The Mizoram government has launched Khet Bachao Abhiyan. This is an initiative of the center's Agriculture and Farmers Welfare Ministry to curb soil degradation. More from our correspondent.
3: The initiative, which aims at promoting balanced soil test-based fertilizer application and natural farming methods, was launched by State Governor General Vijay Kumar Singh at Lok Bhavan. Speaking on the occasion, Singh expressed concern over the excessive use of chemical fertilizers and pesticides in pursuit of higher crop yields, which he said adversely affected agricultural land and human health. He called for greater efforts to protect agricultural land through soil conservation, balanced fertilizer use and natural farming practice. Highlighting Prime Minister Narendra Modi's national mission on natural farming, Governor stressed the importance of gradually shifting towards the natural agricultural practice to safeguard both environmental and the quality of agricultural produce. He said that regular soil testing is essential to identify nutrients deficiencies and ensure crops receive appropriate nutrition. Governor urged agricultural scientists and experts to actively support farmers in adopting sustainable farming practice. Noting that agriculture remains the backbone of Mizoram economy, the governor said that the state could achieve self-sufficiency in food production and maximize farmers' income through coordinated efforts by experts and Krishi Vigyan Kendras. He also pointed out that Mizoram crops are unique due to continued practice of jhum cultivation on hilly slopes where maintaining nutrients balance is particularly challenging. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani News Aizawl.
4: आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल हुए और हरियाणा के वन तथा पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह विशेष अतिथि इस समारोह में रहे। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धनकोट में बायो रिमेडिएशन पायलट परियोजना का भी उद्घाटन किया।
5: श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से जैविक घटकों का उपयोग करके प्रदूषित पानी और कचरे का प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाएगा। ये परियोजना गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के बीच ऐसी आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। श्री मनोहर लाल ने ग्राम नगर निगम के पार्कों में शोधित अपशिष्ट जल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन परियोजना और सेक्टर 109 में मटेरियल रिकवरी सुविधा का शिलान्यास भी किया। विशिष्ट अतिथि राव नरवीर सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और अभियानों को धरातल पर लागू किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, स्वच्छता अपनाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर एक विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मंत्रियों सहित उपस्थित नागरिकों और अधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण भी किया। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
2: So on Environment Day today, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you an interview with Akash Gupta, who has worked for reviving Manorama River in his village in Uttar Pradesh.
6: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया था। ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान

गीत गायक थे। मास्टर मदन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में किशोर के रूप में ख्याति हासिल करके मात्र 15 वर्ष की उम्र में 1940 के दशक में ही स्वर्गवासी हो गए थे। और कहा यह भी जाता है कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और उस समय की अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए बहुत ऊंची रकम दी जाती थी। और मास्टर मदन उस समय के प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल के बहुत करीब थे। और कारण इसका एक ही था कि दोनों ही जलंधर के निवासी थे। और इनके जीवन में केवल इनके 8 गाने ही रिकॉर्ड हो पाए हैं जो आज उपलब्ध हैं। इन्हीं का रिकॉर्ड एक गाना आइए सुनते।

और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट ने कई बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की। फिल्म निर्माता के तौर पर मुकेश भट्ट की पहली फिल्म जुर्म थी और इसके बाद इन्होंने गुलशन कुमार के साथ मिलकर आशिकी फिल्म बनाई और इसके जिसका निर्देशन उनके भाई महेश भट्ट ने किया था और आशिकी फिल्म का संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था।

0: और अब हम आपसे यही अनुमति लेना चाहेंगे, समय खत्म हो रहा है कार्यक्रम का, तो इजाजत दीजिए विशाल शर्मा और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्ते।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जनडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के

0: मफल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, कूड़े केला, चरईमारा, रानी कोम्बो, महुआडी, संतपारा, कुटसेरा, टिकली पारा, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टान पारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारूमा, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 125 है। ये सामहर सिंघा, नागदरहा, सोखा मुड़ा, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण सुनिएगा रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 आप सुनेंगे बसंत राव देशपांडे का गाया राग मधुकोंस में ख्याल। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आजकल का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस और क्रम मार्गदर्शन में 12वीं के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में संभावनाएं विषय पर डॉक्टर सुमिता दवे से होगी दीपक हटवार की भेंटवार्ता और होगा अपनी पसंद। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां शाम 6:30 पर। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा खेती में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के उपयोग और महत्व और हेलो चौपाल का विषय होगा स्वच्छ दूध उत्पादन और उसका परिवहन और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर सुधीर उपरीत। संचालन चंपेश्वर गोस्वामी का और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। पुराने फिल्मी गीतों

फरमाइशी कार्यक्रम यादें का समय होगा रात 10:30 पर और श्रोताओं चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा ऋषिकेश गागुर्डे का ख्याल गायन और स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम कल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में युवा शक्ति सुनिएगा रात 9:25 पर। कल दिन के 11:40 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी गिरिजा देवी का गाया दादरा। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर पेश करेंगे कल सुबह 7:05 पर। कल सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से होगी भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे रमाशंकर। बातों बातों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9 बजे। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की होगी। और श्रोताओं चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा कल सुबह 9:15 पर, कल सुबह 10:30 पर, कल दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: पहले जल सी शीतल थी, अब आग के जैसे लहकती हैं। सुनो इनकी आवाज़ों को, ये हवाएं कुछ कहती हैं।
1: पहले इनसे राहत थी, अब यही तकलीफ देती है। इसमें इनका कोई दोष नहीं, हम इंसानों की ही गलती है। सुनो इसके दर्द को, ये हवाएं कुछ कहती हैं, ये हवाएं कुछ कहती हैं।
0: दोस्तों, आज की शाम कुछ अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है और इस शाम को और सुंदर बनाने आ गए हैं हम आपके रेडियो दोस्त। मैं हूं आरव शुक्ला।
1: और मैं श्रिया चक्रवर्ती। तो आप स्वीकारें हमारा प्रेम भरा
0: नमस्कार। अच्छा श्रिया, ये बताओ कि हमें शुद्ध जल और वायु की आवश्यकता क्यों है?
1: अरे कैसे हल्के सवाल पूछ रहे हो आरव, ये तो कॉमन सी बात है ना। हमें जल और वायु की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है।
0: अच्छा, और हमें वृक्ष की आवश्यकता क्यों है श्रेया?
1: अरे फिर वैसा ही सवाल आरव, वृक्ष पौधे सभी से ही तो हमें प्राण वायु मिलती है और यही वृक्ष ऑक्सीजन लेवल को संतुलित रखने में धरती को सहायता प्रदान करती है।
0: हाँ श्रेया, और ये वृक्ष हमें फल औषधि जैसी गुणकारी चीजें भी तो प्रदान करती हैं। लेकिन श्रेया, ये वृक्ष ना हो तो क्या होगा?
1: आरव, ये वृक्ष अगर ना हो तो प्राकृतिक चक्र असंतुलित हो जाएगा और संभवतः प्राण वायु भी क्षीण हो जाएगी।
0: जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जल आकाश वायु सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
1: और दोस्तों ये सभी जीवन चक्र को संतुलित रखने में सहायता प्रदान

0: पसंद करते हैं।
1: साथियों, आपने ये अवश्य सुना होगा या पढ़ा होगा कि क्षितिजल पावक गगन समेरा पंचरचित अति अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी में रहने वाले किसी भी जीव के लिए यह पंच तत्व और प्रकृति बहुत ही आवश्यक है और सभी जीव इन पंच तत्वों से ही बने हुए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरव, लेकिन तुम हमारे श्रोता साथियों को ये नहीं बताओगे कि आज हम ये बातें कर क्यों रहे हैं।
1: अरे हाँ बिल्कुल श्रेया, दोस्तों पर्यावरण के विषय में आज बात करने का विशेष कारण है जो है विश्व पर्यावरण दिवस।
0: जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रकृति, स्वच्छता और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों के प्रति जागरूक करना।
1: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की पहल से सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में मनाया गया था और तभी से हर वर्ष एक खास थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
0: और इस बार का थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए।
1: दोस्तों, प्रकृति की सुरक्षा न केवल एक दिन अपितु हर रोज और प्रति सेकंड आवश्यक है।
0: बिल्कुल दोस्तों, प्रकृति हम सबकी जननी और जीवन दाता है, तो इसके प्रति हमें जागरूक रहना आवश्यक है।
1: और हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि हम स्वयं प्रदूषण फैलाने से बचें और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करें।
0: बिल्कुल आरव, हमें बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक, पॉलीथिन, सिंथेटिक फाइबर जैसी चीज़ों का प्रयोग करने से कम करना चाहिए।
1: और दोस्तों, हम प्रदूषणकारी वाहनों के इस्तेमाल को कम करके एसी, फ्रिज को ज़रूरत अनुसार इस्तेमाल करके भी प्रदूषण कम करने और ग्लोबल वार्मिंग घटाने में सहयोगी बन सकते हैं।
0: और दोस्तों, हम स्वच्छता के साथ साथ वृक्षारोपण, वृक्ष स्थानांतरण जैसे काम करके भी पर्यावरण के प्रति योगदान दे सकते हैं। वृक्षहीन स्थान पर वृक्ष लगाना और वृक्षों को न काट कर उन्हें उपजाऊ स्थान पर लगाना, ये एक बहुत ही विशेष कार्य है इस पहल में।
1: बिल्कुल श्रेया, और वृक्षारोपण तो हमें हर विशेष पर्व पर करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे जन्मदिन, एनिवर्सरी या कोई त्योहार, ये कार्य पर्यावरण के प्रति हमारी कृतज्ञता के भाव को दर्शाती हैं। और दोस्तों, वृक्षारोपण करने के साथ साथ हमें उन पौधों का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि वो बड़े होकर छायादार और फलदार बन सकें।
0: तो आइए साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति की रक्षा के लिए हम शपथ लेते हैं।
1: हम आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह शपथ लेते हैं कि हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना हर संभव योगदान देंगे।
0: हम जल, जंगल, जमीन और वायु को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लेते हैं।
1: जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम एकल उपयोग प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और समाज को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे।
0: पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथों में है और हम इसे हरा भरा और सुरक्षित रखने का वचन देते हैं।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: साथियों, देखते ही देखते वक्त कैसे गुजरता है हमें पता ही नहीं चलता। देखिए ना, अभी ग्रीष्म ऋतु चल ही रही थी, स्कूल कॉलेज में अवकाश थे, अब सभी फिर वापस लौट आएंगे।
7: और साथियों, अभी अभी नव उत्तीर्ण 12वीं के विद्यार्थी गण भी तो अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे।
6: तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने अगले क्रम की ओर, जो विशेष रूप से हमारे अभी अभी 12वीं पास आउट हुए साथियों के लिए आवश्यक है।
7: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रम मार्गदर्शन की, जिसमें आज का विषय है 12वीं के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में संभावनाएं, जिसमें आइए सुनते हैं डॉक्टर सुमिता दवे से दीपक हटवार की बातचीत।
8: श्रोताओं, मार्गदर्शन में आज हमारे साथ हैं MIT विश्वविद्यालय की को वाइस चांसलर और डायरेक्टर MIT बिजनेस स्कूल डॉक्टर सुमिता दवे। डॉक्टर सुमिता दवे जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: नमस्कार।
8: हमारे युवाओं के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि 12वीं तक की पढ़ाई युवा अलग अलग विषयों में करते हैं, कई युवा जो कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं, कुछ युवा आर्ट्स के साथ पढ़ाई करते हैं, मैथ्स वाले भी होते हैं और बायोलॉजी वाले भी होते हैं। तो ऐसे युवा जो पहले कुछ सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन 12वीं में पास होने के बाद बहुत से युवा ये सोचते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, तो आप बताएंगे कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाने के लिए युवाओं को 12वीं कक्षा में कौन

0: सा विषय ज्यादा सूटेबल होता है?
1: देखिए, अगर हम ये देखें कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा सूटेबल होता है मैनेजमेंट के लिए, तो टेक्निकली सारे जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, सभी एरियाज के बच्चे मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। कारण ये कि मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत डायनामिक कोर्स है और आज की डेट में मैनेजमेंट सबसे लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ये एक रोजगार उन्मुख शिक्षा है, जो बेसिकली आज के एनवायरनमेंट जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत इनोवेशन से ड्रिवन है, तो जो ऐसे एनवायरनमेंट में जो कैपेबिलिटीज युवाओं में जरूरत है, जैसे सारी रिसोर्सेज को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, स्ट्रैटेजिक डिसीशन लेना, ये सारी चीजें मैनेजमेंट स्टडीज के अंतर्गत आती हैं। तो हर एक फील्ड से 12th स्टैंडर्ड पास किया हुआ स्टूडेंट मैनेजमेंट का कोर्स परस्यू कर सकता है।
0: मैडम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई विद्यार्थी जिसने ये सोचा है कि वो बायोलॉजी का विद्यार्थी है और मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें उसको अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, तो ऐसे में उसके सामने और भी विकल्प होते हैं, तो अगर वो मैनेजमेंट को विकल्प के तौर पर चुनता है तो क्या उसका भविष्य अन्य विकल्प की तुलना में ज्यादा अच्छा रहेगा?
1: देखिए, अगर एक स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है कि वो मेडिकल के क्षेत्र में जाए, मेडिकल के क्षेत्र में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं जाता है, एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी ऑपरेट करते हैं वहां पे, क्योंकि एक हॉस्पिटल को भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की जरूरत है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज होते हैं जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड रहते हैं लेकिन डायरेक्टेड हेल्थ केयर की तरफ होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत रहती है। तो ये जो स्किल्स होते हैं उस तरीके से भी अप्लाई किए जा सकते हैं। और एक ऐसा नहीं है कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट मैनेजमेंट परस्यू नहीं कर सकता है। आज हम उद्यमिता के बारे में भी सोचते हैं, तो अगर एक साइंटिफिक टेम्परमेंट का अगर बच्चा है, क्योंकि उसने बायोलॉजी लिया है और वो मेडिकल साइंसेज के तरफ उसका एक रुझान है, तो उस रुझान को कंप्लीटली खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो एक मैनेजमेंट का रास्ता भी अडॉप्ट कर सकता है, मैनेजमेंट एजुकेशन के राह से भी वो उसी इंडस्ट्री में अपना प्रोफेशन डेवलप कर सकता है।
0: डॉक्टर दवे, आज की तारीख में सरकारी नौकरी के ख्वाब तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब अब बहुत दूर का ख्वाब नजर आने लगा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में खाली पोस्ट भी उतनी नहीं होती है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो युवाओं के लिए रोजगार का आसान रास्ता किस तरह से हो सकता है?
1: जब हम रोजगार मैनेजमेंट के कोर्स के द्वारा रोजगार के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हर बच्चे के दिमाग में आता है कि कॉर्पोरेट्स में जाना है। जब हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो कई डोमेन्स होते हैं, चाहे वो मानव संसाधन का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, ऑपरेशंस का हो, ये अलग अलग एरियाज के थ्रू आप कॉर्पोरेट्स में डोमेन स्पेसिफिक एरिया में आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस एंड बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी है, और यहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे एरियाज आज की डेट में बहुत डेवलप हो रहे हैं, बहुत टेक्निकल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट एजुकेशन उनको साउंड कंसेप्चुअल नॉलेज देता है और टेक्निकल एक्सपर्टीज से वो इस एरिया में बहुत

0: अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर दवे, अब बात आती है कि छात्र की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये उसकी पढ़ाई को काफ़ी प्रभावित करती है। मान लीजिए कोई छात्र जो बहुत ज़्यादा फीस देने की स्थिति में नहीं है लेकिन वो मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है, ऐसे छात्रों के लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगी?
0: देखिए, आज की डेट में एजुकेशन रिसीव करना ठीक है, फाइनेंशियल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज और अफिलिएटेड कॉलेजेस रहते हैं वो भी मैनेजमेंट के कोर्सेज देते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो रिपे कर सकते हैं।
1: डॉक्टर दवे, अब हम बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करना चाहेंगे, तो जो विद्यार्थी मैनेजमेंट का कोर्स बैचलर कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, उनके लिए कई बार ये होता है कि बीबीए के बाद वो कौन सा रास्ता चुने, तो अपनी योग्यता को देखते हुए उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसका निर्धारण किस तरह से करें?
0: देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर बच्चे को अपनी कॉम्पिटेंसी को मैप करना, अपनी कॉम्पिटेंसी जिसको हम अबिलिटीज भी बोलते हैं, अपने एस्पिरेशंस के साथ मैप करना, वो क्या बनना चाहते हैं। तो जब बीबीए एज अ डिसिप्लिन स्टूडेंट चूज करता है तो वो जनरली कॉर्पोरेट्स में जाता है, या आज की डेट में उद्यमिता एक ऐसा क्षेत्र हो गया है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है बच्चों के बीच में। तीसरा, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट के बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, और फोर्थ, वो पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चे अपना, हर बच्चा अपनी कॉम्पिटेंसी को अपने एस्पिरेशंस के साथ मैप करे, वो अपने आप को असेस करे कि वो एक शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कहाँ पहुंचना चाहता है, उस हिसाब से उसके जो स्किल सेट्स रिक्वायरमेंट होते हैं उसको वो ग्रूम करें। फैकल्टी, यही हमारा काम रहता है, बच्चों में जो स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर एक स्टूडेंट बोलता है कि हमको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हम मेजर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में एक एंटरप्रेन्योर बनने की स्किल सेट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो ग्रूम करके क्रिएट की जा सकती है, डिवेलप की जा सकती है।
1: डॉक्टर दवे, शिक्षा के आकलन की जब हम बात करते हैं तब दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो किसी विद्यार्थी के पास में डिग्री का होना और दूसरा स्किल का होना। आज की तारीख में डिग्री और स्किल, इन दोनों की वैल्यू आप कितनी मानते हैं?
0: देखिए, डिग्री, अगर एक प्रोफेशनल डिग्री बच्चा परस्यू करता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो डिग्री स्किल डेवलप ना कर पाए बच्चों में तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहां तक जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, और वेरी स्पेसिफिकली अगर हम मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करें, तो स्किल सेट डेवलपमेंट तो इस पूरे कोर्स का बेस होता है। अगर आपको कॉर्पोरेट में जॉब करना है, किस डोमेन में जॉब करना है, उसके लिए सेपरेट स्किल सेट्स की जरूरत है। अगर आपको उद्यमिता की तरफ जाना है तो आपको सेपरेट स्किल सेट्स की जरूरत है, और नॉलेज इज ऑलवेज अ बेस। बेस के, उस नॉलेज बेस के ऊपर स्टूडेंट्स अपनी स्किल डेवलप करते हैं।
1: कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में केवल डिग्री का अपने पास होना पर्याप्त नहीं है, स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अंत में हमारे सभी युवाओं के लिए डॉक्टर दवे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम भारत के उस युग में अभी हैं जहां पर संभावनाएं असीमित हैं। आप सपने देखिए और सपनों को साकार करने के लिए सही रास्ता चुनिए। संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अपने आप को इक्विप करिए, बहुत स्ट्रॉन्गली और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। बहुत सुनहरा भविष्य आपके लिए

0: गिरफ्तार कर रहा है।
1: डॉक्टर सुमिता दवे जी, आज आपने प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं के लिए संभावनाओं पर बहुत अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: क्रम मार्गदर्शन में आज का विषय था 12वीं के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में संभावनाएं, जिसमें आप सुन रहे थे डॉक्टर सुमिता दवे से दीपक हटवार की बातचीत। अच्छा श्रेया, तुम ये बताओ, तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है?
3: अरे वो गाना है ना, ये मुलाकात एक बहाना है, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें कौन सा गाना अच्छा लगता है?
2: अरे वाह, क्या ही बात है, मुझे ये मौसम की बारिश जो गाना है वो बहुत पसंद है। श्रेया, वैसे आज का अगला क्रम भी कुछ खास है, जिसमें हमारे श्रोता साथियों ने अपने मनपसंद गानों की फरमाइश की है।
3: अच्छा आरव, तो तुम बात कर रहे हो क्रम अपनी पसंद के बारे में।
2: बिल्कुल श्रेया, तो आओ सुनते हैं आज के क्रम का पहला गीत।

0: साथियों, आप सुन रहे थे अभी फिल्म हमारी अधूरी कहानी से गीत, जिसे स्वर दिया था पापोन ने। इसके गीतकार थे सईद कादरी, संगीत दिया था मिथुन ने,
1: और इस गीत के लिए फरमाइश किए थे लोरमी ग्राम चचेरी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागपुरे, राधेश्याम वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम सिरी गातापार से धनेश्वरी साहू ओम प्रभा बिंदेश्वर नागेश्वरी चमेली भूमिका मोनिका पूनम साहू ने।
0: भले मेरे पीछे जमाना पड़ेगा, मगर तुम बुलाओ तो आना पड़ेगा। अभी मुस्कुराने का मन तो नहीं है, तुम्हारे लिए मुस्कुराना पड़ेगा। दोस्तों, कवित्री साक्षी की इन पंक्तियों के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म एमएस धोनी का ये गीत, जिसे स्वर दिया था पलक मुच्छल ने। इसे लिखा था मनोज मुंतशीर ने और संगीतबद्ध किया था अमाल मलिक ने।
1: और इस गीत को पसंद किया था हमारे श्रोता साथी शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर ने, लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल निम्मी, शिवम मुकेश साहू ने, चरौदा सरगांव से सुजान सौहद्रा आयुष कीर्त वर्मा ने, ग्राम धरसीमा से छेदुलाल यादव, सीता अर्चना अरुणा और अनुराधा यादव ने।
0: आरव, प्रेम का एहसास बड़ा अनोखा होता है। जब दिल किसी की यादों में डूबने लगे, जब हर छोटी सी बात में उसी का जिक्र महसूस हो और जब दुनिया की सारी हलचल के बीच मन को बस एक ही चेहरा सुकून देने लगे,
1: तब जीवन के रंग कुछ और ही हो जाते हैं। उस समय ना कोई शिकायत रहती है, ना कोई चाहत, बस एक मीठा सा अपनापन दिल में घर कर जाता है।
0: ऐसे ही भावों में डूबा मन कभी सपनों में खो जाता है, तो कभी हकीकत भी किसी खूबसूरत ख्वाब जैसे लगने लगती है।
1: दोस्तों, इन्हीं मनमोहक भावनाओं और प्रेम की खूबसूरत रंगों से सजी है ये अगली प्रस्तुति। तो आइए आनंद लेते हैं इस मधुर गीत का।

0: फिल्म टू स्टेट से अभी आप सुन रहे थे ये गीत, स्वर थे अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा के, जिसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: और इस गीत को पसंद किया था ग्राम धमदा सुखरी कला से अमित जंघेल, सुकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल ने। ग्राम भाटापारा से बजकामल, मोतीलाल यादव, बसंत ब्रिगू, विनय ठाकुर और चौरम वर्मा ने। ग्राम सोनाडी से सुब्रत सांतना और सांतना चौधरी ने।
0: दोस्तों, कभी कभी दिल की कुछ बातें शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं हो पाती। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन भावनाएं आवाज से ज्यादा खामोशियों में सुनाई देती है।
1: किसी अपने तक अपनी बात पहुंचाने की चाह, उसके समझ लेने की उम्मीद और उसके जवाब का इंतजार, यह एहसास हर दिल ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है।
0: इन्हीं कोमल भावनाओं और दिल की अनकही बातों को स्वर देने वाला यह गीत, आइए सुनते हैं इस क्रम की अगली प्रस्तुति।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 से यह गीत, जिसको स्वर दिया था अंकित तिवारी ने। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीत थे अंकित तिवारी की।
1: और इस गीत को पसंद किया था भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल चंपा साहू, ग्राम तोड़ला जिला रायपुर से जीएल साहू, सरोज छोटी पिंकी साहू, ग्राम मेचका नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा लिखिल, तरुणदीप नाग ने। साथियों, सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि यह उन अनगिनत एहसासों का नाम है जो रास्तों में हमारे साथ चलते हैं।
0: और जब इस सफर में अपनों की यादें भी साथ हों तो रास्ते और भी खास बन जाते हैं दोस्तों।
1: तो आइए इन्हीं एहसासों के साथ सुनते हैं इस क्रम की आखिरी प्रस्तुति।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गदर का ये गीत। सर थे उदित नारायण के, गीतकार थे आनंद बख्शी और

0: गीत से सजाया था उत्तम सिंह ने।
1: और साथियों, इस गीत को पसंद किया था इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा और गंगा देवी विश्वकर्मा ने, और दुर्ग छत्तीसगढ़ दुर्ग से तारा विदा साहू, जितेंद्र किशन, संगीता ऋषि वन साहू, हिरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास संजीव, त्रिलोक साहू और रंजीत साहू ने।
0: दोस्तों, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, और देखिए ना, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। पर दोस्तों, जाने से पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बता दें कल के कार्यक्रम के बारे में।
1: कल की वाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत।
0: इसी के साथ दीजिए मुझे यानी श्रिया चक्रवर्ती
1: और मुझे यानी आरव शुक्ला को इजाजत, और स्वीकारे हमारा नमस्कार।

0: युवाओं का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का

भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने

0: उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं, इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए, ये मौका मा देश भर में करे जावत है आने आने कार्यक्रम के आयोजन। मुख्यमंत्री है आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं-12वीं के 22 जन पढ़िया लैका मन ला सम्मानित करीन। और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। अब समाचार विस्तार ले। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए, ये मौका मा देश भर मा आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतकोन केंद्रीय मंत्री मन विश्व पर्यावरण दिवस के शुभकामना देन है। ये मौका मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसन पहल हा हर बछर लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाए मा महत्वपूर्ण योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहिन कि आज के दिन हा पर्यावरण संरक्षण और सरलक विकास ला बढ़ावा दे के प्रतिबद्धता ला व्यक्त करे के प्रतीक आए। एति प्रदेश में घलो आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। राज्यपाल रमेन डे कहा रायपुर के लोकभवन और नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करीन। ये मौका में ओमन लोगन ले ज्यादा पेड़ पौधा लगाए और पर्यावरण ला सुरक्षित रखे के अपील करीन है। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहर ले रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम ऊपर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईन। ये मौका में उमन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के शुभारंभ करीन और प्रदेशवासी मन ले घलो एक ठन पेड़ माँ के नाम लगाए बर अपील करीन। इही बेरा वन मंत्री केदार कश्यप हकीन कि छत्तीसगढ़ हा अपन समृद्ध वन संपदा जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन के सेती देश के समृद्ध राज्य आए। राज्य सरकार हा पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास ला सर्वोच्च प्राथमिकता देवत सरलग कार्य करत है। श्री कश्यप बतैन कि राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पाछू 2 में करोड़ों पेड़ लगाए गए है। ये अभियान है एक ठन बड़े जन आंदोलन के रूप ले चुके है। उन्हें रायपुर में स्कूली लैका मन वन्य प्राणी के वेशभूषा में धारण करके रैली निकालीन और पर्यावरण संरक्षण के संदेश दीन। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहर ले रायपुर में ही एक ठन कार्यक्रम आयोजित होइस जेमा पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षक मन के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगीस। एकर अलावा विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में आज प्रदेश के आने आने ग्राम पंचायत में घलो विशेष ग्राम सभा के आयोजन करेगीस। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है प्रदेश के शराब फैक्ट्री ले निकलैया जहरीला पानी ले नदिया मन के प्रदूषित होय ऊपर नाराजगी जताई से। मुख्य न्यायाधीश के डिवीजन बेंच है ये मामला के सुनवाई करत 2 अधिवक्ता मन ला कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे है। उही कोर्ट कमिश्नर मन प्रदेश के 3 शराब डिस्टलरी यूनिट के संयुक्त निरीक्षण करही और अवैया 30 दिन के भीतर अपन रिपोर्ट सौंपी। ये मामला के अगला सुनवाई

0: 6 जुलाई के होही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर देश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के रहे है। ये दौरान देश हर क्षेत्र में कतकोन उपलब्धि हासिल करिस। श्री साव आज रायपुर में पत्रकार मन लेगोट बात करत बतैन कि केंद्र सरकार के उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजना मन लेके आज ले 21 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाए जाही। भाजपा कार्यकर्ता मन घर घर जाके जनसंपर्क और हितग्राही मन ले संवाद करही। एकर अलावा प्रदर्शनी और जन जागरण कार्यक्रम घलो आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़थन बांचे समाचार कोती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रम विभाग डहर ले आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल होइन। ये कार्यक्रम रायपुर में होइस। ये मौका में मुख्यमंत्री ह छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट सूची में टॉप 10 में जगह बनैया पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 22 जन छात्र छात्रा मन ला मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रूपया के प्रोत्साहन राशि दे के सम्मानित करीन। ये मा कक्षा 10वीं के 9 और 12वीं के 13 जन विद्यार्थी शामिल हैं। ये विद्यार्थी रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, शक्ति, बलौदाबाजार, रायगढ़ और कांकेर के संग आने आने जिला के हैं। मुख्यमंत्री ह सम्मानित विद्यार्थी मन ला बधाई देवत कहिन कि उनकर सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं भलुक श्रमिक परिवार के संघर्ष, परिश्रम और संकल्प की प्रेरक कहानी है। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ये दारी विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 6 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहेनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एक के संग्रह रिले करही। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के 4वां दीक्षांत समारोह में शामिल होइन। जी हां, आने आने संकाय के 9000 ले ज्यादा विद्यार्थी मल्ला उपाधि प्रदान करेगी। इमले 7500 ले ज्यादा स्नातक, 1500 ले ज्यादा स्नातकोत्तर और 5 सुपर स्पेशलिटी उपाधि देगी। वे आने आने संकाय में सबले ज्यादा अंक पवैया विद्यार्थी मल्ला स्वर्ण पदक प्रदान करेगी। कार्यक्रम ला संबोधित करत राज्यपाल हकीन कि डिजिटल एडिक्शन आज के सबले बड़का समस्या में एक है। यह सिर्फ मन के नहीं भलुक पारिवारिक और सामाजिक जीवन ला घलो प्रभावित करते। नवा पीढ़ी ला एकर ले बाहर निकले के जरूरत है। वे मुख्यमंत्री हकीन कि आज के दिन हा सिर्फ उपाधि पाए के दिन नहीं है, भलुक समाज और मानवता के प्रति नवा दायित्व के निर्वहन बर संकल्प ले के मौका आए। विद्यार्थी मन के सफलता उखर व्यक्तिगत उपलब्धि के संगे संग छत्तीसगढ़ के प्रगति और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा लघलो दर्शाते। इति कार्यक्रम ला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हघलो संबोधित करीन। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप अपन निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम ले प्रदेश में हाथी संरक्षण, मनखे और हाथी के संघर्ष ल कम करे के मनसा ले आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ करीन। ये मौका में श्री कश्यप बताइन कि हाल बेरा हाथी मन के विचरण सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग संभाग के कतकोन इलाका में बगरे है। ऐसन में हाथी संरक्षण के संगे संग प्रभावित इलाका में रही या लोगन के सुरक्षा करना घलो जरूरी है। मंत्री बताइन कि बछर 2022 में करीबन 240 हाथी रिहिन, जिकर संख्या बाढ़ के बछर 2026 में करीबन 450 हो गए है। यह वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़का उपलब्धि आए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है प्रदेश में एक के दिन आयोजित होया 2 ठन परीक्षा के तिथि में बदलाव ले इनकार कर दे है।

0: ठन याचिका के सुनवाई करत न्यायालय ह किहिस कि डीएलएड के परीक्षा साल म 2 घांव आयोजित करे जाथे। एखर सेती परीक्षार्थी मन के तीर अवैया परीक्षा म शामिल होए के विकल्प सुरक्षित हे। ऐसन म जम्मो परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम म हस्तक्षेप करना उचित नहीं होही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के जानकारी ले दक्षिण पश्चिम मानसून 12 जून तक छत्तीसगढ़ अमरे के संभावना है। बता दें कि अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। उन्हें कुछ एक जगह गरज चमक के संग गाज गिरे के घलो चेतावनी दे गए है। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए ये मौका में देश भर में करे जावा थे आने आने कार्यक्रम के आयोजन। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं 12वीं के 22 जन पढ़ैया लैका मन ला सम्मानित करीन। और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले करते हैं।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्ये 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। पुनःक्रयण दरः 5.25% यावत् स्थास्यति। नेपाल देशस्य विदेश मंत्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयां यात्रायां भारत यात्रायां दिल्लीं संप्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणां 18 वर्ष वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान् प्रधानमंत्री मोदी। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिक आधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां कृतवान् तथा जनसभाम् अपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं गमिष्यति गतवान् यत्र प्रायः 2,997 कोटि रूप्यक परिमितां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः आजीविकानां निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयश्च भविष्यन्ति। वैदेशिक निवेशकेभ्यः करमुक्तिः भारते च निवेशवृत्तेः प्रोत्साहनम्। केन्द्र सर्वकारेण वैदेशिक संस्थागत निवेशकेभ्यः महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशात् प्राप्तेः पूंजी लाभे तथा कुसीद रूपेण आये संपूर्ण करमुक्तिः प्रदत्ता। एषा व्यवस्था अस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथमदिनात् प्रभाविनी भविष्यति। एतदर्थं प्रशासनेन 26.5

0: तेन उक्तं यत् अयं दिवसः च पर्यावरण संरक्षणं सतत विकासं च प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः अद्य नवदिल्ली नगरस्य ऑल इंडिया रेडियो परिसरे एक पेड़ मां के नाम अभियानस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवान्। आकाशवाण्या सह संभाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्रि दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे महाराष्ट्रस्य आन्ध्रप्रदेशस्य कर्नाटकस्य च केषुचित् भागेषु तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति। पुरुषाणां अष्टादश वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
3: जी हाँ श्रोताओं, वैसे तो प्राचीन काल से ही दुनिया भर में महिलाओं को उनकी शारीरिक रचना के कारण पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्थान दिया जाता रहा है, परंतु शिक्षा और औद्योगिक विकास के साथ साथ विकसित देशों में महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन आया है और नारी समाज को पुरुष के बराबर मान सम्मान और न्याय प्रदान होने लगा है। परंतु सामाजिक ताने बाने में आज भी नारी का सम्मान दोयम दर्जे का है। हमारा समाज अपनी परंपराओं को तोड़ने को तैयार नहीं है। जो कुछ बदलाव भी आ रहा है उसकी गति बहुत धीमी है। शिक्षित पुरुष भी अपने स्वार्थ के कारण अपनी सोच के बदलने में रुचि नहीं लेते। आज भी माँ बाप अपनी पुत्री का कन्यादान कर संतोष अनुभव करते हैं। तो आइए एक नाटक के द्वारा ऐसी ही एक घटना के बारे में सुनते हैं।
4: सुधा, बेटी सुधा, बेटी जल्दी उठो।
5: माँ थोड़ी देर और सोने दो ना।
4: बेटा, जल्दी उठने की आदत डाल लो, क्या ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाओगी। अब जल्दी उठो।
5: माँ, अभी मुझे ससुराल थोड़ी जाना है, मुझे तो अभी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है और आपका और पापा का नाम रोशन भी तो करना है।
4: बस रहने दे, तू करेगी हमारा नाम रोशन। जिद करके तूने अपने एडमिशन तो करवा लिया, पर आगे जाकर तुझे चूल्हा ही फूकना है।
5: माँ, ये क्या कह रही हो तुम। अच्छा चलो, अब देर हो रही है, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे कॉलेज जाना है।
6: बेटी सुधा।
5: हाँ जी पापा जी।
6: बेटा, थोड़ा जल्दी उठकर काम में अपनी माँ की मदद करवा दिया करो। अभी काम नहीं सीखोगी तो कब सीखोगी, फिर आगे तुझे ससुराल में भी तो जाना है।
5: ठीक है पापा, कल से कोशिश करूँगी, पर अभी मुझे जल्दी से जल्दी कॉलेज छोड़ दो, नहीं तो आज फिर मैं लेट हो जाऊंगी।
6: ठीक है, चल।
7: कैसी हो सुधा, आज फिर से लेट।
5: क्या करूँ रीना, मेरे मम्मी पापा मुझे ससुराल भेजने में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हें अभी मना कर दिया है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है।
7: सुधा, वेरी गुड, ऐसे ही मन लगा कर

0: पढ़ती रहो तो तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने कॉलेज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है।
1: थैंक यू मैम, मैं और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ूंगी।
2: आ गई बेटा, अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा, तुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं।
1: माँ, मैंने आपको कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे और आगे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, फिर ये सब क्यों?
3: ठीक है बेटा, पढ़ाई भी कर लेना, पर अभी तो तैयार हो जा।
2: अजी सुनते हो, लड़के वाले आ गए, जल्दी आ जाओ।
3: भाग्यवान, जल्दी जाओ, चाय नाश्ता लेकर आओ।
4: देखो भाई साहब, हमें सुंदर और सुशील संस्कारी बहू चाहिए।
3: ये लो, हमारी बेटी सुधा भी आ गई। जैसे आपको बहू चाहिए वैसे ही सारे गुण हैं इसमें।
4: भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए।
3: लो भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, हमें भी आपका लड़का पसंद है।
4: देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद तो है, मगर हमारी कुछ मांगे भी हैं। हमें शादी से पहले 10 लाख कैश और एक कार चाहिए। अगर आपको ये मांगे मंजूर हैं, तो हमें शादी की डेट फाइनल करें।
3: हमें आपकी मांगे मंजूर हैं, हम इतना अच्छा रिश्ता खोना नहीं चाहते।
4: अच्छा भाई साहब, हम चलते हैं, अब आप शादी की तैयारी करो।
1: पापा मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे आगे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, और ऊपर से ये लोग दहेज मांग रहे हैं।
3: सुधा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और ये क्या बार बार पढ़ाई की रट लगा रखी है? समझ नहीं आता, लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ की तरह होती है, और मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कर दी है। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, रही दहेज की बात, वो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। इतनी सी बात के लिए मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगा।
1: माँ, पापा को समझाइए ना, पापा तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं।
2: सुधा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी।
1: नहीं, मैं नहीं करूँगी।
2: देख सुधा, अगर तुमने शादी से मना किया तो तुम्हें अपनी मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा।
1: नहीं माँ, ऐसे मत कहो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
2: सुधा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है।
5: लड़की को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है।
2: ठीक है पंडित जी, मैं अभी बुलाती हूँ।
4: भाई साहब, हमारी मांगों का क्या हुआ?
3: भाई साहब, वो
4: क्या वो?
3: भाई साहब, हमने कार का इंतजाम तो कर दिया है, मगर 10 लाख में से हमने 5 लाख का इंतजाम कर दिया है।
4: और बाकी के 5 लाख?
3: वो इंतजाम नहीं हो पाया।
4: रुकिए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती।
3: ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब, इतनी सी बात के लिए आप शादी रोक देंगे?
4: और क्या करूं, हमारी मांगे तो पूरी नहीं की।
3: मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये शादी मत रोकिए, मैं जल्द ही आपकी ये मांगे पूरी कर दूंगा। कृपया आप ये शादी मत रुकवाइए, अगर ऐसा हो गया तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी।
4: चलो ठीक है, मगर हमारी ये मांगे जल्दी ही पूरी हो जानी चाहिए।
0: अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, बहरी हो गई है क्या?
1: आ रही हूँ मम्मी जी।
0: क्या बात है बहू, अभी आए तुझे 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से मेरी बात को अनसुनी कर रही है।
1: नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: अब से तुझे ही घर का सारा काम करना है।
1: ठीक है मम्मी जी।
4: बहू, एक कप मेरे लिए चाय लाना।
1: लाई पापा जी।
4: क्या बात है बहू, तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है? तुझे चाय भी बनानी नहीं आती, चाय में चीनी ही नहीं है।
1: नहीं पापा जी, मैंने तो चीनी डाली थी।
4: बदतमीज लड़की, अब तू मुझे बताएगी कि चाय में चीनी है कि नहीं?
5: क्या हुआ पापा?
4: देखो बेटा, तुम्हारी बीवी मेरे साथ जुबान लड़ा रही है।
1: नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे पापा को ठेस लगी हो।
5: तो मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं क्या? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।
0: रहने दे बेटा, रहने दे। बहू, तू जाकर पोछा लगा, बहुत सारा काम पड़ा है।
5: सुधा, तुम्हारे बाप ने अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की।

0: कब आएंगे बाकी के 5 लाख रुपए?
1: मेरे माँ बाप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरी शादी में उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी है, अब वो रुपया कहाँ से देंगे?
0: मुझे क्या पता कहाँ से देंगे, तब तो तुम्हारे माँ बाप ने भिखारी की तरह हाथ जोड़कर भीख मांगी थी कि बाकी के रुपए हम शादी के बाद देंगे। जब उनकी औकात नहीं थी देने की तो वादा क्यों किया? तो जाओ अपने माँ बाप से बाकी के पैसे लेकर आओ, वरना वापिस कभी मत आना।
1: मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इतने रुपए कहाँ से लेकर आऊँ? अगर मैं घर वापिस जाऊंगी तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, मैं तो हार चुकी हूँ। जब उड़ने की इच्छा थी तब मेरे माता पिता ने मेरे पर काट दिए। थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जगी थी, वो उगने से पहले ही अस्त हो गई। अब मैं जीकर क्या करूँगी, मुझे तो मर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा।

0: मैं उस घर की इज्जत हूँ जिसे घर में इज्जत मिलती नहीं। मैं उस रस्म की डोर हूँ जो टूट जाए तो फिर जुड़ती नहीं। घर के बाहर कदम रखने से पहले 100 बार मुझे सुनाया जाता है, घर की इज्जत हो तुम। ये वाक्य अक्सर गुस्से से बताया जाता है। ये सच है कि आज भी बेटी होने के नाम पर मुझे बेचा जाता है। ये सच है कि आज भी बेटी होने के नाम पर मुझे बेचा जाता है। क्यों हुई ना हैरानी सुनकर बेचने के नाम पर? लेकिन बड़ा समझदार है ये समाज, मेरे बेचने पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कन्यादान शब्द लगाया जाता है। अक्सर आंगन में बैठकर ये ख्याल आता है, शायद मैं वो जमीन हूं। अक्सर आंगन में बैठकर ये ख्याल आता है, शायद मैं वो जमीन हूं जिस पर कोई हल चलाना तो कोई महल बनाना चाहता है। जैसे जैसे बड़ी हुई मध्यम वर्ग परिवार से शादी का राग सुनाया जाता है। जैसे जैसे बड़ी हुई मध्यम वर्ग परिवार से शादी का राग सुनाया जाता है। आखिर किस समाज के लिए हम नाटक करते हैं? उस समाज के लिए जिस बेटी की पिता की नौकरी नहीं फिर भी समाज द्वारा उससे दहेज दिलवाया जाता है। आज फिर आंगन में बैठी हूँ, लेकिन इस बार सवाल अलग है। कर रहे हैं विदा मेरे पिता घर की ईंटों को बेचकर, ताकि मैं खुश रहूं उस जगह पर पापा मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार सुन तो लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेटी हूँ कोई सामान नहीं। हैरानी तो इस बात की होती है, खुश हो रहे हैं मेरे पिता कन्यादान जैसी कुप्रथा को कर और मन ही मन सोच रहे हैं, चलो गंगा नहा लिए इस काम को कर। जी करता है आज घूंघट उठाकर समझा दूं इस शब्द का अर्थ। जी करता है आज घूंघट उठाकर समझा दूं इस शब्द का अर्थ। आखिर खरीदार और विक्रेता में नहीं होता शादी का बंधन। बख्श दो मुझको क्योंकि दान करने के नाम पर कन्या दान नहीं की जाती। घर की इज्जत हूं मैं तुम्हारी, और इज्जत पापा दान नहीं होती।
1: महिलाएं आज भी अनेक प्रकार के शोषण और भेदभाव का शिकार हो रही हैं। आज भी समाज नारी को दोयम दर्जा ही देना चाहता है। परिवार में पुत्री होने पर परिजन निराश होते हैं और लड़का होने पर उत्साहित। सिर्फ महिला ही विवाह के पश्चात कुमारी से श्रीमती हो जाती है, पुरुष श्री ही रहता है। सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से नारी कल्याण संभव नहीं है। समाज की सोच में बदलाव लाया जाना जरूरी है, ताकि पूरा देश महिला वर्ग को सम्मान और गर्व की दृष्टि से देख सके और देश की आधी आबादी भी देश के विकास में सहायक हो सके।

तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 6:50 पर हर मंगलवार और शुक्रवार। जी हाँ, संध्या 6:50 पर हर मंगलवार और शुक्रवार। तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे 305.81 मीटर बैंड यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर। जी हाँ श्रोताओं, 305.81 मीटर बैंड यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हमारी बेड़ियां, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी।

0: इसे
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। इधर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने रायपुर स्थित लोकभवन और नवा रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष अभियान के तहत 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं।
2: इस बीच वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। ये अभियान एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। वहीं रायपुर में स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणियों की वेशभूषा धारण कर रैली निकाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेड़ मत काटो का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री कश्यप ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में लगभग 240 हाथी थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर वर्ष 2026 में करीब 450 हो गई है। ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 6 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रम विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 22 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इनमें कक्षा 10वीं के 9 और 12वीं के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे केवल श्रमिक बनकर न रह जाएं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिक और अन्य उच्च पदों पर पहुंचकर प्रदेश और देश की सेवा करें। मुख्य सचिव विकासशील ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर उन्हें केंद्र सरकार

0: सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा 19 शहरों में होगी। इसके लिए 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में विभिन्न संकायों के 9,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं विभिन्न संकायों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल एडिक्शन आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को डिजिटल एडिक्शन और पॉपकॉर्न मेंटल स्टेटस से बाहर निकालने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं है बल्कि समाज और मानवता के प्रति नए दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रगति और विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है।
1: आयुष विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। आज जिन हमारे बेटा बेटियों को उपाधि और मेडल प्रदान किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है।
0: समारोह को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के रहे हैं। इन वर्षों ने देश में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री साव आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज से 21 जून तक देशभर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी और विभिन्न जन जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर प्रदेश की 3 शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इनकार कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। रायगढ़ जिले की लैलुंगा पुलिस ने कटकलिया मार्ग पर 2 वाहनों से लगभग 300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 चारपहिया वाहन और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंच चुका है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम श्रम विभाग में भी लागू हो गई है। विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही लोक प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बार नवापारा परियोजना मंडल के बार परिक्षेत्र में दर्ज वन्यजीव अपराध के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का

0: गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए, पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत अर्चना गोरे और साथियों के स्वर में, एएम तुराज की रचना, संगीत संजय लीला भंसाली का, और फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी।

AIR at 90. चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए धुरंधर फिल्म का गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और अरमान खान की। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने।

अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ों में धुरंधर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार थे शाश्वत सचदेव। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 9 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। और इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 को दिन के 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुने अरिजीत सिंह की आवाज में सैयारा फिल्म का गीत। गीत और संगीत है मिथुन का।

अरिजीत सिंह की आवाज में सैयारा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत और संगीत था मिथुन का। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुने श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह को। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।

रॉकी और रानी की प्रेम कथा। फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप रात 8 बजे भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: चंपेश्वर भैया राम राम।
1: राम राम भूषण और कार्यक्रम सुनैया हमर जम्मो संगवारी मन लगलो हमर दोनों के राम राम। और भूषण का हाल चाल?
0: बढ़िया भैया, ते बता खेती बाड़ी का काम बूता चलत तेला?
1: अब अभी तो संगवारी मन बैद काटा वाटा बिना थे और बस वही तैयारी करत है मानसून के।
0: अब उपके जोतवाए हूँ खेत मन ला।
1: हाँ अब वो सब बूता है तो चलते छे, संगे संग गर्मी घलो नंगत है भाई। और गर्मी नंगत है मनमाने गर्मी में अब बूता लत करे लागी
0: कृष्णो काम प्यास में तो अब किसान मन के लत खेत जात ल पड़।
1: अब भूषण मूल ये बता भाई, हर मौसम के अपन मजा है।
0: हाँ सीरतों ने
1: तो गर्मी का मजा ले बात
0: है चला बता। गर्मी के मजा का है, वर्षा और ठंड और गर्मी, चार महीना के चम्मास, चार महीना के जाड़ और चार महीना के गर्मी। तो भाई जैसन मौसम के हिसाब ले शरीर ला बदले लगते हैं। और हमारे तो काम बूता खेती खार के ऐसे भाई, अब देख मजा तो सबुक लेल पर थे। अब गर्मी का मजा हमार छत्तीसगढ़िया किसान मनखन कैसे लेबे? सुबह ले जैसे खेत निकलें बासी धर के, बासी सन में भाई घर में दही होते, दही लेक जथन और गोंदली होगे, तो ये खान पान के मजा हो गए हमारे गर्मी के।
1: वाह
0: है कि नहीं?
1: वाह वाह बहुत बढ़िया।
0: ते कैसन मजा ले था लगते बता।
1: एक भाई मैं तो बस अभी आमा खवाई करत हूँ, पक्का पक्का आमा आते और मीठ मीठ रंग रंग के आमा, तो आमा खात हो, खीरा खावत हो। अब भाई पानी है तो विकट पिया थे, अब भूख क्या था पता नहीं रहा है। तो हर मौसम के अपन आनंद है, हर मौसम के अपन मजा है भाई।

0: ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼କି ରହିବେ ନା ତ ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ଆଉ ଭୂଷଣ ମାଟି ହବା ପାନି ଇଏ ଖେତି କିସାନି ବାରି ବକରି ଆଉ ସବ କେ ଜିନଗାରୀ ବର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରତ ହେ ତବ ହମ ଅତକା ତୋ ସମଝ ହି ଲେବନ କି ଜବ ଇଏ ତିନୋ ହମର କରା ସ୍ୱସ୍ଥ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେ ତବ କିସାନୀ ଭି ସ୍ୱସ୍ଥ ଆଉ ଉନ୍ନତି କେ ରଦ୍ଦମ ଆଗୁଆ ହି ଆଉ ହମ ମନ ମେହନତ ଲେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲେ ସ୍ୱସ୍ଥ उन्नति के रद्दा मांगवा बोल
1: ये तो बने बात के है भैया। अब क्या है माटी पानी ऐसे कहे तो एकर बिना हम किसान हम मन के माटी के बिना पानी के बिना हमार काम बूतक अगर हम देखबू तो असंभव है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भाई,
1: कल्पना घलो नहीं कर सकन। एक घाव का कि थे माटी के बिना खेती हमन अपन कार्यक्रम में दे सुना था हाइड्रोपोनिक्स कथे जिनला पानी में ही खेती कहे जाते, बाकी बिगन पानी के हम खेती कल्पना नहीं कर सकन।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है नहीं। और भैया माटी पोट है पानी पोट और हवा पोट तो हमार खेती किसानी और जिनगानी है रोट।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाउ हाउ
1: भाई चर्चा करत में है। आज जैसे हम खेती किसानी में नवा नवा आधुनिक हमार कृषि मशीन आगे है, वैसे कृषि सिंचाई के जो साधन आगे है जिनमा जैसे कहन की ड्रिप हो गए है ना, स्प्रिंकलर हो गए, ये जो तरीका है भैया एकर हिसाब ले हमला खेती किसानी जैसन पुराना जमाना में जैसे हमन खेती किसानी करते हैं वैसे बदलत जमाना संग अभी के संग में वो जो यंत्र किसी यंत्र एकर घलो सहयोग के साथ में खेती किसानी करना बहुत ही जरूरी है। और ये उद्यम ले का है खेती किसानी ला अपनाबो तो जो जैसे मैं अभी कहूँ ड्रिप स्प्रिंकलर है ना, तो एक उपयोग ले जो है पानी के बचत होते, फसल के उत्पादन में वृद्धि होते, किसान मन ला कम लागत लागते, संगे संग हमर जो खेती के उर्वरता शक्ति है ओहू घलो बढ़ते।
0: बड़ पोट पोट अब पोट गोट करे, अब मैं कहा थी रोट गोट करे भाई जौन विधि के ते बात करे हस ना तेन विधि है पारंपरिक तरीका के तुलना में बहुत बढ़िया है। और पानी संसाधन के संरक्षण में बचाव में बहुत जरूरी है। प्रमुख सिंचाई विधि जेकर उपयोग हम अपन फसल में करथन ओमा ड्रिप सिंचाई जेकर अपन चर्चा करथन जेला टपक सिंचाई घलो कहथन। ये विधि में पानी है बूंद बूंद में सीधा जड़ तक पहुँचते। और ये विधि के उपयोग करे ले पानी के बहुत बचत हो चे जिन जरूरी है। और इन स्प्रिंकलर सिंचाई के तय गोट लमाए रहे तो ये विधि में भूषण प्राकृतिक वर्षा बरोबर स्प्रे टाइप के सिंचाई होते ज्यादा दबाव वाले नोजल से। ये विधि है चारा फसल गेहूं कपास बर अच्छा माने जाते हैं। जैसे टपक सिंचाई है सब्जी फल के फसल बर जरूरी माने गए हैं।
1: एक होते भैया ये ऊपरी सतह ड्रिप ये मा ड्रिप लाइन जो है माटी के नीचे दबे रहे थे। ये सिंचाई विधि के उपयोग जो है जो व्यावसायिक खेती होते ना वहाँ करे जाते हैं। ये सब सिंचाई विधि के उपयोग करे ले एक पानी के जो बचत है बहुत ही होते हैं। और वही दूसर कोती ये फसल के एकर उपयोग जैसे फसल के उत्पादन में वृद्धि होते, फसल के गुणवत्ता में वृद्धि होते, खाद और रसायन के बचत होते, खरपतवार के कमी होते, मजदूरी जो न लागत लगते खेती में है ना ओमे घलो कमी होते, माटी के जो कटाव है वो रुकते और जो ऊपरी सतह हो गए है ना एक जो मतलब
0: वर्षा के ऊपर जो निर्भरता है
1: वो घलो कम होते। काबर ये जो सिंचाई की विधि है भैया जैसे पहाटा पुलों में पानी के बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते हैं है ना, तो ये सब विधि ला अपनावन तो हम खेती किसानी करन तो हमार जते कभी हम गोट बात करें ये सब हमार बचते है रे।
0: और जरूरी ये है कि भाई अब तो हमन ला जानकारी दे हुई है कि कमी घलो नहीं है। तो ये सब सिंचाई के बूता में हम तकनीकी जानकारी लेके विशेषज्ञ मन ले सलाह लेके और हमू मन तो काम करत करत अनुभवी हो गया हबन तो अपन आपस के अनुभव ला बांट के हम अपन खेती बाड़ी साग भाजी फल अन्न जम्मो बूता ला बढ़िया सिरजा सकत हन। तो भाई हासत झूमत नदिया कछार और वहां दे संगीतरिया पार कतका सुघर लागा था वे हरियर हरियर खेती खार। अब ऐसे है भूषण कि आज 5 जून घलो है। 5 जून माने विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस माने भाई पेड़ लगाना है, पेड़ लगा के जतन करना है, पर्यावरण है प्रकृति है तबे हम हबन। तो हमला अपन प्रकृति के प्रति घलो जागरूक होने की जरूरत है। हम तो हमेशा कथन भाई नदिया कछार मा खेत के मेड़ मा तरिया के पार मा।

0: जेन भी जगह होए हम पेड़ पौधा लगान ओकर परिवार ल बढ़ावन और गो बो देन गहूँ और निकल गेन कहूँ ओमन ही काम बने। पेड़ भी लगाना है तो ओकर जतन घलो करना है
1: जरूरी है।
0: और भाई गोट बात तो बड़ बढ़िया हुआ थे, गोट बात बहुत बढ़िया हुआ थे और प्रकृति के बात हवे तो भाई पेड़ हम सब लगाना है और उही भाव ले एक ठन रुख लगा के देख। ये बड़ सुघर गीत है पवन चंद्राकर साथी मन के स्वर में, एक गीत ला सुनथन भाई।

भाई एक ठन रूख लगा के देख, बिल्कुल सही बात है, पेड़ लगाना है संगवारी हो, और पेड़ लगा के जतन करना है। बड़ बढ़िया भाव ले हमन सुनेन पवन चंद्राकर और साथी मन के स्वर्मा ये गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: भैया आज आए शुक्रवार और भाई ये दिन कार्यक्रम का होते हमारे हेलो चौपाल है ना, जेमा हम संगवारी मन फोन लगाते हमारे विशेषज्ञ मन ला देते जानकारी। तो आओ संगवारी हो बेरा है हेलो चौपाल, ये हमारे कार्यक्रम के क्रम है और एक विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन और ओखर परिवहन और विशेषज्ञ है डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर ले और एक संचालन करे हमारे चंपेश्वर भैया और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।
4: गोट सरलग बगराना है, गोट गोट में जानकारी पाना है, पाती पठोथन विचार पठोथन, आज तो फोन उठाना है, हेलो चौपाल में संगी हो आप मल्ला फोन लगाना है। आप जम्मू संगवारी मल्ला फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल में चंपेश्वर के राम राम। संगवारी हो हमारे आज के विषय है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और ओकर परिवहन। ये विषय में गोट करे खातिर आप मन के सवाल के जवाब दे खातिर हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर सुधीर उप्रीत जी, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब आपके हमारे ये कार्यक्रम में स्वागत है, राम राम।
5: राम राम।
4: डॉक्टर साहब आज के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो विषय में जब तक हमारे संगवारी मन के फोन आए तब तक आपसे मैं एक आध दो सवाल पूछा था कि वास्तव में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे हो सकता।
5: स्वच्छ दूध उत्पादन सबसे पहले तो अपनी जागरूकता और इस व्यवसाय के प्रति अपनी ईमानदारी और जानवर के प्रति प्यार दर्शा के हो सकता है। स्वच्छ दूध उत्पादन से तात्पर्य ही यह है कि दूध को दोहने वाला, जिस जानवर से दूध दोहा जाएगा और जिस स्थान पर दूध दोहा जाएगा वो सभी स्वच्छ होना चाहिए। इसके अलावा इस दूध उत्पादन के दौरान जिस बर्तन में इस दूध को दुहा जाए, जिस बर्तन में इस दूध को रखा जाए, जिस बर्तन में इस दूध का परिवहन किया जाए, ये सभी स्वच्छ होना चाहिए।
4: अब एमा प्रमुख चीज हो जाते है दूध दुहना, तो दूध दुहे के बेरा कौन कौन सावधानी के हमला ध्यान रखना चाहिए।
5: दूध दुहने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दूध दुहने वाला है वो पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करने के बाद साफ बर्तन लेकर जानवर के पास में पहुंचे और इसके साथ ही इस बर्तन के ऊपर यदि एक स्वच्छ सूती कपड़ा यदि उपयोग करे तो बहुत ही अच्छा है। साथ में स्वच्छ जल भी लेके जाए और इस जल से थनों को धोना बहुत ही आवश्यक है। कम से कम 2 से 3 बार थनों के ऊपर पानी मारकर और उसपे थनों को साफ करना चाहिए। इसके बाद में दूध निकालने के लिए यदि हम लोग पूर्ण हस्त विधि का यदि उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे जानवर को बीमारियां कम होती हैं और जानवर अपने आप में ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक भी महसूस करता।
4: अब परिवहन के हमला कैसन ढंग से ध्यान रखना है और व्यावसायिकता के डहर में हम देखन तो ये जोन उद्योग है कतका फरक फूला था।
5: देखिए दूध उत्पादन व्यवसाय के रूप में निश्चित रूप से बहुत लाभकारी है, लेकिन बस इसकी आवश्यकता ये है कि ये व्यवसाय 365 दिन का व्यवसाय होता है। इस व्यवसाय में हम लोग अपने सुख और दुख के दिन भी, शायद उस दिन भी जानवर से दूध निकालना आवश्यक होता है और हम लोग ये नहीं कह सकते कि आज हम लोग इसकी छुट्टी रखें। तो इसलिए व्यवसायिक तो है लेकिन दृढ़ता की आवश्यकता है। जहाँ तक परिवहन का सवाल है, दूध के परिवहन में इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग 4 घंटे के अंदर अपने दुहे हुए दूध को सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित स्थान पर या उसके उपभोग करने वाले कस्टमर्स तक उसको पहुंचा दे। दूध का दोहन जो है वो जितना सुबह जितना जल्दी किया जाएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उस समय वातावरण का तापमान कम रहता है और दूध का तापमान भी जो है धीरे धीरे फिर बढ़ता। जहां दूध ने 40

0: डिग्री और उससे ऊपर तापमान होने लगा तो वहाँ पे दूध का खराब होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दूध को कम से कम समय में अंतिम बिंदु तक पहुँचा दिया जाए और सुरक्षित पहुँचा।
1: अब डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता संगवारी मन के फोन आना शुरू हो गए हैं, तो ओकरो मन के जो सवाल है ओकर जवाब दे के बेरा आ गया। हेलो चौपाल।
2: हेलो चौपाल।
1: हाँ, कौन बोला था?
2: राम राम भैया।
1: राम राम गा, कौन बोला था?
2: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था।
1: हाँ साहू जी, का सवाल है आपका?
2: दूध के बारे में जानकारी देना ही सब है डॉक्टर साहब से, कि दुधारू पशु कैसे है, दूध का कहाँ ये करे जाए, एक बारे में बताती विस्तार पूर्वक।
1: हाँ तो आप डॉक्टर साहब जानकारी दो।
0: तो आपके पास में कितने दुधारू पशु है?
2: दो तीन है।
0: दो तीन है, ठीक है। तो देखिए, दुधारू पशुओं के संबंध में एक तो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग उनको बहुत साफ सफाई से रखें, उनको जिस जगह के ऊपर आप रखते हैं वहाँ पर सफाई रहे, दूध निकालने के समय का बड़ा ध्यान रखें, दूध निकालने का एक निश्चित समय हो और जितना अच्छा होगा कि वो सुबह जल्दी दूध निकाला जाए। दूध को निकालने के बाद में उसके थन की सफाई होना चाहिए। उनके थनों को धोने के बाद में आप जानवर को तुरंत बैठने ना दें, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उससे हम लोगों के जब अगली बार आप दूध दोहते हैं तो कुछ हानिकारक जीवाणुओं के आने की आवश्यकता हो। तो दुधारू पशुओं के साथ में दूध, जब भी आप अपन दूध ले रहे हैं तो स्वच्छ दूध उत्पादन के कुछ सिद्धांत हैं, उनको जरूर ही मानना चाहिए। जैसे बर्तन है, जिन भी बर्तनों में आप दूध उपयोग कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, वो बर्तन साफ होना चाहिए। जिन बर्तनों में दूध रखे हैं वो बर्तन साफ होना चाहिए। उनको किसी ठंडे स्थान पर रखना चाहिए ताकि दूध खराब ना हो। कोशिश करना चाहिए कि यदि आप दूध बाहर बेचते हैं तो 4 घंटे के भीतर ही भीतर वो दूध जो है वो आपके अंतिम ग्राहक तक पहुंच जाए, क्योंकि जितना दूध को लंबे समय तक आप अपने पास में रखेंगे उतनी दूध की गुणवत्ता खराब होगी। आपके पास में चूंकि गर्मी के दिन है तो सामान्य तौर पर यह हो रहा है कि दूध बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है। यदि आपके पास में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे कि आप दूध को ठंडा कर सकें, जैसे फ्रिज हो या आपके पास में बर्फ हो, तो दूध को तुरंत ठंडा करना चाहिए ताकि लंबे समय तक दूध संरक्षित रखा जा सके। और आप बताएं कि और आप क्या बोलने जाना चाहते हैं?
1: ठीक है साहू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब,
0: बहुत धन्यवाद।
1: हेलो चौपाल।
3: हेलो चौपाल।
1: हाँ कौन बोला था?
3: मैं लखनपुर कवर्धा से दानी राम चंद्रवंशी बोला था भैया।
1: हाँ चंद्रवंशी जी, क्या सवाल है आपके?
3: यही गौ पालन के लिए है सवाल भैया। गौ अधिक दूध देने वाला गाय है, ओकर चारा के लिए गाय लागत है जन्मे है दूसरी।
1: हाँ,
3: ओकर चारा के लिए का प्रबंध करे जाते? आओ गाय लेके मन है पोस पाले के, कहाँ से मिल ही, यही बात पूछे लगाए भैया।
1: हाँ ठीक है, तो हमारे डॉक्टर साहब आप जानकारी देव।
0: देखिये, यदि पशु के दूध को पढ़ाना है तो सबसे पहले तो उनको हरे चारे की बहुत आवश्यकता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग अपने ही खेत में, अपने ही जमीन में यदि हरे चारे की वर्ष भर जो भी चारा वो हो सकता है उसकी खेती जरूर ही करना चाहिए, तभी हम लोग अपने पशु को स्वस्थ और अधिक दूध देने वाला पशु बना सकते। इसके अलावा आज के समय पे इस तरह से हम लोग अपने घर में यदि अभी ज्यादा आम है तो आम का अचार बना के रख लेते हैं, उसी तरह से एक पशुओं के लिए भी एक अचार बनता है जिसको साइलेज कहते हैं। साइलेज मुख्य रूप से कुछ इस तरह से होता है कि जब आपका आपके पास में कोई फसल ज्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम उसके डंठलों को और उसकी पत्तियों को काट के हम लोग एक गड्ढे में वो कर लेते हैं और उसको कुछ समय के बाद में उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एक साइलेज हम लोगों को प्राप्त होता है। यदि आप साइलेज इनको देते हैं, पशुओं को देते हैं, तो उससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और गर्मी में जो एकाएक दुग्ध उत्पादन में कमी होती है वो कमी भी नहीं आएगी।
1: ठीक है वर्मा जी।
3: हाँ ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो चौपाल।
4: हेलो चौपाल, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारबाड़ी गुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। राम राम जाते हैं।
1: राम राम। भगत राम पटेल जी, क्या सवाल है आपके?
4: हाँ हमने जानना चाहता है कि जैसे हमका दूध के अच्छा रख रखाव करना है उचित रूप से, हम कौन टाइप का रख रखाव कर सका सर? वो दूसरी बात ये है कि हम जिन घर के दूध उपयोग करी या दुकान के, हमारा कैसे पता चले कि दूध जिन है हमारे उपयोग करे के लायक हवा है, एक बारे में जानना।
1: ठीक है, तो हमारे विशेषज्ञ आप मतलब जानकारी देव।
0: देखिए आपके दो प्रश्न है कि एक तो दूध का सही सही रख रखाव कैसा किया जा सके और दूसरा प्रश्न है कि आप ये कैसा जाने कि ये दूध सही है नहीं है। तो देखिए मुख्य रूप से दूध के स्वच्छ रखरखाव के लिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि हम लोग स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जो भी सिद्धांत

0: सिद्धांत बताए गए हैं उनका पालन करें। स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत के रूप में यदि कहूँ मैं, तो सबसे पहले यदि आसपास के पशु के आसपास का परिवेश उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। उसके बाद में पशु की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कि थन है, उसकी पैर है, को बहुत साफ रखना चाहिए ताकि दूध दोहते समय किसी भी तरह की अशुद्धि दूध में ना आ सके। ये भी आवश्यक है कि जब हम लोग दूध दोहते हैं तो जो दूध दोहने वाला है उसको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो हमेशा अपने हाथों को ठीक से स्वच्छ करने के बाद में ही दूध को दोहे। दूध को दोहने की भी विधियां हैं, जिसमें कि एक फुल हैंड मिल्किंग कहते हैं उसको, एक कहते हैं जिसको कि चुटकी विधि कहते हैं। तो मुख्य रूप से यदि हम लोग फुल हैंड विधि को उपयोग करेंगे तो जानवर को किसी भी तरह की बीमारी होने का खतरा नहीं रहेगा। दूध दोहने के बाद थनों को ना बेहद आवश्यक है। ये भी कोशिश होना चाहिए कि दूध दोहने के तुरंत बाद जो आपका जानवर है वो अब वहीं पृथ्वी वहां पे ना बैठ जाए, क्योंकि यदि बैठ जाएगा तो वहां पे कुछ हानिकारक जीवाणु हो जाएंगे और वो दूध को खराब करेंगे। बर्तनों को साफ रखना बहुत आवश्यक है, जिस बर्तन में दूध दोहते हैं और जिस बर्तन में दूध का संग्रहण करते हैं। दूध को निकालते टाइम दूध करीब करीब 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर निकलता है और उसके बाद में दूध में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि दूध का संग्रहण ठंडे स्थान पर किया जा सके। गर्मी के दिनों में जिस भी जगह पे आप इसको रख रहे हैं वहां पर कुछ एक गर्म सूती कपड़ा और उसके ऊपर पानी डाल के, जैसे मटके में हम लोग पानी ठंडा रखते हैं, वैसे रखने की कोशिश करना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है इसमें कि आपने कहा है कि आप दूध को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए बाजार में कुछ लैक्टोमीटर के रूप में एक छोटा सा यंत्र होता है, उसको यदि आप उपयोग करेंगे, जिसको सिर्फ दूध के अंदर डुबाना होता है, तो यदि उसमें पानी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डूबेगा और यदि पानी कम होगा तो उसमें कम डूबेगा। इसके अलावा भी कुछ विधियां हैं कि यदि दूध में कुछ मिला है तो बाजार में कुछ इस तरह की स्ट्रिप मिलती हैं जिनको डुबा के ये पता किया जा सकता है कि उस दूध में कोई अपमिश्रण तो नहीं है। ये मेरी तरफ से सलाह है आपको कि आप इन विधियों का उपयोग करें तो निश्चित रूप से स्वच्छ दूध और अच्छा दूध आपके पास में प्राप्त हो।
1: बहुत सुंदर जानकारी दिया डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आप लोग आकाशवाणी परिवार ला गाड़ा गाड़ा बजाए जाते। जय जवाहर, राम राम।
0: राम राम, राम राम।
2: हेलो चौपाल।
3: हाँ हेलो चौपाल, राम राम।
2: राम राम भैया, कौन बोला था?
3: खिलेश कुमार साहू बोला था।
2: खिलेश कुमार साहू,
3: रानी राम नगरी।
2: हाँ बताओ साहू जी, क्या प्रश्न है आपके?
3: जैसे कि दूध अपन दुहे है ना, उसके बाद में ज्यादा मात्रा में बच गई। हाँ। मार्केट में कभी समय में उपलब्ध नहीं हो, कैसे कौन ढंग से सुरक्षित करना है का?
2: अच्छा, बाचे दूध ला कौन ढंग से सुरक्षित रखन, संरक्षित करन का डॉक्टर साहब?
0: ठीक है, देखिए वैसे बचे हुए दूध का सबसे उचित संरक्षण तो यही हो सकता है कि हम लोग उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, या तो उस दूध का दही जमा लें और उसके बाद में दही के जमने के बाद में और उसको उसमें से मक्खन निकाल लें, एक तो ये तरीका हो सकता है। और मक्खन को हम लोग फिर गर्म करके घी में बदल सकते हैं। और सामान्य तौर पे आज के समय में जबकि बहुत सारी हम लोग ये बातें सुनते हैं कि घी में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जब आप अपना घी बना के और विश्वास के ऊपर यदि लोगों को बेचते हैं तो लोग बागों को उसके ऊपर विश्वास बनता है और आपको उस दही का, उस घी का सही सही मूल्य भी मिल पाता। तो आप इस बचे हुए दूध को यदि घी में परिवर्तित कर लेते हैं तो ये एक अच्छा आय का भी साधन हो सकता है और दूध का सही भी उपयोग हो सकता है। दूसरा उपयोग, दूध अधिक दूध होने के ऊपर दूध को खोआ में बदलें, और खोआ में बदलने के बाद में जो कि खोवे में बदलने से इसको ज़्यादा लंबे समय तक आप संरक्षित रख सकते हैं और उस खोवे को समय आने के ऊपर उसको बाजार में बेचा जा सकता है। ये दो सुझाव मेरी ओर से हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कॉल आवा थे। हेलो चौपाल।
4: हेलो।
2: हाँ कौन बोला था?
4: सनत कुमार यादव बोलते हैं, जटवार पारा कनेरी।
2: सनत कुमार यादव जी, क्या सवाल है आपके?
4: मैं जानना चाहते हैं कि कौन जन मन गाय जी गाय अगर दूध नहीं देना तो इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं।
2: हाँ।
4: तो ये कहाँ तक के नुकसानदायक है, एक बारे में जानना चाहते हैं।
2: हाँ डॉक्टर साहब बताओ।
0: देखिए, इंजेक्शन लगा के दूध निकालना तो निश्चित रूप से किसी भी प्राणी के प्रति बहुत ही क्रूरता है। इस इंजेक्शन का नाम अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। मुख्य रूप से इसका काम ये होता है कि वो थनों में दूध आने के लिए एक एंजाइम है जो कि काम करता है, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन एंजाइम। तो इंजेक्शन लगाने से वो ऑक्सीटोसिन एंजाइम जो है

0: है वो क्रियान्वित होता है और दूध जानवर जो है वो दूध देना चालू करता है। लेकिन इस तरह के इंजेक्शन से जानवर की स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये बात बहुत सही है। कुछ लोग कहते हैं कि दूध में वो नहीं आता है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में ये जो इंजेक्शन का प्रभाव है वो दूध में भी होता है। और इस तरह से जो दूध जो है ये हम लोगों के कंजम्पशन के लिए, हम लोगों के उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। तो निश्चित रूप से इंजेक्शन लगा के तो गाय के दूध को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे जानवर को भी और जो लोग उस दूध को पीने वाले हैं उनको भी।
1: डॉक्टर साहब, हमारे संगवारी मन के सवाल है उकर जवाब तो आप देते छो, मोरो मन में कुछ कुछ बात हबे एकर समाधान में आप चाहवा था, जैसे एमा बहुत कन विषय में हमारे संगवारी मन बात करी सब आप मन बतायो, जेमा परिवहन है थोड़ा से छूटा त्री तो परिवहन पर कौन कौन बात के ध्यान?
0: बिल्कुल, देखिए दूध का परिवहन पूरे वर्ष भर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखने का समय बहुत ही कम है। 4 घंटे के बाद में दूध जो है वो खराब होना चालू हो जाता है, इसलिए आवश्यक है कि कम से कम समय में हम लोग इस दूध को ऐसे स्थान पर पहुंचा सकें जहां पे कि उसके बाद में या तो दूध को ठंडा किया जाए और या फिर दूध को गर्म कर लिया जाए। तो परिवहन, क्योंकि आज अभी इस वक्त गर्मी का मौसम है और परिवहन में थोड़ी सी लापरवाही एक बड़ा नुकसान कर देती है किसान भाइयों को, इससे जरूरी है कि स्वच्छ दूध उत्पादन किया जाए। स्वच्छ दूध उत्पादन किया जाए यानी कि पूरी स्वच्छता के साथ में दूध को दुहा जाए, उसको साफ बर्तनों में रखा जाए और साफ बर्तन में ही लेके उसको जहां तक भी पहुंचाना है वहां पे लेके जाया जाए। दूध को संरक्षित रखने के लिए कुछ जो उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय ये किए जा सकते हैं कि यदि किसी कृषक बंधु के घर में यदि फ्रिज है तो वहां पे वो मैं फ्रिज में रात को बर्फ जमा के और सुबह जैसे ही दूध वो निकलता है तो उसको तुरंत वो उसके बर्फ से और बर्फ और पानी से उसको ठंडा कर दें। इसके अलावा जब वो उसको परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं तो बाहर जिस भी बर्तन में लेके आ रहा है, जिस भी कैन में लेके आ रहे हैं, उस कैन को या तो बाहर से कुछ एक गर्म उसको कुछ एक सूती कपड़े से ढक दे और उस सूती कपड़े को गीला कर। गीला करने से होगा ये कि वो जब पानी वाष्पित होगा तो वो अंदर के दूध को ठंडा करेगा। इसके अलावा आज के समय पे बाजार में कुछ ऐसी कैन भी उपलब्ध हैं जो कि इंसुलेटेड कैन्स कहलाती हैं, जिसको हम लोग थर्मस कह सकते हैं। उसमें दूध को ठंडे दूध को उसमें भर के रखें ताकि उस दूध का तापमान ना बढ़े, और दूध का यदि तापमान नहीं बढ़ेगा तो वो दूध ज्यादा लंबे समय तक संरक्षित रहेगा। दूध को इस मौसम में ये भी होता है कि चूंकि गर्म टेम्परेचर ज्यादा है तो दूध के ऊपर कुछ मक्खन जैसा भी आ जाता है, ऐसी स्थिति में उसके अंदर कुछ साफ साफ लकड़ियां या फिर कोई भी साफ प्लास्टिक की डंडी वो डाल दें ताकि उसके अंदर परिवहन के दौरान उसमें किसी भी तरह की चर्निंग नहीं होगी, और चर्निंग नहीं होगी तो उसके ऊपर मक्खन नहीं आएगा और दूध पूरी तरह से मिक्स रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, तापमान घलो मायने रखते हैं, मतलब
0: बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ज्यादा तापमान सही नहीं रहेगा,
0: तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे भी जब गाय के थन में से दूध निकलता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान पे निकलता है, और ये वो तापमान होता है जिसपे की जो जीवाणु होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो पहले तो कोशिश यही होना चाहिए कि दूध को कैसे जल्दी से जल्दी ठंडा किया जा सके।
1: इमा रख रखाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं डॉक्टर साहब, तो गौशाला के स्वच्छता बनाए रखे खातिर कैसन ढंग ले हम रद्दा बनावन और ये जो बूता है वे ओमा का समस्या आ सके?
0: देखिए, जब भी गाय के रखने के या जानवर के रखने के लिए कोई स्थान बनाए तो सबसे पहले उसके स्लोप का बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि वहां पे जब भी कोई जानवर अपने मल मूत्र वो करता है तो वो आसानी से उसे बह जाए, और उसके बाद में जब हम लोग उसको धोएं भी तो बहुत सफाई से सफाई भी हो जाए और पानी जो है पास के उसमें चले जाए, गड्ढे में चले जाए। इसके अलावा जहां पे भी हम लोग जानवर को रखने का स्थान बनाते हैं वो स्थान साफ सुथरा खुला, जहां पे कि सूरज की रोशनी आती हो, हम लोगों को उस स्थान के ऊपर जहां तक हो सके किसी भी तरह के गड्ढे या किसी तरह की दरारें नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इन दरारों में और इन गड्ढों में बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो कि जानवर के साथ साथ दूध को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अकन विषय में और बहुत अकन समस्या में हमर मन के बातचीत हुई साबे, एमा औ का जिनी सा छूटा था बे, जेमा हम कहन कि परिवहन में और जो दूध उत्पादन के समय में या पशुधन के सुरक्षा के समय में, तो एक कहान की पूरा सार आप बताते हो कि ऐसे कोई जिनिस छूटा थे जेला जेकर

0: हम उपयोग करके इमा हम सफल हो।
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि स्वच्छ दूध का उत्पादन ये करना आवश्यक ही नहीं बल्कि ये हम लोगों का कर्तव्य है और किसान भाइयों का भी ये कर्तव्य है। उसके दो कारण हैं
0: जी।
1: ये कर्तव्य इसलिए है क्योंकि यदि हम लोग इस कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो एक तो हम लोग अपने जो हम लोग दूध निकाल रहे हैं उस दूध के साथ में खेलेंगे और वो दूध जो है वो उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएगा और उससे हमारे हाथ में कुछ आना नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होगा। दूसरी बात ये भी है कि यदि स्वच्छ उत्पादन के प्रति हम लोग अपनी जागरूकता नहीं रखेंगे, हम लोग जानवर को सिर्फ यूं ही रखेंगे कि कुछ गंदा है तो गंदगी पड़ी रहे, या जानवर तो है, जानवर तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, लेकिन ये सब एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये समायोजन नहीं होगा, ये जो होगा ये इसका विकलन होगा और इससे नुकसान ही होगा। जानवर में बीमारियां होंगी, दूध में हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होंगे जो कि दूध की गुणवत्ता को बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे। स्वच्छ दूध उत्पादन के संबंध में के बाद में उसका सुरक्षित परिवहन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश होना चाहिए कि जितना सुबह जल्दी दूध निकाल के और जितना जल्दी हम लोग उसको, जैसा पहले भी मैंने कहा, एक उपभोक्ता है, मिल्क चिलिंग सेंटर है या डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे कि दूध तुरंत ठंडा हो सकता है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम लोगों का दूध सुरक्षित रूप से आगे पहुँच सके और हमें किसी भी तरह की आर्थिक हानि ना हो। हम लोगों को दूध के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या दूध के परिवहन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों का जो रूट है वो छोटे से छोटा हो पर बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ भी ना हो। कई बार छोटा के चक्कर में ऊबड़ खाबड़ रास्ते को भी अपना लिया जाता है, ऐसा भी ना हो। कोशिश हो कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, लेकिन शॉर्टकट से पहुंचे, लेकिन शॉर्टकट इतना शॉर्टकट ना हो जाए कि हम लोगों के दूध की गुणवत्ता ही शॉर्ट हो जाए।
0: डॉक्टर साहब, आप मन बहुत बढ़िया जानकारी दे हो, आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, अभी हेलो चौपाल में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और ओखर परिवहन ये विषय में जानकारी पाए हैं। जानकारी देवत रहीन डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। तकनीकी सहयोग रहीन निर्भर वाढेर, प्रियंका डिक्सेना। प्रस्तुतकर्ता श्री शशि प्रकाश पांडे। और संगवारी हो, हमारे ये कार्यक्रम में आप मन फिर फोन लगाऊ तेकर बार आप मन ला फोन नंबर मैं बतावा था, फोन नंबर लिख ले 400-3482-400-3483-400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। तो संगवारी हो, रो मत हांस ले, जिंदगी सुघर जी ले, थोड़ चिंता फिकर ला आ थोरिक मुस्का ले, जेन दुरिहाय है तोर ले वहू लतीर मा बला ले, भाई बेरा निकाल के फोन इन मा हमरो मन संग उठिया ले, हमरो मन संग उठिया ले। तो देव अभिदा आप जम्मो संगवारी मल्ला आज के हेलो चौपाल ले, चंपेश्वर के राम राम। औ ये तो रहीस फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल। और अब एक ठन सूचना है भूषण। श्रोता संगवारी हो, अवैया मंगलवार 9 जून 2026 के प्रसारित होने वाला हेलो किसान वाणी कार्यक्रम की विषय रही वर्षाकालीन सब्जी के नर्सरी। विषय में आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ रही डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमन ला फोन कर सकत हो। हमारे फोन नंबर है 400-3482-400-3483 और 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 के 11:30 ले 12 बजे के बीच करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही 7:30 में हो ही। हमला आप मन के फोन के अगुरा रही संगवारी हो, सूचना ही मेर सिरावत है।
2: भैया बेरा हो गए अब कृषक प्रश्न मंच के, तो संगवारी मल्ला मैं बता देता हूँ आज के जो प्रश्न है तीन ला। आज के प्रश्न है सिंचाई के दो प्रमुख विधि के नाम बताओ, एकर जवाब आप मन हमर तीर भेजू। अब बता देता हूँ मैं पाँचू हफ्ता के जोन सवाल रही तीन ला। किसान आई डी बनाए बर का जिनिस के जरूरत पड़ते
0: एकर सही जवाब में बता देता हूँ, B1 आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। और ये हमारे संगवारी मन हाँ चिट्ठी पठोए हाबे नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा, नवागढ़ कटैले, बीमे तरल सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, बीमे तरल नर्मदा धाम सुरसुरी ले कैलाश यादव, सुरेश यादव, टिकेंद्र यादव, योगेश यादव। और हमर ये कार्यक्रम हाँ चुन चिट्ठी पत्री के संगवारी हो, यही मेरा सिरावत है। और अब बता दे थन काली के कार्यक्रम। काली आज की सलाह में सुनबोन घर के छत पर जैविक विधि ले सब्जी और फल उत्पादन, ये विषय में जानकारी दी श्रीमती

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत अलका याज्ञिक की आवाज में, समीर की रचना, संगीत नदीम श्रवण का और फिल्म है साजन।

0: अलका याज्ञिक की आवाज़ में साजन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए सुने कुमार सानू के स्वर में समीर का लिखा ये गीत। इस गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है आशिकी।

आशिकी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू के स्वर में। गीतकार समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप रात 9:15 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं शुभदा गिजरे। आइए पहले सुने शुभदा गिजरे के स्वर में कबीर भजन।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए शुभदा गिजरे के स्वर में ये रचना। रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात के 8:30 होने को है। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी शुभदा गिजरे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, आज पहले दिन 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम पाकिस्तान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हारी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा ने हमवतन डी गुकेश को हराया, खिताब की दौड़ में शामिल। और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल मडगांव में भारतीय टीम का

0: तो शुरुआत योगासन के साथ। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत का दबदबा रहा। भारत के योगासन खिलाड़ियों ने दौ पर लगे 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। योगासन का सीनियर पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक भारत के अभय बर्मन ने जीता। रजत इंडोनेशिया के अर्कन रियांतो ने अपने नाम किया, जबकि कांस्य पदक उज्बेकिस्तान के एलन के नाम रहा। सीनियर महिला वर्ग में भारत की रितु मंडल पहले स्थान पर रही, कजाकिस्तान की एजहन कोआन याशोबायवा दूसरे स्थान पर रही, जबकि तीसरा स्थान हांगकांग की लैम एनगा ने जीता। सीनियर ए पुरुष वर्ग में सिंगापुर के नथानियल तान लियांग एन पहले स्थान पर रहे, रजत पदक तंजानिया के कारिमुस्वाफी को मिला, भारत के सुमेर तीसरे स्थान पर रहे। सीनियर ए महिला वर्ग में भारत की रितु ठाकुर को स्वर्ण, अर्जेंटीना की नबीला सोल बराजा को रजत, जबकि कीनिया की अबू ओर सोलिना को कांस्य पदक मिला। सीनियर बी पुरुष वर्ग में भारत के रोशन थापा ने स्वर्ण पदक जीता, बांग्लादेश के मोहम्मद मामून खान बाबू को रजत और किर्गिस्तान के डेनियल रायकोव को कांस्य पदक मिला। ट्विस्टिंग बॉडी के सीनियर बी व्यक्तिगत वर्ग में भारत की ज्योति देवरकर को स्वर्ण पदक, ओमान की ओलिमुथु नवामानी को रजत और जापान की सारू क्यूई को कांस्य पदक मिला। तो ये थी बात योगासन की, और अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। जापान के काकामिगहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराया। खिताब के लिए कल भारत का मुकाबला जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर जीत के बाद निश्चित रूप से भारतीय टीम का हौसला आसमान की बुलंदियों पर होगा। अब उसका लक्ष्य चैंपियन बनना है। अंतिम 4 के मैच में भारत ने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि बड़े मुकाबलों में भी यह टीम किसी भी चुनौती का सामना करने का मादा रखती है। एक समय भारतीय टीम 2 के मुकाबले 3 गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन टीम ने शानदार जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ वापसी की बल्कि पाकिस्तान को धूल चटाकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। यह मैच बेहद तेज रफ्तार वाला रहा। दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और गोल करने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार आशीष तानीपूर्ति ने 12वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की। 27वें मिनट में आदिल ने भारतीय गोलकीपर को छका कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर थी। तीसरे क्वार्टर में 35वें मिनट में अली शाहरुख ने गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया और महज 2 मिनट के बाद मोहम्मद फरहान असलम ने गोल कर स्कोर को 2-2 कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच में पहली बार बढ़त हासिल की, जब 42वें मिनट में उजैर अहमद ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को 3-2 से आगे कर दिया। जहां पाकिस्तान की टीम का दबदबा दिख रहा था, लेकिन आखिरी क्वार्टर में भारतीय टीम ने ऐसा खेल दिखाया जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। आशीष तानी ने पहले भारत को बराबरी दिलाई और फिर 53वें मिनट में अपना तीसरा गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। इस गोल ने भारत को 4-3 की बढ़त दिला दी और पाकिस्तान दबाव में आ गया। मैच खत्म।

0: होने से पहले तानी ने अपना चौथा गोल भी दाग दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। उनके चार गोलों के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। आशीष टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए, उन्हें फाइनल भी जीतने का भरोसा है।
1: काफी अच्छा खेले हम लोग और मेरी टीम ने काफी मेहनत किया और एफर्ट मार रहे थे और आज हम लोग का सेमीफाइनल था पाकिस्तान के साथ और हम लोग उसमें विन किए हैं। अब हम लोग का फाइनल है कल, तो हम लोग उसमें भी विन करेंगे।
0: हालांकि खिताब के लिए टक्कर कांटे की होगी क्योंकि सामने मेजबान टीम होगी। सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ियों की मलेशिया के खिलाफ 8-1 की जीत से हौसले बुलंद होंगे, लेकिन भारतीय टीम अगर आज की तरह कल भी एकजुट होकर खेलने में कामयाब रही तो चैंपियन बनना मुश्किल नहीं होगा। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ आज भारतीय खिलाड़ियों ने, युवा खिलाड़ियों ने बेहद दमदार प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि हॉकी हमारी ताकत है। इस खेल में हमारा दबदबा क्यों है? क्योंकि जूनियर वर्ग से ही हम इतना शानदार प्रदर्शन करते हैं। और जब हॉकी की बात आती है तो जाहिर है उसके बाद बात क्रिकेट की भी आती है। आईपीएल के फटाफट अंदाज के बाद अब टेस्ट के जरिए भद्रजनों के इस खेल के सबसे कठिन और लंबे फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों की परीक्षा होने वाली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारतीय टीम करीब 6 महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यह टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का हिस्सा नहीं है, फिर भी मुकाबला जोरदार रहेगा। मुकेश से सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारत के पास अपने टीम संयोजन को आजमाने का ये अच्छा मौका है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल और उपकप्तान KL राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। दोनों का हालिया फॉर्म शानदार रहा है। राहुल ने इस IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 593 रन बनाए थे। दूसरी ओर जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 427 रन बनाए। नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच कड़ा मुकाबला है। कर्नाटक के कप्तान पडिक्कल ने पिछले रणजी सत्र में 5 मैचों में 532 रन बनाए थे। इसमें उत्तराखंड के खिलाफ 232 रन की पारी भी शामिल थी। दूसरी ओर IPL में 722 रन बनाने वाले साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक खुद को पूरी तरह साबित नहीं कर सके हैं। फिर भी टीम इंडिया के चीफ कोच गौतम गंभीर ने संकेत दिया है कि साई सुदर्शन टीम की पहली पसंद होंगे।
4: He's only played what handful of test matches and he started his test career in England, which we all know is not the easiest place, and he's had a phenomenal run in IPL as well, and we got to give him a fair chance.
3: Wicket keeper बल्लेबाज ऋषभ पंत का नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना लगभग तय है। हालांकि पंत के लिए इस बार IPL उनके करियर के सबसे खराब सीजन में से एक रहा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में पंत ने 2018 में शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम के दो प्रमुख ऑलराउंडर हो सकते हैं। सुंदर ने पिछली टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी लगातार अपनी गेंदबाजी में सुधार कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त तेज गेंदबाज का विकल्प भी देगी। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को आराम दिए जाने के बाद भारत को लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर की तलाश है। टीम में नए खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। ऐसे में विदर्भ के हर्ष दुबे, राजस्थान के मानव सुधार में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसका संकेत टीम के सहायक कोच रियान टेन की बातों से भी मिलता है।
5: Combination, but I'd imagine Kuldeep will play and Washi will play, and then one of those two will play.
3: Washington Sundar के साथ कुलदीप यादव दो मुख्य स्पिनर होंगे। मानव के साथ हर्ष दुबे के भी अंतिम 11 में जगह बनाने की संभावना है। चीफ कोच गौतम गंभीर ने कहा भी है कि वे श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज से पहले 4 स्पिनर को तैयार करना चाहते हैं।
4: This probably is the only test match where we can think of or looking at someone who could be a fourth spinner, because after this we go to Sri Lanka and we might have to carry 4 spinners as well there. So this is an ideal opportunity to try someone who could be a long-term fourth spinner as well.
3: अफगानिस्तान ने 2018 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, जिसे मेजबान टीम ने 2 दिन के भीतर ही जीत लिया था। इसके बाद से जून 2026 तक अफगानिस्तान ने 11 और मैच खेले हैं। इसी अवधि में भारत ने 67 टेस्ट मैच खेले हैं। 2018 की टीम से केवल KL राहुल ही वर्तमान भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा है, जबकि अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी और बल्लेबाज रहमत शाह भी उस मैच में खेले थे। ये मैच जून के महीने में उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच खेला जाएगा और इसमें दोनों टीम की शारीरिक फिटनेस की भी कड़ी परीक्षा होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: योगासन की बात हो गई, हॉकी की बात हो गई, क्रिकेट

0: की बात हो गई और अब माइंड गेम शतरंज की बात। दरअसल ओस्लो में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन और हमवतन डी गुकेश पर क्लासिकल बाजी में शानदार जीत हासिल करके नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के खिताब की दौड़ में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। प्रज्ञानंदा इस जीत के बाद शीर्ष पर काबिज अमरीका के वेस्ली सो से सिर्फ आधा अंक पीछे रह गए हैं। अब सिर्फ एक बाजी होनी है और वो निर्णायक साबित होगी। क्या कुछ रहा प्रदर्शन प्रज्ञानंदा का नवी बाजी में और क्या है संभावना फाइनल को लेकर, सुनते हैं विशाल से।
1: शह और मात के इस खेल में प्रज्ञानानंद ने काले मोहरों से खेलते हुए शुरुआत में ही बेहद मजबूत निम्जो इंडियन सेमिश सेटअप को चुना। दूसरी तरफ सफेद मोहरों से खेल रहे विश्व चैंपियन डी गुकेश ने शुरुआती चालों से आक्रामक शुरुआत की और बोर्ड के सेंटर पर नियंत्रण बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रज्ञानानंद ने सीधे तौर पर गुकेश की डबल सी पोन संरचना की कमजोरी को निशाना बनाया। इस मुकाबले में गुकेश की आक्रामकता का जवाब प्रज्ञानानंद ने संयम से दिया। वे लगातार विश्व चैंपियन की चाल का सटीक जवाब देते रहे। ऐसे में धीरे धीरे गुकेश की सफेद मोहरों के जरिए बनाई गई आक्रामकता खत्म हो गई। खेल की 34वीं चाल तक प्रज्ञानानंद ने पोजीशन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया था, जिसके बाद स्थिति को भांपते हुए गुकेश ने अपनी हार स्वीकार कर ली। प्रज्ञानानंद ने गुकेश को क्लासिकल बाजी में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। इससे वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 9वें दौर के बाद प्रज्ञानानंद 15 अंकों के साथ अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के 15.5 अंक से सिर्फ आधा अंक पीछे दूसरे स्थान पर हैं। इस जीत के बाद प्रज्ञानानंद ने अपनी 9वीं बाजी के बारे में बताया।
2: आई वाज ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज़ मी टूर्नामेंट सिचुएशन काइंड ऑफ डिमांडेड मी टू फाइट। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइट एंड आई न्यू दैट ही विल गो फॉर इट एंड आई थॉट एट सम पॉइंट ही वाज प्रोबब्ली प्लेइंग टू रैश। आई फेल्ट लाइक आई वाज जस्ट गोइंग फॉर इट इन अ पोजीशन व्हिच आई डिडंट रियली सी अ कंपनसेशन फॉर हिम। ही सैक्ड अ रुक एंड देन आई थिंक आई कंसोलिडेटेड एंड कन्वर्टेड।
1: फ्रांस के अलीरेज़ा फिरोजा भी 14.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। जाहिर है अब बचे सिर्फ एक राउंड में 3 खिलाड़ियों के पास खिताब जीतने का मौका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी खिलाड़ी खिताब जीतेगा वो पहली बार नॉर्वे शतरंज चैंपियन बनेगा। प्रज्ञानानंद निर्णायक दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर का सामना करेंगे, जबकि वेस्ली सो का मुकाबला अलीरेज़ा से होगा। महिला वर्ग में मौजूदा विश्व ब्लिट्ज चैंपियन बिबिसारा असा उबायेवा ने 1 राउंड शेष रहते हुए निर्णायक बढ़त लेकर खिताब अपने नाम कर लिया। उनके 16.5 अंक हैं। भारत की दिव्या देशमुख 10 अंकों के साथ 5वें और कनेरू हम्पी 9 अंकों के साथ सबसे नीचे 6ठे स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में इस समय चेक गणराज्य के जैकब मैसी का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के साथ चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल इटली के 2 खिलाड़ियों मेटियो अर्नाल्डी और फ्लेवियो कोबोली के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल पोलैंड की माया कोलिंस्का और रूस की मीरा एंड्रीवा ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेन्स डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा कर्णन की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। भारत की जोड़ी को मलेशिया के गोह जेफेई और नूर इजुद्दीन ने आसानी से 12-21 10-21 से हराया। फुटबॉल की भी बात करते हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में कल भारतीय महिला टीम गोवा के मडगांव में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। भारत क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6 खिताब जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम लगातार 5 खिताब जीतने के बाद पिछले 2 अवसरों पर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। बांग्लादेश ने 2022 और 2024 में दोनों मौकों पर नेपाल को हराकर ट्रॉफी जीती थी। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज रोम डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 4थे एशियाई एथलीट बन गए हैं। उन्होंने कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.62 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। 23 वर्षीय पथिराज पाकिस्तान की ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले शीर्ष एशियाई थ्रोअरों में शामिल हैं। कोलमपुर में द्वितीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत ने महिला और पुरुष वर्गों में कांस्य पदक जीता। आज समाप्त हुई चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण और श्रीलंका ने रजत पदक जीता। महिला वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण, मलेशिया ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के करीब 200 पैरा खिलाड़ियों ने शिरकत की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: ये विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने

0: से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि

0: दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने

0: के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hogi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये

केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:15 हुए हैं। चित्रपट संगीत, आइए कार्यक्रम में पहले सुने लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वर में शैलेंद्र की रचना, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म है रात और दिन।

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया।

0: आपकी ओरिजिनल आवाज।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए इज्जत फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला।

श्रृंखला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बसंत राव देशपांडे का गाया राग मधुकौंस में ख्याल। विलंबित रचना झपताल में निबद्ध है। बोल है दे दर्शन मोहे। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है आजा रे। और तबले पर सूर्यकांत गोखले, हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर और सारंगी पर संगत की है मधुकर कादीलकर ने। तो लीजिए सुनिए बसंत राव देशपांडे का गाया राग मधुकौंस में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बसंत राव देशपांडे का गाया राग मधुकौंस में ख्याल, तबले पर सूर्यकांत गोखले, हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर और सारंगी पर संगत की थी मधुकर ने। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। श्रोताओं नमस्कार। दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही रहे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही रहे। और श्रोताओं खिलते चेहरे के साथ याद कीजिए पिछली बार कब आपने खुद को हरे भरे पेड़ों या जंगल के बीच पाया था और वहाँ की ताज़ी हवा आपने महसूस की थी। ज़रूर आपको वो दृश्य याद होगा, क्योंकि ऐसे प्राकृतिक दृश्य

हमारी यादों से कभी नहीं मिटते, तो चलिए आप याद कीजिए उन खूबसूरत दृश्यों को और हम शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम यादें का। और आपकी रेडियो दोस्त दीपा लेकर हाजिर है आपके पत्र और ईमेल्स। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म अभिलाषा से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। और इस गीत के लिए हमें पत्रों के माध्यम से फरमाइश प्राप्त हुई है आप सभी श्रोताओं की। देवरी भाटा पर असे गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, आप हैं मगरलोट से पूनूराम साहू, तेजेश्वरी साहू, राजश्री, राजवरी साहू, सिर्री गाता पर असे धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा साहू, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका, पूनम साहू, बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, मगरलोड से पुनुराम साहू, तेजेश्वरी साहू। और इसी गीत के लिए ईमेल्स हमें मिले हैं आप सभी के, ग्राम पहारा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर, साथ ही आप है पोटिया कला दुर्ग से सुजाता साहू, संजय साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, माँ महामाया चौक से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, टेकलाल पटेल, और साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार और प्रणय कुमार साहू। तो आप सभी की नजर करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म अभिलाषा से मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम यादें में आइए अब सुने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत। नगमा निगार हसरत जयपुरी और मौसिकार हैं शंकर जयकिशन। और श्रोताओं, इस गीत को पत्रों के माध्यम से पसंद किया है आप सभी ने। शीतलानगर दुर्ग से अर्पा, पैरी, पार्वती, राधा, हथनीपारा भाटापारा से चोवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी दुर्गा, दुर्गेश्वरी वर्मा, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि, खुशी, ओजल वर्मा, यहीं से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, धवलपुर से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति, अर्चना, प्रतीक्षा, धनंजय मिश्रा, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर और सोनाडीह से सुब्रत चौधरी। और श्रोताओं, ईमेल द्वारा इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह। आप हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, कीरत राय वाधवानी, दीपक धनशानी, प्रदीप कुमार साहू, बेबी स्वाति, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और पूरा माखीजा परिवार। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा, कौशल सेन, ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा। तो चलिए सुनते हैं पतिता फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादें। लीजिए अब सुनिए आशा भोंसले और मोहम्मद रफी को, बोल राजा मेहदी अली खां के, संगीत मदन मोहन का, फिल्म है नीला आकाश। और इस गीत के लिए हमें पत्र प्राप्त हुए हैं आप सभी श्रोताओं के। रुआबांदा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ, शौर्य, शुभम जैन, ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी, रेखा, मोतीलाल साहू, बेमेत्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र, व्रजकांत सारथी, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव और राजनांदगांव से मानवेंद्र साहू और उनके साथी। और इसी गीत के लिए हमें ईमेल्स प्राप्त हुए हैं आप सभी श्रोताओं के। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, आप हैं हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति वैष्णव, रिचा, गायत्री वैष्णव, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल। और आप हमारे साथी हैं ग्राम फुलजर घटारानी जिला गरियाबंद से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी, मुस्कान, हर्षिता साहू, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े, धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम, सेजल साहू, जुनवानी से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र, किरण, सुनीत, ऋषिवन साहू और उनका पूरा परिवार। तो आप सभी की ख्वाहिश पर आइए सुने आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म नीला आकाश में।

श्रोताओं, कार्यक्रम यादें की अगली पेशकश सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म सूरज से। शब्द रचना हसरत जयपुरी की और संगीत है शंकर जयकिशन का। और इस गीत के लिए हमें पत्रों के माध्यम से फरमाइश प्राप्त हुई है आप सभी श्रोताओं की। भाटापारा से नारायण यदु, पूर्णिमा, राकेश, आरती यदु, दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेन्द्र कुमार वर्मा, भिलाई से विकास वर्मा, खुशी, ग्रंथ, संजय प्रधान, पूजा। और आप हमारे श्रोता हैं ग्राम कोरदा से कलीराम यादव, शेख राम यादव, सिर्री गातापारा से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू। और इसी गीत के लिए हमें ईमेल्स मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जाह्नवी, तृप्तेश देवांगन, महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा, हिरमनी, दीपक, लक्ष्यदास, कोरासी भैंसा रायपुर से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल और कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। तो आप सभी की नज़र करते हैं सूरज फिल्म का ये गीत।

मधुमती। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलिल चौधरी और इस गीत के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा, दरचुरा से फिरंता साहू, दुलौरिन कामेश्वरी, प्रीतम कुमार साहू, रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके सभी साथी, दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिभा, रीना और लक्ष्मणा यदु। और इसी गीत के लिए हमारे कंप्यूटर्स पर ईमेल प्राप्त हुए हैं आप सभी के। पिपरिया से दीपा रिमझिम गुप्ता, कमलकांत गुप्ता, गांव परसाटोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा, नोखेलाल वर्मा, पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन, तखतपुर से मिश्रीलाल वर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी, विश्वकर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदित

गीती, राधे, दीपक, अंकुराघव गुप्ता और दत्तरिंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म मधुमती से।

0: तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराइए। ये नदी, वो घटा, वो आसमान फूलों का, काश हो जाता ये सारा जहान फूलों का। चलिए पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं। इसी संदेश के साथ आज के फरमाइशी कार्यक्रम यादें से अपनी रेडियो दोस्त दीपा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यह आकाशवाणी रायपुर है, रात के 11 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण

0: पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।